अक्सर बड़ी बड़ी खुशियों के इंतजार में हम छोटी छोटी खुशियों को देखना भूल जाते हैं। एक प्याली गर्म चाय, अपनों का साथ, शरीर में ऊर्जा और आंखों में नया सपना। यकीन मानिए, जिंदगी बहुत कुछ दे रही है, बस हमें उसे महसूस करना आना चाहिए।

एक खूबसूरत विचार है आपसे शेयर करना है। खुश रहने के लिए सब कुछ अच्छा होना जरूरी नहीं, बस जो अच्छा है उसे दिल से महसूस करना जरूरी है।

0: सुबह का सूरज जब धीरे धीरे ऊपर उठता है तो उसकी किरणें हर जगह पहुंचती हैं। वो ये नहीं देखती कि कौन सा घर बड़ा है और कौन सा छोटा। उजाला सबके लिए होता है और शायद अच्छाई भी ऐसी ही होनी चाहिए। हमारी मुस्कान, हमारे अच्छे शब्द और हमारा अपनापन किसी एक व्यक्ति तक सीमित क्यों रहे।
1: मैं क्या सेवा कर सकता हूँ?
2: सेवा के बारे में बाद में सोचेंगे। फिलहाल मुझे एक नहायत स्पेशल किस्म का बुके चाहिए।
1: स्पेशल बुके? लड़के के लिए चाहिए या लड़की के लिए?
2: इससे आपको मतलब?
1: जी मुझसे तो नहीं, लेकिन फूलों का फूलों से मतलब है। आई मीन हर फूल हर जगह नहीं भेजा जा सकता।
2: जी
1: जी हाँ, रंग और खुशबू का अपना एक मिजाज होता है, उसका एक करेक्टर होता है। फूलों में भी सनाना और मर्दाना फूल हुआ करते हैं। अब देखिए ना, मर्दों को सनाना और औरतों को मर्दाना फूल भेज जाते।
2: समझ गए, ये बुके एक लड़के के लिए है।
1: ओह दैट्स फाइन। अच्छा ये बताइए कि वो लड़का आपको क्या लगता है? देख देख बुरा मत मानिए, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि अगर वो भाई है तो फूल अलग होंगे और वो फ्रेंड है तो फूल दूसरे होंगे, अगर वो बॉयफ्रेंड है तो फूल नेचुरली तीसरे होंगे। क्या राय आपकी?
2: ओ माय गॉड, वो ना भाई है ना फ्रेंड है ना बॉयफ्रेंड। और कुछ पूछना है आपको?
1: जी नहीं, इतना बहुत है। आप एड्रेस छोड़ जाइए, मुके पहुंच जाएगा।

दोस्तों, हर इंसान की आंखों में कोई ना कोई सपना जरूर होता है। किसी को अपने बच्चों को आगे बढ़ते देखना है तो कोई अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन चाहता है और कोई बस मन का सुकून तलाश रहा है। सपने अलग हो सकते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने का रास्ता एक ही है, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना। बस इतना जरूरी है कि आप कल से एक कदम आगे हों। सुबह हमें बस यही सिखाती है।

आज की सुबह जाते जाते बस यही कहूंगी, सूरज की तरह रोशन रहिए, हवा की तरह सहज रहिए, फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए और नदी की तरह आगे बढ़ते रहिए। इसी खूबसूरत सोच के साथ अब आपसे अर्चना गोयल विदा लेना चाहेगी। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संबत 1948 के आषाढ़ मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 13 जुलाई 2026 सुबह के 5:53 और 37 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कारण कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। अब से कुछ देर में यानी समाचारों के बाद 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी पूजा भारद्वाज।

6:45 पर श्री रामचरितमानस गान के अंतर्गत आप सुनेंगे बालकांड। 7:10 पर गोल्ड सुप्रभात कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। सुबह 7:30 कार्यक्रम होगा सवेरे। देश विदेश की खबरें आप सुनेंगे हिंदी में सुबह 8:00 और अंग्रेजी में 8:15। 8:30 उर्दू में समाचार होंगे। 8:45 पर विशेष कार्यक्रम म्यूजिकल दिल लगी, जिसमें स्वच्छता, भोजन, रोड सेफ्टी, वोकल फॉर लोकल जैसे विषयों पर बातचीत होगी। प्रस्तुत करेंगी पूजा भारद्वाज। 10:30 दिल का मेलबॉक्स रिक्वेस्ट पर आधारित कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम को होस्ट करेंगी नीतू शर्मा। दिन में 11:10 पर तस्वीर कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे गुजरात में स्थित कच्छ का रण शहर की। कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी नीतू शर्मा।

सुबह 9:10 पर म्यूजिकल दिल लगी को आप फिर से सुन पाएंगे। कार्यक्रम को पेश करेंगी नीतू शर्मा। दिन में 12:10 पर महिलाओं का अपना कार्यक्रम होगा घर आंगन। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे हंसते हंसते जीना सीखें, मैट्रिमोनियल साइट पर ध्यान देने योग्य बातें विषय पर बातचीत, रिश्तों की चमक को हमेशा बरकरार रखें, साथ ही बारिश में घर के साथ खुद का भी रखें ध्यान और अपना व्यवसाय शुरू करने से पहले कुछ बातों का रखें ख्याल, जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएंगी। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी सिमरन कौर। तो ये थे FM गोल्ड पर प्रसारित होने वाले हमारे आज के मुख्य कार्यक्रम। 100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। सुबह के 6 बजने को है। अब आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैंबर ऑफ कॉमर्स सीईओई और आईसीईएक्स स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्री गोयल 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठक भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी और किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौ वहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत बेंदाले, नई दिल्ली के ऋषित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाखस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देश के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

केवल भगवान से डरूं, मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। अर्पण सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। पूजा है आपके साथ, बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और साथियों को नमस्कार।

महात्मा गांधी ने कहा है कि चलिए सुबह का पहला काम ये करें कि इस दिन के लिए संकल्प करें कि मैं दुनिया में किसी से डरूंगा नहीं।

परमहंस योगानंद हमें समझाते हैं कि दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि आप समस्याओं से प्रभावित नहीं होंगे, आप चिड़चिड़े नहीं बनेंगे, आप आदतों एवं मनोभावों के शिकार नहीं बनेंगे, आप एक पक्षी की तरह स्वतंत्र बनेंगे।

राम भरोसो राम बल, राम नाम विश्वास, सुमिरत शुभ मंगल कुशल, मांगत तुलसीदास। तुलसीदास जी यही मांगते हैं कि मेरा एकमात्र राम पर ही भरोसा रहे, राम ही का बल रहे और जिसके स्मरण मात्र ही से शुभ मंगल और कुशल की प्राप्ति होती है, उस राम नाम में ही विश्वास रहे।

मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मेरा। मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है, मेरा यश, मेरी धन संपत्ति, मेरी शारीरिक मानसिक शक्ति, सब कुछ तुम्हारी ही है। जब मेरा कुछ भी नहीं है तो उसके प्रति ममता कैसी। तेरी दी हुई वस्तुओं को तुम्हें समर्पित करते हुए मेरी क्या हानि है, इसमें मेरा अपना लगता ही क्या है।

विवाह के अवसर पर बारातियों के साथ व्यंग्य विनोद की प्रथा प्रायः पूरे देश में किसी न किसी रूप में प्रचलित है। अवध तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में तो बारातियों के भोजन करते समय महिलाओं द्वारा हर्षोल्लास में मधुर गालियां तथा ताने देने की भी प्रथा प्रचलित है। रामचरितमानस के प्रस्तुत प्रसंग में इसी लोक रीति की मधुर मंगलमय झांकी मिलती है। चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर ग्रहण करने लायक भोज्य सामग्री के चार प्रकार बताए गए हैं। चतुर रसोइये अयोध्या से आए बारातियों के सामने नाना प्रकार के व्यंजन परोस रहे हैं। राजा जनक की रसोई में एक एक विधि के इतने प्रकार बने हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। बाराती मुदित मन भोजन कर रहे हैं और पृष्ठभूमि में स्त्रियां अतिथि पुरुषों तथा उनसे जुड़ी महिलाओं के नाम ले लेकर मधुर गाली दे रही हैं। भोजन के बाद राजा जनक ने पान तांबूल देकर राजा दशरथ का समाज सहित पूजन किया। इस मंगल अवसर पर मुनियों का समूह भी आमंत्रित था, जिसे यथा योग्य भेंट उपहार देकर राजा जनक ने उनका आशीष प्राप्त किया। याचकों ने भी भांति भांति के उपहार प्राप्त कर दाता की जयकार तथा मंगल कामना की।

0: दृश्यन्ते। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह अद्य गुजरात राज्यस्य गांधीनगरे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी APMC इत्यस्य अमृत महोत्सवावसरे नूतनस्य शाक उपविपणन केन्द्रस्य उद्घाटनं विधास्यति। सहकारिता मंत्रालयानुसारं अस्मिन् कार्यक्रमे श्री शाहः एक पेड़ मा के नाम इत्यभियानान्तर्गतं पादपारोपणं विधास्यति। सहैव APMC संस्थायाः अमृत महोत्सवस्य संस्मरणाय संकलितां एकां स्मारक पुस्तिकां विमोचयिष्यति। अत्रावधौ श्री शाहः दहेगाम APMC परिषदः सदस्यैः सह अपि वैचारिक विमर्शं साधयिष्यति। गतदिने ओमान तटे भारतीय नाविक युक्ते GFS गैलेक्सी इत्याख्ये वाणिज्यिक पोते आक्रमणात् परं नवदिल्ल्या पश्चिम एशिया क्षेत्रे उत्पातस्य शमनाय स्वकीयं आह्वानं पुनः प्रतिपादितम्। आक्रमणस्य तीव्र निन्दां कुर्वता विदेश मन्त्रालयेन निगदितं यत् पोते स्थितेषु एकादश भारतीय नागरिकेषु दश नागरिकाः एतावता सुरक्षिततया निष्कासिताः, अपरत्र एकः नाविकः अधुनापि विलुप्तः। मन्त्रालयेन प्रतिपादितं यत् ओमान देशे स्थितः भारतीय दूतावासः स्थिते सूक्ष्मावलोकनं करोति। सहैव प्रचलत्सु रक्षा कार्येषु ओमान देशस्य प्राधिकारीभिः साकं सक्रिय समन्वयं साधयति। नवदिल्ल्या वाणिज्यिक नौवहनेषु प्रचलत्सु निरन्तर आक्रमण प्रसंगेषु स्वकीया गभीरा चिन्ता प्रकटिता। अनेनैव सह भारतस्यास्य राजनैतिक समाधानाय वार्तानां शीघ्र सम्पूर्त्यै याचना विहिता, येन अस्मिन् क्षेत्रे पुनः शान्तिः स्थिरता च प्रवर्तेत। फीफा विश्वचषक पादकन्दुक प्रतिस्पर्धायां सर्वेषां प्रागुपान्त्य चरणात्मकानां द्वन्द्वानां समाप्त्यनन्तरम् उपान्त्यचक्रस्य रूपरेखा पूर्णतः सिद्धा सञ्जाता। प्रथमायाम् उपान्त्यस्पर्धायाम् आगामि बुधवासरे फ्रांस स्पेन दलयोर्मध्ये स्पर्धा भविता। क्रीडेयं भारतीय समयानुसारं रात्रौ सार्धद्वादशवादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठकें भी करेंगे।

0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। राज्य स्तर के विजेताओं को 12 और 13 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन के दौरान होने वाले फाइनल में भाग लेने का अवसर मिलेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जांच की गई। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। इन तीनों परीक्षणों से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वो डूबेगा या उल्टेगा नहीं। कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देशों के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक बार में लगी आग से 27 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 9 पुरुष और 18 महिलाएं शामिल हैं। 60 से अधिक लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री अनुतिन चरणविराकुल ने संवाददाताओं को बताया कि 27 शव बरामद कर लिए गए हैं। आग लगने के कारणों की जांच चल रही है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 से हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. The Indian Space Research Organization says it has successfully carried out 3 major tests of the Gaganyaan crew module systems. The first test pertained to ensuring an upright position for the crew module after splashdown in the sea, considered one of the most important crew safety requirements. The second test involved examining the separation of the umbilical mechanism that serves as a link between the crew module, where astronauts live, and the service module, which provides power and propulsion. The third test validated the structural integrity of the crew module during the apex cover separation event. The apex cover protects the parachutes and associated subsystems during the mission. 5 Indian students have won gold medals at the 56th International Physics Olympiad 2026, which was held at Bucaramanga in Colombia from 4th to 12th of this month. These young physicists have brought immense pride to the nation by delivering an extraordinary performance. The gold medal winners are Kanishk Jain from Pune, Riddhesh Anant Bendale from Indore, Rishit Garg from New Delhi, Shrestha Suraya from Mumbai and Swarith Joshi from Ahmedabad. With this achievement, India secured the first position jointly with Russia, China, Kazakhstan, South Korea and Taiwan among 381 students from 87 countries. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal will lead a high-level Indian business delegation to Spain, Belgium and Finland from today till the 17th of this month. The Ministry of Commerce and Industry said that the visit aims to strengthen India's economic partnerships with Europe with a focus on trade, investment, technology, innovation and sustainability. In the first leg of his tour, Mr. Goyal will visit Spain today, where he will participate in a business roundtable with the Chamber

विकल्प बहुत हैं बिखरने के लिए, पर संकल्प काफी हैं सवरने के लिए। जीवन में तमाम मुश्किलात घुटने टेक देगी यदि हम साहस से उनके सामने खड़े रहें। गोल्ड सुप्रभात सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। पूजा है आपके साथ, सुप्रभात। समय हुआ है 7:11 और 20 सेकंड।

0: 7:14:52। मौसम की बात करें तो आज कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। हवा में उमस रहेगी। सूर्य उदय हुआ 5:32 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:21।
1: की

एफएम गोल्ड पर प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में आपको बता दें। 8:45 पर आप सुनेंगे म्यूजिकल दिल लगी। 10:30 पर दिल का मेल बॉक्स। 11:10 पर तस्वीर में आप जानेंगे कच्छ का रण गुजरात के बारे में। 1:10 पर कार्यक्रम सुनेंगे कलाकार बेमिसाल, जिसमें आज बात होगी निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा की। 3:10 पर कार्यक्रम सुनेंगे मन भावन। 5:10 पर गाते गुनगुनाते और शाम 7:25 पर कार्यक्रम होगा सांझ ढले।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात। आइए अब सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे।

0: नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। जिस क्षण आप इंतजार करना छोड़ देते हैं, उस क्षण आप जीना भी छोड़ देते हैं। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
1: नमस्कार मनोज एंड टू आवर लिसनर्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू आज सवेरे, द डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम वेयर वी कीप यू इन्फॉर्म्ड, इंस्पायर्ड एंड कनेक्टेड एज यू बिगिन द डे। Well, we'll bring you the day's top national and international headlines with sports updates as well, along with major metro city stories. We'll also take a walk through history, revisiting events that shaped the world. We'll remember distinguished personalities who were born on this day and those whose legacy continues to inspire us after their passing. So wherever you are listening us from, at home, on your morning walk or on your way to work, stay with us for the next 30 minutes. First, we are beginning with the headlines.
0: Ji, ji.
1: So first one, Indian Space Research Organization, ISRO, says it has successfully carried out three major tests of the Gaganyaan crew module systems. The first test pertained to ensuring an upright position for the crew module after splashdown in the sea. This is considered one of the most important crew safety requirements. The second test, it involved examining the separation of the umbilical mechanism. This serves as a link between the crew module where astronauts live and the service module which provides power and propulsion. Now the third test. This validated the structural integrity of the crew module during the apex cover separation event. So three tests, three major tests of the Gaganyaan crew module systems.
0: कोलंबिया के बुकारा मंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में पांच भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट।
2: छप्पनवें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन भारतीय छात्रों ने देश को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत पिंडाले, नई दिल्ली के रिशद गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने 87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि भारत के ओलंपियाड कार्यक्रम

0: की सुदृढ़ता को रेखांकित करती है, जिसका नेतृत्व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा किया जाता है। पिछले एक दशक में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम फिनिश में जगह बनाई है। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: The government has refuted a fake image circulating on social media claiming that ethanol blended petrol can cause problems in a vehicle's fuel tank. So the Press Information Bureau's fact check unit has termed the claim as false. It said the Ministry of Petroleum and Natural Gas has clarified that E20 petrol supplied by oil marketing companies conforms to the standards prescribed by the Bureau of Indian Standards. The ministry said ethanol and petrol are completely miscible and do not separate or form layers when the fuel meets the prescribed standards. It further assured that ethanol blended petrol supplied in India adheres to stringent quality standards and undergoes rigorous testing before being made available to consumers.
2: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस फर्जी तस्वीर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक में समस्या हो सकती है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। कार्यालय ने कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जाने वाला E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। मंत्रालय ने कहा कि निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर एथेनॉल और पेट्रोल पूरी तरह से घुलनशील होते हैं। मंत्रालय ने यह भी आश्वासन दिया कि भारत में आपूर्ति किया जाने वाला एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल उच्च गुणवत्ता मानकों का पालन करता है और उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराए जाने से पहले इसका गहन परीक्षण किया जाता है।
1: महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस अनाउंस दैट 145 रेलवे ओवरब्रिजेस दे विल बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस महाराष्ट्र ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स टू एलिमिनेट रेलवे लेवल क्रॉसिंग्स, सेकेंडली टू एनहांस रोड सेफ्टी। So he highlighted the challenges involved in railway bridge construction. Mr. Fadnavis, he said, the state has made systematic and rapid progress in executing complex railway infrastructure projects in Nagpur and Mumbai.
2: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्रों, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए उद्योगपतियों के साथ व्यक्तिगत बैठकें भी करेंगे। सम्मेलन में भारत और विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, स्टार्टअप्स, उद्योग निकायों और शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस आयोजन के दौरान कई रणनीतिक साझेदारियों और समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।
1: So Manoj, there is a youth campaign which will be organized, and youth aged from 15 to 29 years can participate in various programs, especially divided in 5 categories: dance, music, reel and short film, Nukkad Natak and slam poetry. So the Ministry of Youth Affairs and Sports has launched the next phase of the Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat campaign, and according to the ministry, the registrations will begin today at My Bharat portal. So youth aged from 15 to 29 years, listen intently. District level competitions will be held from 24th to 27th of July, followed by state level rounds. So state winners will compete in the national finale at the National Youth Summit in New Delhi on 12th and 13th of next month. So I told you, you can participate in 5 categories: dance, music, third one is reel and short film, fourth Nukkad Natak, fifth slam poetry. So entries can be submitted in either Hindi, English or any regional language. So great chance for youth to shine.
2: जी जी जी। और अगली खबर है, मणिपुर में जिला प्रशासन और विष्णुपुर जिला ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित प्रथम विष्णुपुर जिला ओलंपिक खेल 2026 का कल समापन हो गया। समापन समारोह विष्णुपुर जिले के मोइरांग स्थित चेंगई लामपक में आयोजित किया गया, जिसमें मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री गोविंद दास कुंथौ जम और विधायकों ने भागीदारी की। 5 दिवसीय खेलों में 16 स्पर्धाओं में लगभग 1500 एथलीटों ने भाग लिया। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री और विधायकों के साथ मिलकर विभिन्न खेल

0: के विजेताओं को पुरस्कार और स्मृति चिन्ह वितरित किए।
1: So the race to FIFA World Cup glory has reached its most thrilling stage as the semi-final lineup is officially locked in following the conclusion of the quarter-finals. Well, listeners, we have a detailed report for you. Listen in.
2: The first blockbuster clash will see France take on Spain in a highly anticipated contest on Wednesday at 12:30 a.m. IST. France stomped into the last four with a commanding 2-0 victory over Morocco, while Spain earned their place after edging past Belgium 2-1 in a fiercely contested encounter. The excitement continues on Thursday when England will face Argentina in another high-stakes semi-final at 12:30 a.m. IST. England secured their spot with a dramatic 2-1 extra time win over Norway, while Argentina delivered an impressive performance to defeat Switzerland 3-1 and keep their title hopes alive. With a place in history on the line, the winners of these two heavyweight encounters will battle for the FIFA World Cup trophy in the grand final on 20th of July at New Jersey Stadium. The stage is set, the stakes couldn't be higher, and football fans around the world are in for two unforgettable nights of World Cup action. With the report of Mayur Jain, Anuja Kumar, Aaj Savere.
1: How true is that, Manoj? Two nights and people, they are, you know, gearing up to watch the semi-finals and then the final. Listeners, there's also one more achievement that we would like to actually talk about. Wicketkeeper batter Yastika Bhatia became the first woman to score a test century at Lord's before India's bowlers tightened their grip on the historic one-off women's test against England. This happened last night. So resuming the penultimate day with an overall lead of 269, India declared their second innings at 341 for 7, setting England an improbable target of 457 in four sessions. So in reply, England slumped to 130 for 6 at stumps, with Amy Jones unbeaten on 52, leaving India just 4 wickets away from a memorable victory in the first ever women's test at Lord's. So wicketkeeper batter Yastika Bhatia became the first woman to score a test century at Lord's.
0: अब रुक करते हैं महानगरों के समाचारों का। पहले दिल्ली की खबर।
1: जी,
0: दिल्ली
1: जी।
0: सरकार ने मंत्री रविंदर इंद्राज सिंह ने कल अपने आवास पर जन सुनवाई का आयोजन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि उन्होंने जन सुनवाई में नागरिकों की समस्याओं और सुझावों को सुनकर उनके शीघ्र तथा प्रभावी समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। श्री सिंह ने कहा कि जन सेवा, संवाद और समाधान के संकल्प के साथ दिल्ली सरकार राजधानी के समग्र विकास के लिए संकल्पित है। दिल्ली की एक और खबर। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कल अपने आवास पर दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के प्रति जन जागरूकता को लेकर भाजपा के रोहिणी जिलाध्यक्ष और रोहिणी विधानसभा के मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गुप्ता ने बताया कि बैठक में SIR की प्रक्रिया, पात्र मतदाताओं तक प्रभावी ढंग से पहुंचने, आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी देने तथा अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने पर विस्तृत चर्चा हुई। दिल्ली की एक और खबर। केंद्र सरकार ने राजधानी के 28 महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए 1,647 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि इससे मेट्रो विस्तार, 12 पुला एलिवेटेड कॉरिडोर, करावल नगर फ्लाईओवर, ईवी चार्जिंग स्टेशन सहित अनेक जनहितकारी परियोजनाएं अब तेज गति से साकार होंगी।
1: वेल, वी विल हेड नाउ टू चेन्नई, वेयर रिसर्चर्स एट IIT मद्रास हैव डेवलप्ड अ वर्चुअल रियलिटी और VR, एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम। एंड हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट दिस विल आइडेंटिफाई वेदर चिल्ड्रन एज्ड 11 एंड 12, इफ दे नीड एकेडमिक सपोर्ट, इट विल आइडेंटिफाई इवन बिफोर इट बिकम्स विजिबल in school report cards. So in a study, this involved 120 students. Children completed virtual reality-based tasks. This involved solving math problems, reading clocks, and forming words. So the 15-minute assessment analyzed response time or their mistakes and other learning patterns using AI. So this was able to identify whether they need academic support. And this system is based on Swiss psychologist Jean Piaget's theory of cognitive development. And in turn, this was developed by research scholar T.V. Mridula and Professor Manikanan from the Department of Applied Mechanics and Biomedical Engineering So TV

0: Other professor is Manikan from the Department of Applied Mechanics. Another story, another update from Chennai. The Chennai City Police has announced a year-long traffic diversion at Thirumangalam from today till July 13 next year for the construction of an elevated corridor under Chennai Metro Phase 2, Corridor 5. So motorists, they have been asked to follow the revised traffic arrangements and thereby cooperate during the construction period, which will end on July 13 next year.
1: अब मुंबई महाराष्ट्र की खबर. महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई वाटर मेट्रो परियोजना के लिए सिंधुदुर्ग में 150 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रिक नाव निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. पहले चरण का परिचालन इस वर्ष दिसंबर तक शुरू होने की उम्मीद है. ये परियोजना 200 से अधिक इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाओं का उपयोग करके 21 जलमार्गों के माध्यम से मुंबई ठाणे नवी मुंबई वसई और पनवेल को जोड़ेगी. मुंबई की एक और खबर है. मुंबई को पेयजल आपूर्ति करने वाली 7 झीलों में 12 जुलाई तक पानी का भंडार 7,21,354 मिलियन लीटर तक पहुंच गया है. ये कुल भंडारण क्षमता का 49.84% है. हालांकि ये स्तर पिछले वर्ष की इसी अवधि में दर्ज किए गए 74.47% से काफी कम है. बीएमसी के अनुसार तुलसी और वेहर झीलें उफान पर हैं, जबकि ताजा बारिश के बाद तांसा और ऊपरी वैतरणा झीलों में भी जल स्तर में सुधार हुआ है. शहर के पानी के सबसे बड़े स्रोत भाटसा झील में वर्तमान में 44.30% क्षमता का जल स्तर है.
0: Now we'll focus on Bengaluru. Former Karnataka Chief Minister and Haveri MP Basavaraj Bommai has announced a mega artificial limb fitment camp in Haveri for differently abled people and senior citizens. He said that efforts will be made to set up an ALIMCO office in the district and this will improve access to assistive devices. This was the update from Bengaluru. Manoj.
1: Ji. अब कोलकाता पश्चिम बंगाल चलते हैं. केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार सोमवार को पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए बैठक करेंगे. राज्य सरकार ने एनईपी को राज्य में लागू करने का निर्णय लिया है. राज्य शिक्षा विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं. आज विकास भवन में होने वाली बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुचारू कार्यान्वयन के साथ साथ शिक्षा से संबंधित अन्य मामलों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा. शिक्षा विभाग ने नीति के विभिन्न पहलुओं के संबंध में शिक्षकों के लिए कई ऑनलाइन कार्यशालाओं का आयोजन किया है.
0: Now we'll turn our attention to Hyderabad. So the TG20 League has the winners now. Hyderabad E-Champions, they won the TG20 League title with a 6-wicket victory over Khammam Aces in the final. So Khammam Aces, they were batting first and they scored 157 for 8 in 20 overs. So Hyderabad reached the target in 17.4 overs comfortably with 4 wickets in hand. So Hyderabad E-Champions, they received 1 crore rupees as prize money, while runners-up Khammam Aces, they earned 50 lakh rupees. Telangana Governor Shiv Pratap Shukla presented the trophies in the presence of Deputy Chief Minister Bhatti Vikramarka, DGP CV Anand and TG20 Brand Ambassador Vijay Devra Konda. So these were Metro City updates for you listeners.
1: और अब महानगरों दिल्ली मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल जानते हैं. दिल्ली में आज दिन के समय तेज हवाएं चलने की उम्मीद है. यहां का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. मुंबई में आज आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने का अनुमान है. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में आज आम तौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं. न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. और अब चेन्नई हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं शगुन से.
0: श्योर मनोज, आई एम गोना बिगिन विद चेन्नई. चेन्नई इज लाइकली टू विटनेस अ पार्टली क्लाउडी स्काई. द टेम्परेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू रेंज बिटवीन मिनिमम 29 डिग्रीज एंड मैक्सिमम 39 डिग्री सेल्सियस इन चेन्नई. Bengaluru is forecast to experience a generally cloudy sky. The minimum temperature is

0: expected to be 21 degrees Celsius, while the maximum may reach 33 degrees Celsius. If we talk about Hyderabad, Hyderabad is likely to see a partly cloudy sky with haze. The temperatures are expected to range from 26 degrees to 35 degrees Celsius.
1: और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का. आज 13 जुलाई है. देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है. आइए जानते हैं.
0: So Manoj and to our listeners, did you know, it's an open-ended question. In the year 1814, the first known use of the word OK, O-N-K, it appeared in print in an American newspaper, beginning the worldwide popularity of one of the most recognized expressions in English, OK, right? Everybody uses that. In 1923, the iconic Hollywood sign was officially dedicated in the Hollywood Hills, Los Angeles, California. It originally read Hollywood Land and was created to advertise a new housing development.
1: 1930 में आज ही के दिन उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो में इतिहास के पहले फीफा विश्व कप का शुभारंभ हुआ. उद्घाटन मैच में फ्रांस ने मैक्सिको को 4-1 से हराया और लुसियन लॉरेंट ने विश्व कप इतिहास का पहला गोल करके वैश्विक फुटबॉल के एक नए युग की शुरुआत की.
0: वाओ, दैट्स ग्रेट. इन 1977 सोमालिया formally broke its alliance with the Soviet Union during the Cold War period and expelled Soviet military advisors, significantly changing its international diplomatic position.
1: 1985 में आज ही के दिन लंदन के वेम्बली स्टेडियम और फिलाडेल्फिया के जेएफके स्टेडियम में एक साथ आयोजित प्रसिद्ध लाइव एड चैरिटी कॉन्सर्ट ने संगीत इतिहास रच दिया. इसमें दुनिया के सबसे बड़े रॉक सितारों ने प्रस्तुति दी और इथियोपिया में अकाल राहत के लिए लाखों डॉलर जुटाए गए.
0: Well, yes, I have watched the whole concert actually.
1: Achha.
0: I have watched it. It was really good. No, actually, it's available on YouTube as well. Achha. So I watched it there. And in 1990, the final episode of the original, The Muppet Show, aired in the United States, ending one of television's most beloved entertainment series.
1: 2011 में आज ही के दिन दुनिया के सबसे नए स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद दक्षिण सूडान सरकार ने कई देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने की घोषणा की.
0: In 2014, Manoj, in the FIFA World Cup only, in the final, Brazil, Germany, the final was in Brazil, and Germany defeated Argentina 1-0 after extra time, winning its fourth World Cup title, and Mario Götze scored the historic winning goal, and I watched this match as well.
1: अच्छा अच्छा. 2022 में आज ही के दिन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से प्राप्त पहली पूर्ण रंगीन वैज्ञानिक तस्वीरें जारी की, जो खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी.
0: दैट इज ट्रू.
1: हाँ जी हाँ. और अब समय हो चला है याद करने का उन महान विभूतियों को जिनका जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है.
0: Well, today we are remembering Alfred Marshall, the economist and the most influential economist of his time. His book, Principles of Economics, in 1890 actually, was the dominant economic textbook in England actually for many years and brought the ideas of supply and demand. Second one, economic students, they will be understanding it better. Marginal utility, this is a very common term, and cost of production into a coherent whole, popularizing the modern neoclassical approach, and this dominates microeconomics to this day. And as a result, he is known as the father of scientific economics, Alfred Marshall.
1: आज पुण्यतिथि है आशा पूर्णा देवी की. उनका जन्म 8 जनवरी 1909 को कोलकाता में हुआ था. वे बांग्ला भाषा की प्रख्यात उपन्यासकार थीं, जिन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयु में लिखना प्रारंभ कर दिया था और तब से ही उनकी लेखनी निरंतर सक्रिय बनी रही. आपकी मुख्य रचनाएं प्रथम प्रतिश्रुति, आकाश माटी, प्रेमो प्रयोजन आदि हैं. आपको टैगोर पुरस्कार, लीला पुरस्कार, पद्मश्री और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.
0: Now let us tell you about James Roger McQuinn, the frontman and leader of the Byrds. Solo artist, he has released 10 albums and collaborated with many other artists, among them being Bob Dylan, Tom Petty, Chris Hillman. So the Rickenbacker 12-string guitar is his signature instrument. He was inducted into the Rock and Roll Hall of Fame in 1991 along with the Byrds. Let's listen into, you're actually listening into, Ballad of Easy Rider. Take me from this road.

0: आज पुण्यतिथि है यशपाल शर्मा की। उनका जन्म 11 अगस्त 1954 को लुधियाना, पंजाब में हुआ था। वे प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर थे। वे उस टीम इंडिया का हिस्सा रहे थे जिसने साल 1983 में पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता था। यशपाल शर्मा 1978 से 1985 तक भारतीय टीम के लिए खेले। उन्होंने 37 वनडे और 42 टेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने 42 मैच की 40 पारियों में 883 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वाधिक स्कोर 89 रहा। यशपाल शर्मा ने अपने करियर में 4 अर्धशतक भी लगाए। वे 1979-1983 तक भारतीय मध्यम क्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे।
1: Well, our listeners will be knowing and will be aware about Rubik's Cube. So, the inventor of Rubik's Cube, widely known for creating it, and Rubik's Magic and Rubik's Snake. Today, it's his birthday. Ennio Rubik. So, Rubik studied sculpture at the Academy of Applied Arts and Design in Budapest and architecture at the Technical University. And a professor of design at the Academy, he pursued his hobby of building geometric models. One of these was a prototype of this cube, Rubik's Cube, made of 27 wooden blocks. And this took Rubik a month to solve the cube after scrambling it. And many people worldwide, they solve it. There are competitions, also dedicated competitions for Rubik's Cube solving.
0: आज जयंती है बीना राय की। उनका जन्म 13 जुलाई 1932 को लखनऊ में हुआ था। वे हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री थीं। उनका वास्तविक नाम कृष्णा सरीन था। उन्होंने सन 1951 में प्रदर्शित फिल्म काली घटा से अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। विवाह के बाद बीना राय ने पति के साथ मिलकर पीएन फिल्म्स के बैनर में शगुफा, गोलकुंड का कैदी और समुंदर जैसी फिल्मों का निर्माण किया। साथ ही पति पत्नी की इस जोड़ी ने इन फिल्मों में अभिनय भी किया। 1968 में बनी अपना घर अपनी कहानी बीना राय की अंतिम प्रदर्शित फिल्म थी। आपकी मुख्य फिल्में काली घटा, मैरिन ड्राइव, चंद्रकांता, घूंघट, ताजमहल, अनारकली और दादी माँ आदि हैं। आइए सुनते हैं उनके कुछ गीत।

0: So the saxophone part that we were listening to is played by Manohari Singh, and actually this was a live performance. जी, How जी. great! Hmm.
1: और आज जयंती है प्रकाश मेहरा की. उनका जन्म 13 जुलाई 1939 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हुआ था. वे हिंदी सिनेमा के दिग्गज फिल्म निर्माता और निर्देशक थे. उन्हें भारतीय फिल्म जगत में मसाला फिल्मों के अग्रदूतों में से एक माना जाता है. उन्होंने अपने निर्देशन करियर की शुरुआत 1968 की फिल्म हसीना मान जाएगी से की थी. उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ मिलकर कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी. अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन की छवि देने और उनके करियर को ऊंचाइयों पर ले जाने में प्रकाश मेहरा का बहुत बड़ा योगदान था. प्रकाश मेहरा अपनी फिल्मों के शानदार संगीत, दमदार संवाद और बेहतरीन निर्देशन के लिए जाने जाते थे. उन्हें कई बार फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था. आइए सुनते हैं उनकी फिल्मों के कुछ गीत और उनकी फिल्म का दमदार संवाद.

0: अब इसका क्या करेंगे?
1: ये अपन का औकात है, इंसान को अपना औकात कभी नहीं भूलना चाहिए। तुम्हारा ये कपड़ा है ना, ये सब नकली है, असली ये कपड़ा है, क्योंकि इसमें अपन का गरीबी दिखाई देता है। ये अपन के जिस्म का चमड़ी है।

0: रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार, पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में होंगे लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए और यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स खिताब बरकरार रखा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे।
3: पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 राज्य विधानसभा ने 29 जून को पारित किया था। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति या भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना वाले व्यक्ति को अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। निवारक हिरासत के आदेश राज्य सरकार, पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा अधिकृत DIG रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं। कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्यवाही को सक्षम बनाएगा। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: भारतीय

0: अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
1: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स सीईओई और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन भारतीय छात्रों ने देश को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत पिंडाले, नई दिल्ली के रिशद गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने 87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि भारत के ओलंपियाड कार्यक्रम की सुदृढ़ता को रेखांकित करती है, जिसका नेतृत्व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा किया जाता है। पिछले एक दशक में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम फिनिश में जगह बनाई है। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत 2022 के बाद दूसरी बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच की मेजबानी कर रहा है।
3: इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण करेंगे, जो AI आधारित वित्तीय अपराध जांच, मीडिया फोरेंसिक और क्राइम सीन मैनेजमेंट पर केंद्रित है। इसके साथ ही ऑनलाइन साक्ष्य जुटाने में सक्षम एशिया की पहली स्वदेशी साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस सम्मेलन में 30 से अधिक वैश्विक कंपनियों की अत्याधुनिक तकनीकों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके बाद दोपहर को सहकार से समृद्धि का संकल्प आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री देहगाम में कृषि उपज मंडी समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नवनिर्मित सब यार्ड का उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: भोपाल

0: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: यह सेवा पर्यटन और सिविल विमानन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से चलाई जाएगी। आज से ही आम लोग इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। इसके तहत राज्य सरकार के अनुदान से अब पर्यटक पटना जॉय राइड के लिए 2100 रूपए, राजगीर के लिए 4000 रूपए, वाल्मीकि नगर के लिए 5000 रूपए और कैमूर के लिए 6000 रूपए में टिकट बुक कर सकते हैं। यह सेवा 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को शुरू होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीक।
0: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र में वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य हमले शुरू किए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरानी सेना के जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। खाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही तनाव व्याप्त था और इन ताजा हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का कल निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के उत्तरी पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार के अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में राष्ट्रीय जल मिशन की अपर सचिव और मिशन निदेशक अर्चना वर्मा के साथ जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद विशाल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच फिर सैन्य टकराव आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, जंग फिर शुरू, हॉर्मुज बंद। अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, जॉर्डन और UAE को बनाया निशाना। वहीं नव भारत टाइम्स ने लिखा है, ओमान के पास व्यापारी जहाज पर हमला, 10 भारतीय बचाए गए, 1 लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, क्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 30 दिन जेल में रहे तो होना चाहिए निलंबन, जनसत्ता सहित कई अखबारों में है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने की सिफारिश, मानसून सत्र में पेश हो सकती है समिति की रिपोर्ट। नए वोटर के लिए माता पिता का SIR ब्यौरा अनिवार्य, दैनिक जागरण के अनुसार मतदाता सूची

0: में पहली बार नाम जुड़वाने वाले नए मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने लागू किया नया प्रावधान। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया न्यूजीलैंड यात्रा पर अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, वैश्विक भू राजनीतिक संकटों के दौर में दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय केवल द्विपक्षीय रिश्तों का विस्तार नहीं है, बल्कि ये तेजी से बदल रहे हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई भू राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी है। आने वाला दशक दोनों देशों के संबंधों को हिंद प्रशांत के सबसे सशक्त और भरोसेमंद साझेदारियों में बदल सकता है। उत्तराखंड के गांवों से बढ़ते पलायन पर राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, देव भूमि से रूठे देव, पर्यटकों को बुला रहे पहाड़ पर अपने लोगों से टूट रहा नाता, राज्य के 15% गांव अब निर्जन, पलायन करने में युवा आगे।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। 2 न्यू एंटी क्राइम लॉज पास्ड बाय वेस्ट बंगाल असेंबली कम इनटू फोर्स इन द स्टेट टुडे। ISRO successfully carries out 3 major tests of Gaganyaan crew module systems. 5 Indian students win gold medals at 56th International Physics Olympiad 2026. India secures world number 1 rank jointly with other countries. IMD forecasts heavy rainfall over northeast India, West Bengal and Bihar during next 2 to 3 days. US launches fresh strikes on Iran. And Yannick Sinner beats Alexander Zverev to retain Wimbledon men's singles title. And now the news in detail. In West Bengal, 2 new anti-crime laws come into force in the state today. State Governor Arun Ravi has given his assent to the bill related to the control of anti-social activities. In June this year, the Assembly passed the stringent anti-crime bills, the West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill 2026 and the West Bengal Maintenance of Public Order Amendment Bill 2026. More from our correspondent.
3: Under the West Bengal Public Safety and Control of Antisocial Activities Act 2026, a person involved in antisocial activities or one who is likely to engage in such activities in the future may be placed under preventive detention. Such a person can be detained for a maximum period of 1 year. The state government says the new law will enable quicker and stricter action against antisocial activities, riots, attacks on police personnel and organized crime. Chief Minister Shubhendu Odhikari has earlier stated that violence or disruption of public order in the name of protest will not be tolerated. He also expressed hope that the new law will play an important role in ensuring the safety and security of women and children. Sandeep Dasgupta, Akashvani News, Kolkata.
2: The Indian Space Research Organization says it has successfully carried out 3 major tests of the Gaganyaan crew module systems. More from a correspondent.
4: The first test pertained to ensuring an upright position for the crew module after splashdown in the sea, considered one of the most important crew safety requirements. To do this, a stored cold gas-based uprighting system was developed and tested. The second test involved examining the separation of the umbilical mechanism that serves as a link between the crew module, where astronauts live, and the service module, which provides power and propulsion. The third test validated the structural integrity of the crew module during the apex cover separation event. Yashasvi Kiryal, Akashvani News, Delhi.
2: 5 Indian students have won gold medals at the 56th International Physics Olympiad 2026, which was held at Bucaramanga in Colombia from 4th to 12th of this month. With the exceptional performance, India reaffirmed the growing stature in science education and excellence at the international level. We have a report.
5: Delivering an extraordinary performance at the 56th International Physics Olympiad, these young physicists have brought immense

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदा, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मगरबी बंगाल असेंबली ने जराइम की रोकथाम के लिए जो नए कवानीन मंजूर किए थे वो आज से रियासत भर में लागू हो गए हैं। इसरो ने गगनयान अमले के मॉड्यूल निजाम के कामयाब तजर्बे किए हैं। 5 भारतीय तलबा ने 56वें बैन अलाक्वामी फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में सोने के तमगे जीते हैं। भारत के महकमे मौसमियात ने शिमाल मशरकी भारत, मगरबी बंगाल और बिहार में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश की पेशगोई की है। अमरीका ने ईरान पर ताजा हमले किए हैं और यानिक सिनर ने अलेक्सेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन मर्दों के सिंगल्स का खिताब अपने पास बरकरार रखा है। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल असेंबली ने जराइम की रोकथाम के लिए जो 3 कवानीन मंजूर किए थे वो रियासत में आज से लागू हो गए हैं। रियासत के गवर्नर ने समाज मुखालिफ सरगर्मियों पर काबू पाने के इस बिल को अपनी मंजूरी दे दी है। इस साल जून में मगरबी बंगाल असेंबली ने जराइम की रोकथाम के हंगामी बिलों को मंजूरी दी थी। इन कवानीन में मगरबी बंगाल अवामी हिफाजत और समाज मुखालिफ सरगर्मियों पर काबू पाने से मुतालिक बिल 2026 और मगरबी बंगाल में नज्म व नसक बरकरार रखने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 शामिल है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मगरबी बंगाल अवामी हिफाजत और समाज मुखालिफ सरगर्मियों पर काबू पाने से मुतालिक कानून 2026 के तहत समाज मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस कोई शख्स या वो शख्स जो मुस्तकबिल में इस तरह की सरगर्मियों में मुलविस हो सकता हो उसे रोकथाम के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। इस तरह के किसी भी शख्स को ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। रियासती सरकार ने कहा है कि इस नए कानून से समाज मुखालिफ सरगर्मियों, फसादात, पुलिस अमले पर हमलों और मुनज्जम जराइम की रोकथाम के लिए फौरी और सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। वज़ीर आला सुविंदु अधिकारी ने इससे पहले कहा था कि मुजाहिरों के नाम पर तशद्दुद या अवामी नज्म व नस्क में रखना अंदाजी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ये उम्मीद भी जाहिर की कि यह नया कानून खवातीन और बच्चों की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने में अहम रोल अदा करेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: 5 भारतीय तलबा ने 56वें बैन अलाक़वामी फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में सोने के तमगे जीते हैं। ये मुकाबले कोलंबिया के बुकारामांगा शहर में इस महीने की 4 से 12 तारीख के दरमियान मुनाकद किए गए। ये गैर मामूली कारकर्दगी अंजाम देकर बैन अलाक़वामी सतह पर साइंस की तालीम और महारत के मैदान में भारत ने एक बार फिर अपने बढ़ते हुए कद का मुजाहरा किया है। एक रिपोर्ट।
1: तबियात के 56वें बैन अलाक़वामी ओलंपियाड में इन नौजवान माहिरीन तबियात ने इस गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करके कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। तलाई तमगा जीतने वाले इन नौजवानों के नाम हैं पुणे के कंशिक जैन, इंदौर के रिधर्श आनंद बंदाले, नई दिल्ली के रिशित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सूर्या और अहमदाबाद के सावित्र जोशी। इन

0: मुकाबलों में 87 मुल्कों के 381 तलबा ने हिस्सा लिया, जबकि भारत ने रूस, चीन, कजाकिस्तान, जुनूबी कोरिया और ताइवान के साथ मिलकर पहला मकाम हासिल किया है। इस हुसूलियाबी से भारत के ओलंपियाड प्रोग्राम की ताकत का अंदाजा होता है, जिसकी क्यादत साइंसी तालीम के होमी भाभा मरकज ने की, जो बुनियादी तहकीक के टाटा इंस्टीट्यूट का एक कौमी मरकज है। सोमिया शारन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इंटरपोल के डिजिटल फोरेंसिक माहिरीन के ग्रुप की 11वीं मीटिंग की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। इस तकरीब के साथ जराइम के तहकीककारों का पहला बैन अलाक्वामी मुकाबला और समिट भी मुनक्किद होगा। ये तकरीब आज गांधीनगर में फोरेंसिक उलूम की कौमी यूनिवर्सिटी के कैंपस में मुनक्किद होगी। इस बाबाकार आलमी फोरम में, जिसकी मेजबानी भारत 2022 से दूसरी बार कर रहा है, आला शख्सियतें शिरकत करेंगी, जिसमें वजीर आला भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र पटेल, नायब वजीर आला हर्ष सांघवी और 47 मुल्कों के कानून नाफिज करने वाले मंदूबीन शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
0: जनाब शाह इस तकरीब के दौरान महारत के 3 सरकर्दा मरकजों का आगाज करेंगे, जिसमें मसनू जहानत की मदद से जराइम की तफ्तीश, मौके वारदात की देखभाल और भारत के पहले मीडिया फोरेंसिक मरकज पर तवज्जो दी जाएगी। वो मुल्की में तैयार की गई एशिया की पहली साइबर फोरेंसिक तफ्तीशी वैन और मुल्की में तैयार की गई मोबाइल लेबोरेटरी का भी आगाज करेंगे, जो मौके वारदात पर शवाहिद बरवक्त इकट्ठा करने की सलाहियत की हामिल है। इस तकरीब की खास बात यह है कि आला तकनीक से मुतालिक नुमाइश भी, जिसमें गूगल समेत दुनिया के 30 से ज्यादा बड़े मुल्कों के जदीद तरीन साइबर सिक्योरिटी टूल्स भी शामिल हैं। वजीर दाखिला दोपहर बाद सेकार से समृद्धि का खाका पेश करेंगे। वो धीगम का दौरा करेंगे और अमृत महोत्सव तकरीबात के दौरान सब्जियों के एक नए तामीर शुदा APMC अहाते को अवाम के लिए वक्फ करेंगे। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के हमरा आज सुपहर लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह करेंगे। वो उन्नाव में 49 किलोमीटर तक एक्सप्रेसवे का मुआयना करेंगे। भारत की दूसरी सबसे तवील कॉरिडोर के साथ 63 किलोमीटर 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे भी मुल्क का पहला एक्सप्रेसवे है, जिसे ऑटोमेटिक और जदीद मशीन और जदीद तामीराती टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है। भोपाल में आज मध्य प्रदेश टेक्नोलॉजी तरक्की का तीसरा इजलास MPTech ग्रोथ कॉन्क्लेव स्वयं मुनक्कद किया जाएगा। डॉ मोहन यादव इस तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। इस मुकम्मल इजलास में असल तवज्जो सलाहियत के आलमी मरकजों, डेटा मरकजों और सेमीकंडक्टर शोबे के फरोग पर मरकूज की जाएगी। डॉ यादव टेक्नोलॉजी पर मबनी सनअती तरक्की से मुतालिक रियासती सरकार के खाके की भी जानकारी देंगे। वो सरमायाकारी और नए प्रोजेक्टों पर बातचीत के लिए सरकर्दा सनअतकारों में से हरेक के साथ अलग अलग मुलाकातें करेंगे। इस इजलास में भारत और बैरूनी मुल्कों की टेक्नोलॉजी की सरकर्दा कंपनियों के नुमाइंदे, सरमायाकार, स्टार्टअप्स, सनती इदारे और तालीमी इदारे यकजा होंगे। बिहार में आज हेलीकॉप्टर के जरिए फजाई सियाहती खिदमत शुरू की जा रही है। वजीर आला सम्राट चौधरी पटना से इस स्कीम का आगाज करेंगे। इस स्कीम के पहले मरहले के तहत जिन मकामात को शामिल किया गया है, उनमें मगरबी चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर, कैमूर जिले में मां मंदेश्वरी और नालंदा जिले में राजगीर शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
0: सियात और शहरी हवाबाजी के महकमे के जरिए ये खिदमात मुश्तरका तौर पर शुरू की जाएंगी। आवाम ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत रियासती सरकार की तरफ से माली इमदाद के साथ सयाह रियायती किरायों पर टिकट बुक कर सकते हैं। रियासती सरकार फी टिकट पर 15,422 रुपए की सब्सिडी फराहम करेगी। हेलीकॉप्टर सयाहत खिदमात 18 जुलाई को शुरू होंगी, जो हर हफ्ते और इतवार के रोज फराहम की जाएंगी। पटना से सविता पारीख की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: भारत के खलाई तहकीक के इदारे इसरो ने गगनयान अमले के मॉड्यूल निजाम के कामयाब तजुर्बात किए हैं। पहले तजुर्बे का ताल्लुक खलाई तैयारे के समंदर में उतरने के बाद अमले मॉड्यूल के लिए उमूदी पोजीशन को यकीनी बनाना है, जो अमले के तहफ्फुज की जरूरतों के लिए अहम समझा जाता है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान शिमाल मशरकी भारत, मगरबी बंगाल और बिहार में कहीं कहीं शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है, जबकि मशरकी उत्तर प्रदेश में भी बाज़ जगहों पर 4 से 5 दिन तक शदीद बारिश का इम्कान है। एजेंसी ने 18 जुलाई

दिल्ली तक, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में वसी पैमाने पर बारिश की पेशगोई की है। इसी तारीख तक शिमाली अंदरूनी कर्नाटक, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना के दूर दराज मकामात पर छींटे पड़ने का इम्कान है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक आइंदा 6 से 7 दिन के दौरान शिमाल मगरबी, वस्ती और जनूबी जजीरा नुमा भारत के मैदानी इलाकों में बारिश की शिद्दत में कमी आ जाने का इम्कान है। इधर मेघालय में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि मशरकी उत्तर प्रदेश में कल बहुत ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। अमरीका ने ईरान के खिलाफ ताजा फौजी हमले शुरू कर दिए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमान सेंटकॉम ने बताया कि इस फौजी कार्रवाई का मकसद आबनाए हुरमुस से गुजरने वाले गैर फौजी जहाजों के अमले के अलावा तजारती जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की सलाहियत को कम करना है। एक्स पर एक पोस्ट में सेंटकॉम ने बताया कि यह हमले कमांडर इन चीफ की हिदायत पर किए गए ताकि ईरानी फौजों को जवाबदेह बनाया जा सके। ये ताजा हमले खलीजी खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर किए गए हैं। ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक अमरीकी हमलों के बाद ईरान के जनूबी शहरों जास्क, बंदर अब्बास और सिरिक में धमाकों की आवाजें सुनी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जोर देकर कहा है कि आबनाए हुरमुज तिजारती जहाजों के लिए खुला है। उन्होंने ईरान के कंट्रोल के दावे को मुस्तरद कर दिया। अमेरिका के सेक्रेटरी जनरल अखबार मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने ईरान और अमेरिका के दरमियान ताजा फौजी महाजराई पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और इस सिलसिले में शदीद इलाकाई और आलमी नतीजे के लिए खबरदार किया है। भारत ने ओमान के साहिल से कुछ दूर भारतीय अमले के अरकान को ले जाते हुए एक कमर्शियल जहाज GFS गैलेक्सी पर हमले के बाद मगरबी एशिया खित्ते में कशीदगी को फौरी तौर पर खत्म करने के लिए एक बार फिर कहा है। हमले की मजम्मत करते हुए वजारत खारजा ने एक बयान में बताया कि इस जहाज में सवार 11 भारतीय बाशिंदों में से अभी तक 10 को बचाया गया है, जबकि एक बाशिंदे के लापता होने की खबर है। बयान में कहा गया है कि ओमान में भारतीय सिफारतखाना सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है और वो तलाश और बचाव के काम में ओमान के हुक्काम के साथ सरगर्मी के साथ तालमेल रखे हुए है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक बार में आग लगने की वजह से कम 27 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में 18 खवातीन भी शामिल हैं, जबकि अस्पताल में 60 से ज्यादा लोग जेर इलाज हैं। ये आग बार में निशब के दौरान लगी थी, जिसके बाद आग बुझाने वाला अमला जाए हादसे पर पहुंचा, जिसने फंसे हुए कई लोगों को वहां से निकाला। थाईलैंड के वजीर आजम अनुतिन चरनो रिकोल ने मीडिया के अफराद को बताया कि 27 लाशें बरामद हुई हैं। आग लगने की तहकीकात की जा रही है। बताया जाता है कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। बैंकॉक के चतुचाक जिले में ये एक मशहूर रेस्टोरेंट है। विंबलडन टेनिस में इटली के चोटी के खिलाड़ी यानिक सिनर ने कल रात लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब में फाइनल में जर्मनी के अलेक्सेंडर ज्वेरेव को 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 से हराने के बाद मर्दों का सिंगल्स का खिताब बरकरार रखा है। ये सिनर का विंबलडन टेनिस में लगातार दूसरा मर्दों का सिंगल्स का खिताब है। सिनर विंबलडन में मर्दों का सिंगल्स का खिताब कामयाबी के साथ दिफा करने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में इस माह की 26 तारीख को मुल्क के अवाम से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 136वां नशरिया होगा। लोग इस प्रोग्राम के लिए अपने ख्यालात और तजावीज इस टोल फ्री नंबर पर भेज सकते हैं 1800-117-800। लोग अपनी राय नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम पर भी भेज सकते हैं। छत्तीसगढ़ असेंबली का मानसून इजलास आज से शुरू हो गया है। ये इजलास इस महीने की 17 तारीख तक जारी रहेगा। इस इजलास के दौरान माली मामलात पर गौर किया जाएगा और रियासती हुकूमत तकरीबन 8 तरमीमी बिलों का भी ऐलान करेगी। इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी APMC के अमृत महोत्सव के दौरान सब्जी के नए सबयार्ड का इफ्तिताह करेंगे। इमदाद बाहमी की वजारत के मुताबिक इस प्रोग्राम के दौरान जनाब शाह एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत पौधा लगाएंगे और APMC के अमृत महोत्सव के मौके पर तैयार की गई एक यादगारी किताब का इजरा करेंगे। भारत ने कतर के मौजूदा अमीर के वालिद शेख हमद
बिन अल खलीफा अस्सानी के इंतकाल पर आज एक दिन के कौमी शोक का ऐलान किया है। शेख हमद बिन अल खलीफा अस्सानी का कल इंतकाल

0: हो गया था। मुल्क भर में इस दौरान तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगुं रहेगा। इसके अलावा आज कोई सरकारी तकरीब मुनक़द नहीं की जाएगी। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में इस खबर को अहमियत के साथ सफाए अव्वल पर शाया किया है कि ईरान के पासदाना ने इनकलाब के इंतबाह के बावजूद अमरीका की मरकजी कमान ने कहा है कि आबनाए हुरमुज उन सभी जहाजों के लिए खुला रहेगा जो कानूनी तौर पर यहां से गुजरना चाहते हैं। रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है, अम्मान के साहिल पर तिजारती जहाज पर हमला। वजारत खारजा ने सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि कशीदगी को कम किया जाए और सिफारती बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश की जाए।
0: आखिर में खास खास खबरें। मगरबी बंगाल असेंबली ने जराइम की रोकथाम के लिए जो नए कवानीन मंजूर किए थे वो आज से रियासत भर में लागू हो गए हैं। इसरो ने गगनयान हमले के मॉड्यूल निज़ाम के कामयाब तजर्बे किए हैं। 5 भारतीय तलबा ने 56वें बैन अलावामी फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में सोने के तमगे जीते हैं। भारत के महकमा मौसमियात ने शिमाल मशरकी भारत, मगरबी बंगाल और बिहार में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश की पेशगोई की है। अमेरिका ने ईरान पर ताज़ा हमले किए हैं और यानिक सिनर ने अलेक्सेंडर ज़्वेरेव को हराकर विंबलडन मर्दों के सिंगल्स का खिताब अपने पास बरकरार रखा है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।

संकीर्ण सोच हमेशा संदेह को जन्म देती है और व्यापक सोच समाधान का रास्ता दिखाती है। म्यूजिकल दिल लगी सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। पूजा है आपके साथ, आप सभी को मेरा नमस्कार। समय हुआ है 8:46 और 16 सेकंड।

0: तुझे।
1: आपको बता दें कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्लास 10th और 12th के नॉन प्लान एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। स्टूडेंट सरकारी स्कूलों में एडमिशन पाने के लिए 25 जुलाई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सेशन 2026-27 के लिए ये दूसरी साइकिल के एग्जाम होंगे। 27 जुलाई को एडमिट कार्ड जारी होंगे। ये उसी स्कूल से मिलेंगे जहाँ स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, और 1 अगस्त को कॉमन एडमिट टेस्ट सुबह 10 से 12 बजे तक होगा। 5 अगस्त को रिजल्ट जारी होगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल आर एन रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची बाजपेयी।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 63 किलोमीटर लंबा ये देश का सबसे दूसरा लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे से लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा समय घटकर केवल 35 से 45 मिनट रह जाएगा। बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। योजना के पहले चरण में पश्चिम चंपारण जिले का वाल्मीकि नगर, कैमूर जिले का मां मुंडेश्वरी और नालंदा जिले का राजगीर शामिल हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस दौरान वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरणों में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इन युवा भौतिकविदों ने असाधारण प्रदर्शन कर

0: करते हुए देश को गौरवान्वित किया है। भारत ने इस प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले ईरानी सेना द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों के जवाब में किए गए हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने ईरान और अमरीका के बीच शुरू हुए सैन्य टकरावों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब बरकरार रखा है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और पांचवा ग्रैंड स्लैम खिताब है। महिला डबल्स का खिताब चीन और फ्रांस की जोड़ी गुओ हानयू और क्रिस्टीना म्लाडेनोविच ने जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। In West Bengal, two new anti-crime laws come into force in the state today. State Governor R.N. Ravi has given his assent to the bill related to the control of anti-social activities. In June this year, the Assembly passed the stringent anti-crime bills, the West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill 2026 and the West Bengal Maintenance of Public Order Amendment Bill 2026. More from our correspondent.
2: Under the West Bengal Public Safety and Control of Antisocial Activities Act 2026, a person involved in antisocial activities or one who is likely to engage in such activities in the future may be placed under preventive detention. Such a person can be detained for a maximum period of 1 year. The state government says the new law will enable quicker and stricter action against antisocial activities, riots, attacks on police personnel and organized crime. Chief Minister Shubhendu Odhikari has earlier stated that violence or disruption of public order in the name of protest will not be tolerated. He also expressed hope that the new law will play an important role in ensuring the safety and security of women and children. Shandeep Andash Gupta, Akashvani News, Kolkata.
1: Indian Space Research Organization says it has successfully carried out three major tests of the Gaganyaan crew module systems. The first test pertained to ensuring an upright position for the crew module after splashdown in the sea, considered one of the most important crew safety requirements. The second test involved examining the separation of the umbilical mechanism that serves as a link between the crew module, where astronauts live, and the service module, which provides power and propulsion. The third test validated the structural integrity of the crew module during the apex cover separation event. The apex cover protects the parachutes and associated subsystems during the mission. Five Indian students have won gold medals at the 56th International Physics Olympiad 2026, which was held at Bucaramanga in Colombia from 4th to 12th of this month. These young physicists have brought immense pride to the nation by delivering an extraordinary performance. The gold medal winners are Kanishk Jain from Pune, Ridhesh Anant Bendale from Indore, Rishabh Garg from New Delhi, Shreshtha Suraya from Mumbai and Swarit Joshi from Ahmedabad. With this achievement, India secured the first position jointly with Russia, China, Kazakhstan, South Korea and Taiwan among 381 students from 87 countries. Defence Minister Rajnath Singh, Union Minister of Road, Transport and Highways, Nitin Gadkari, along with Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, will inaugurate the Lucknow-Kanpur Expressway today afternoon. They will inspect the expressway and inaugurate it at kilometre 49 in Unnao. The 63-kilometre, 6-lane Lucknow-Kanpur Expressway, with India's second-longest elevated corridor, is also country's first expressway, built with automated and intelligent machine-guided construction technology. India has declared one day national mourning today as a mark of respect for Father Emir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, who passed away yesterday.

100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू के साथ हैं आप और ये है म्यूजिकल दिल्लगी। म्यूजिकल दिल्लगी में हम बहुत सारी बातें करते हैं, आपसे गाने भी आपको सुनवाते हैं और जब कभी हम जिंदगी के बारे में सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में ना इंसान नहीं जानता। इस प्रोग्राम के बारे में आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है, लेकिन क्या हम अपनी जिंदगी के बारे में उस तरह से जानते हैं कि कब क्या कैसे हो जाएगा? किसी को नहीं पता। कभी कभी तो अचानक से सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है और आपको नहीं पता चलता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, बस सवाल रह जाते हैं कि क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, और बस जो हो जाता है उसके बाद बस इंसान सोचता ही रह जाता है।

पहले लोग ना 100 साल जीने की तमन्ना करते थे क्योंकि उनका लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी था। आजकल आप पूछें तो ज्यादातर लोग कहते हैं अरे इतने साल जीकर क्या करेंगे। आपकी चॉइस कोई भी हो, लेकिन जो लोग आज भी 100 साल तक जीते हैं उन्हें लेकर एक जिज्ञासा जरूर बनी रहती है। इसीलिए ऐसे लोगों पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च की और पाया कि 100 साल तक स्वस्थ जीवन जीने वाले लोगों के खून में रसायनों का खास और अनोखा पैटर्न होता है जो उन्हें स्वस्थ बनाए रखता है। ये माना जा रहा है कि इस रिसर्च के नतीजों से भविष्य में बूढ़े होने की प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है।

हम लोगों के साथ ना एक प्रॉब्लम ये है कि हम पहले तो खुद ही बीमारियों और बुढ़ापे को न्योता देते हैं और फिर इलाज ढूंढते हैं। जितना मैं महसूस कर पा रही हूँ ना, तो ज़्यादातर लाइफस्टाइल और पोस्चर से जुड़ी हुई बीमारियां हैं और वही बुढ़ापा भी दे रही हैं, और उनका एक सरल सा उपाय है मोबाइल से छुटकारा पाना। लेकिन यही सरल सा इलाज बेहद मुश्किल भी है, पर इतना तो कर सकते हैं ना कि लेटे लेटे मोबाइल ना चलाएं, क्योंकि इस तरह से युवाओं में टेक नेक सिंड्रोम हो रहा है, अकड़न, कमर और कंधों में टेंशन हो रही है, जो कि पहले ही बुढ़ापे की जो बीमारियां होती थी ना, ये वो वाली बीमारियां हैं। पर दिक्कत यह है कि लोग फोन की लत से छुटकारा नहीं पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना, तो पहले आप फोन देखने का एक वक्त तय कर लें, खाते वक्त या डेली अप डाउन करते वक्त मोबाइल ना चलाएं। और सच में आप मोबाइल से छुटकारा पाना चाहते हैं ना, तो उसे किसी बेहतर आदत से रिप्लेस कर दें, जैसे कोई इंटरेस्टिंग बुक या शौक। फिर धीरे धीरे आप इस लत से छुटकारा पा सकेंगे, अगर सख्ती से रूटीन को फॉलो करेंगे तो, और सिंसियरली कोशिश करेंगे तो।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

पीएम ई बस सेवा शहरी परिवहन को अधिक स्वच्छ, आधुनिक और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे प्रदूषण कम करने और यात्रियों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। ये पहल सतत विकास और हरित ऊर्जा के उपयोग को भी प्रोत्साहित करती है।

अगर हम देखें तो जीवन में जरूरत किन चीजों की है? सिर्फ तीन चीजों की, जो हम कहते हैं ना, रोटी, कपड़ा और मकान, खाने के लिए भोजन, तन ढकने को कपड़ा और रहने के लिए एक घर। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है भोजन, तभी तो सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। लेकिन हम सबसे ज्यादा खिलवाड़ भी उसी के साथ करते हैं। जिसके पास खाने को हर चीज है, उसी को भोजन की कद्र नहीं है। आम तौर पर घरों में बच्चों को हर तरह की खाने की चीजें मिल जाती हैं, और इसीलिए वो फल सब्जियां खाना ही नहीं चाहते, जबकि स्वस्थ रहने के लिए सही पौष्टिक भोजन यही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये हाल जो है ना, ये दुनिया भर के बच्चों का है, पर भारत के बच्चे इसमें दूसरे नंबर पर आते हैं, जो कि फल और सब्जियां खाना नहीं चाहते। स्वस्थ शरीर जो है हमारी सबसे बड़ी नेमत है, और उसके लिए पौष्टिक भोजन भी तो जरूरी है ना। और फल तो इतने टेस्टी भी होते हैं, लेकिन शायद पिज्जा, पास्ता, बर्गर के आगे उनकी अहमियत कम हो जाती है। तो आपको नहीं लगता कि इन हालात को बदलना जरूरी है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहे?

आए दिन बहुत सारी रिसर्च आती हैं जिनमें अलग अलग बातें कही जाती हैं और लोग उनसे भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन कुछ रिसर्च इन हालात में ज़्यादा मायने रखती हैं जब डिमेंशिया, अल्जाइमर्स जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। हाल में आए एक शोध पत्र के मुताबिक जो लोग दो या दो से ज़्यादा भाषाएं जानते हैं उनके दिमाग की उम्र बढ़ने की जो रफ्तार है वो कम हो जाती है, लेकिन उन भाषाओं को इस तरह से जाने कि उन पर अच्छी पकड़ हो, यानी गहराई से अच्छी तरह से आप उनका व्याकरण और उनकी वोकैबुलरी सब कुछ अच्छे से जाने, उनका प्रोनंसिएशन भी। हालांकि रिजल्ट्स जो हैं वो हर व्यक्ति पर अलग हो सकते हैं, पर हम अपने आप को बेहतर बनाए रखने की कोशिश तो कर ही सकते हैं ना।

इसी के साथ नीतू को इजाजत दीजिए, म्यूजिकल दिल लगी का सफर यहीं तक है, आपसे फिर मुलाकात होती है। अभी आप सुनिए गाना, इसके बाद समाचार और फिर हम मिलते हैं आपसे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरणों में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। इस योजना के पहले चरण में पश्चिम चंपारण जिले का वाल्मीकि नगर, कैमूर जिले का मां मुंडेश्वरी और नालंदा जिले का राजगीर शामिल हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस दौरान वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इन युवा भौतिक विदों ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए देश को गौरवान्वित किया है। भारत ने इस प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमले किए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले ईरानी सेना द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब बरकरार रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा. In West Bengal, two new anti-crime laws come into force in the state today. State Governor R.N. Ravi has given his assent to the bill related to the control of anti-social activities. In June this year, the Assembly passed the stringent anti-crime bills, the West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill 2026 and the West Bengal Maintenance of Public Order Amendment Bill 2026. More from our correspondent.
4: Under the West Bengal Public Safety and Control of Antisocial Activities Act 2026, a person involved in antisocial activities or one who is likely to engage in such activities in the future may be placed under preventive detention. Such a person can be detained for a maximum period of 1 year. The state government says the new law will enable quicker and stricter action against antisocial activities, riots, attacks on police personnel and organized crime. Chief Minister Shubhendu Odhikari has earlier stated that violence or disruption of public order in the name of protest will not be tolerated. He also expressed hope that the new law will play an important role in ensuring the safety and security of women and children. Sandeep Dasgupta, Akashvani News, Kolkata.
3: Indian Space Research Organization says it has successfully carried out three major tests of the Gaganyaan crew module systems. The first test pertained to ensuring an upright position for the crew module after splashdown in the sea, considered one of the most important crew safety requirements. The second test involved examining the separation of the umbilical mechanism that serves as a link between the crew module where astronauts live and the service module, which provides power and propulsion. The third test validated the structural integrity of the crew module during the apex cover separation event. The apex cover protects the parachutes and associated subsystems during the mission. Five Indian students have won gold medals at the 56th International Physics Olympiad 2026, which was held at Bucaramanga in Colombia from 4th to 12th of this month. These young physicists have brought immense pride to the nation by delivering an extraordinary performance. The gold medal winners are Kanishk Jain from Pune, Riddhesh Anant Bindale from Indore, Rishit Garg from New Delhi, Shreshth Suraya from Mumbai and Swarit Joshi from Ahmedabad. With this achievement, India secured the first position jointly with Russia, China, Kazakhstan, South Korea and Taiwan among 381 students from 87 countries. Prime Minister Narendra Modi today said that when all-round development ensures positive transformation in the lives of every citizen, it gives fresh momentum to the nation's progress. Sharing a Sanskrit quote, Mr. Modi said, "The country is continuously working to further strengthen India's capabilities with this inspiring spirit." The quote conveys that ensuring the welfare of women, protecting and nurturing the younger generation and continually making the necessary arrangements for the unity, security, prosperity and orderly governance of the nation are the constant duties of every representative of the people. The mortal remains of the 15 Indian tourists who lost their lives in boat capsize incident near Phu Quoc Island in Vietnam will be repatriated from Ho Chi Minh City to India today via Vietnam Airlines flight V97979. The Indian Embassy in Vietnam, in a social media post, said that the flight is scheduled to depart from Ho Chi Minh City at 6 p.m. local time and is expected to arrive at Mumbai's Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport at 9:35 p.m. Indian Standard Time. The embassy said the respective state governments have been requested to coordinate with the affected families for the onward journey of the mortal remains to their final destinations. India has declared

0: to great levels of development and prosperity. In tennis, top seed Italy's Yannick Sinner retained his Wimbledon men's singles title, beating second seed Germany's Alexander Zverev 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 in the final at the All England Club, London last night. In the women's doubles final, 10-seeded Chinese-French pair of Guo Hanyu and Kristina Mladenovic defeated the second-seeded Canadian-Brazilian duo of Gabriela Dabrowski and Luisa Stefani 6-3, 7-5 to clinch the title at the centre court. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वियतनाम नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज भारत लाए जाएंगे। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमले किए। इसराइल में इस वर्ष 27 अक्टूबर को संसदीय चुनाव होंगे और यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स खिताब बरकरार रखा। अब समाचार विस्तार से। वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विमान से भारत वापस लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि विमान स्थानीय समयानुसार शाम 6 बजे हो ची मिन्ह शहर से रवाना होगा और मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारतीय समयानुसार रात करीब 9:30 बजे पहुंचेगा। कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन भारतीय छात्रों ने देश को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत पिंडाले, नई दिल्ली के रिशद गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने 87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि भारत के ओलंपियाड कार्यक्रम की सुदृढ़ता को रेखांकित करती है, जिसका नेतृत्व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा किया जाता है। पिछले एक दशक में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम फिनिश में जगह बनाई है। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स सीईओई और आईसीईएक्स स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सेलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
3: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: विश्व दर्पण आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी

0: को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य हमले शुरू किए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरानी सेना के जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। खाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही तनाव व्याप्त था और इन ताजा हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि होर्मूज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन के लिए खुला है। उन्होंने कहा कि अमरीका ने ईरान की इस नई आक्रामकता का जवाब महत्वपूर्ण सैन्य बल से दिया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरश ने ईरान और अमेरिका के बीच फिर शुरू हुए सैन्य टकरावों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने अमेरिका और ईरान दोनों से वार्ता फिर से शुरू करने और कूटनीति के माध्यम से आपसी मुद्दों को हल करने का आग्रह किया है। विश्व दर्पण के लिए मैं मनोज।
0: इसराइल में इस वर्ष 27 अक्टूबर को संसदीय चुनाव कराए जाएंगे। इस चुनाव को व्यापक रूप से गाजा संघर्ष की शुरुआत के बाद से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व पर जनमत संग्रह के रूप में देखा जा रहा है। इसराइल की संसद शुक्रवार को अपने वर्तमान कार्यकाल का अंतिम सत्र आयोजित करेगी। इसराइली सेना के पूर्व प्रमुख गादी आइजेनकोट नेतन्याहू के मुख्य प्रतिद्वंदी होंगे। हाल के सर्वेक्षणों के अनुसार आइजेनकोट की याशर पार्टी नेतन्याहू की लिकुड पार्टी से मामूली अंतर से आगे है। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है।
2: कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का कल निधन हो गया। शोक दिवस के दौरान देश भर में उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। आज कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू भारत सरकार की ओर से कतर को शोक संदेश देने के लिए वहां जा रहे हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक बार में लगी आग से 27 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 9 पुरुष और 18 महिलाएं शामिल हैं। 60 से अधिक लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री अनुतिन चरणविराकुल ने संवाददाताओं को बताया कि 27 शव बरामद कर लिए गए हैं। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। अमेरिकी संसद कांग्रेस में उच्च सदन सीनेट के सदस्य लिंडसे ग्राहम का निधन हो गया। वे 71 वर्ष के थे। श्री ग्राहम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक थे। उन्होंने अमेरिकी विदेश नीति की वकालत करने के लिए दुनिया भर की यात्रा की थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिंडसे ग्राहम के निधन पर शोक व्यक्त किया है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं जया भारती।
3: यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब बरकरार रखा है। शीर्ष वरीयता प्राप्त इटली के सिनर ने फाइनल में दूसरे वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 से हराया। यह सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और पांचवां ग्रैंड स्लैम खिताब है। महिला डबल्स का खिताब चीन और फ्रांस की जोड़ी गुओ हान्यू और क्रिस्टीना माल्डिनोविच ने जीता। फाइनल में 10वीं वरीयता प्राप्त इस जोड़ी ने दूसरे वरीय कैनेडा और ब्राजील की जोड़ी गैब्रियला डाब्रोवस्की और लुइसा स्टेफानी को 6-3, 7-5 से हराया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में सेमीफाइनल के लिए टीमें तय हो चुकी हैं। पहला सेमीफाइनल 15 जुलाई को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। वहीं दूसरा सेमीफाइनल 16 जुलाई को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे खेला जाएगा। सेमीफाइनल में हारने वाली टीमें 19 जुलाई को मियामी में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेंगी। सेमीफाइनल में जीतने वाली टीमें 20 जुलाई को न्यू जर्सी स्टेडियम में फाइनल खेलेंगी।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वियतनाम नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज भारत लाए जाएंगे। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले किए। इसराइल में इस वर्ष 27 अक्टूबर को संसदीय चुनाव कराए जाएंगे और यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स खिताब बरकरार रखा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

इंसान जब अकेला होता है ना, कहीं बैठा हो ऐसे, तो ऐसा ही होता है। और इसी तरह के गाने ना याद आते हैं, और इसी तरह के विचार भी दिमाग में आते हैं। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है ये। मैं हूं आपके साथ नीतू।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

हम हमेशा ना अपने उन ख्वाबों के बारे में सोचते हैं जो पूरे नहीं हुए या जो हमने बहुत बहुत मेहनत से हमने उन पर काम किया और फिर भी उनमें कामयाबी हमें नहीं मिली। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि वही जो नाकामी होती है ना, वो हमें बहुत कुछ सिखा जाती है, बहुत सारे ऐसे रास्ते दे जाती है जिन पर हमें नहीं चलना है। ये जानना भी तो जरूरी है ना कि किस रास्ते पे जाना है और किस पे नहीं जाना है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

इस पूरी गजल में ना सब कुछ कह दिया गया है उन लोगों के बारे में जो इंट्रोवर्ट होते हैं, ज़्यादा कुछ कहना नहीं आता हो या ठीक से कहना नहीं आता उनके बारे में। और वाकई में ऐसे लोग होते हैं कि जिन्हें समझ में नहीं आता है कि किस वक्त क्या बात कही जाए, लेकिन उनको गलत समझा ही जाता है। बिल्कुल ठीक बात इस गाने में कही गई है। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ नीतू।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पश्चिम बंगाल में दो नए अपराध रोधी कानून आज से लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 तथा पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल आर एन रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। इस योजना के पहले चरण में पश्चिम चंपारण जिले का वाल्मीकि नगर, कैमूर जिले का मां मुंडेश्वरी और नालंदा जिले का राजगीर शामिल हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। इस दौरान वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक पेश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरणों में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माई भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। कोलंबिया के बुकारामंगा में 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इन युवा भौतिकविदों ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए देश को गौरवान्वित किया है। भारत ने इस प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तीनों परीक्षणों से इसरो ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल स्तर का नेतृत्व करेंगे। वियतनाम के फूक्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जा रहे हैं। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले किए हैं। अमरीका की केंद्रीय कमान ने कहा कि इसका उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता

को और कमजोर करना है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष सिंगल्स का खिताब बरकरार रखा है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरे वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। महिला डबल्स का खिताब चीन और फ्रांस की जोड़ी गुओ हान्यू और क्रिस्टीना म्लाडेनोविच ने जीता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर तस्वीर शुरू हो गया है और आपके साथ ही नीतु। रण उत्सव का नाम तो आपने सुना होगा। गुजरात का नृत्य संगीत संस्कृति का कार्निवल होता है। उसमें शामिल होने के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों से बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो कच्छ पहुंचते हैं। हर साल नवंबर में इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ कैमल सफारी, म्यूजिकल मोमेंट्स के अलावा आप बहुत कुछ अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि रेगिस्तान में टेंट में रहना कैसा लगता है। तो आज तस्वीर में हम उस जगह की बात करेंगे जहां पर ये उत्सव होता है, यानी गुजरात का रण ऑफ कच्छ। कच्छ के रण के बारे में जानेंगे आज तस्वीर में।

18,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है, और दूसरा हिस्सा जो 5,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है उसे कहते हैं छोटा रण। इन दोनों हिस्सों से मिलकर बनता है वो रेगिस्तान जो दुनिया के सबसे बड़े नमक के रेगिस्तानों में से एक है। भारत भर में 75% नमक यहीं से जाता है, लेकिन कमाल की बात यह है कि मानसून की बारिश में सूखे मैदान एकदम गायब हो जाते हैं और रह जाता है सिर्फ समंदर।

रुकते रुकते जब आप रेगिस्तान में चलते हैं तो ऐसे ही चला जाता है। गुजरात में अरब सागर से 100 किलोमीटर दूर बंजर रेगिस्तान में सफेद नमक का एक विशाल मैदान है जिसकी सीमा उत्तर में पाकिस्तान तक फैली है। इसी को कच्छ के रण के नाम से जाना जाता है, रण यानी रेगिस्तान। ये इलाका दो हिस्सों में बटा है, एक द ग्रेट रण कहलाता है जो कि

ऐसा माना जाता है कि कच्छ का रण अस्तित्व में आया करीब 20 करोड़ साल पहले। कई सदियों पहले तक यहाँ समुद्री मार्ग था। कच्छ की खाड़ी और सिंधु नदी से गुजरने वाले जहाज इसी रास्ते का प्रयोग करते थे। ये भी कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ईसा पूर्व 3300 से लेकर ईसा पूर्व 1300 तक यहीं फले फूले थे। लेकिन करीब 200 साल पहले एक के बाद एक कई भीषण भूकंप आए, जिनसे यहाँ की भौगोलिक स्थिति पूरी तरह से बदल गई। भूकंप के झटकों ने यहाँ की जमीन को ऊपर उठा दिया और यहाँ समुद्री

पानी से भरी खाइयां बन गई जिनमें समंदर का खारा पानी फंस गया, जिससे ये नमक की भूमि में बदलता गया। पिछले 200 साल में नमक उत्पादन रण में एक बड़ा उद्योग बन गया है।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर आप सुन रहे हैं तस्वीर, जिसमें हम बातें कर रहे हैं कच्छ के रण की, जहां रहना एक मुश्किल अमल है क्योंकि ये भारत के सबसे गर्म क्षेत्रों में से एक है। यहां गर्मियों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और सर्दियों में बर्फ जम जाती है, लेकिन यहां कई सदियों से रह रहे जनजातीय समुदाय के लोगों ने इसका भी उपाय निकाला है और मिट्टी से सिलेंडर नुमा घर बनाए, जिनकी छतें शंकु के आकार की होती हैं। ये खास आकृति वाले घर जो हैं, वो उन्हें तूफानी हवाओं, भूकंप और जो भयानक गर्मी और सर्दी होती है ना, उससे बचाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन घरों पर सुंदर चित्रकारी भी की जाती है, जिन्हें देखकर आप और हम जैसे लोग आश्चर्यचकित भी हो जाते हैं।

करता है जो कई तरह के वनस्पतियों और जीवों के लिए बहुत फायदेमंद है। कच्छ के छोटे रण की स्थापना 1972 में एक अभयारण्य के तौर पर की गई थी ताकि भारतीय जंगली गधे जिन्हें खुर कहा जाता है उनकी बची हुई प्रजाति को विलुप्त होने से बचाया जा सके। जंगली गधे का भोजन है कटीली झाड़ियां जो इस ऊंचे मैदानी क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसके अलावा इस अभयारण्य में नीलगाय मृग, रेगिस्तानी बिल्ली, ब्लैक बग मृग, चिंकारा, ब्लूबेल जैसे कई जानवर पाए जाते हैं। अक्टूबर से मार्च के बीच यहाँ प्रवासी परिंदों के झुंड जो हैं वो अपना घर बनाते हैं। इनमें रण के राजहंस भी शामिल हैं। यहाँ सिर्फ प्रवासी पक्षी नहीं आते बल्कि इकोलॉजिस्ट और जियोलॉजिकल साइंटिस्ट को भी ये जो पूरा इलाका है ये बहुत आकर्षित करता है। मगर ये सब होता है सिर्फ सर्दियों में।

कच्छ के रण के बारे में इतना सब जो मैंने आपको बताया उसे सुनकर शायद आपके मन में ये सवाल उठे कि क्या वहाँ पर्यटक जाते हैं, तो जवाब ये है कि बिल्कुल जाते हैं। आप भी जाने का सोच रहे हैं तो चाहे तो आप फ्लाइट ले लें या ट्रेन, दोनों ही आपको भुज तक पहुँचाएंगे। वहां से आप टैक्सी से या बस से कच्छ तक पहुंच सकते हैं। अगर आप दिल्ली से कच्छ के रण तक जाने के लिए सड़क मार्ग का प्रयोग करते हैं तो बस या प्राइवेट कार का विकल्प है, पर इस यात्रा में आपको काफी लंबा वक्त लग सकता है, करीब 22 घंटे लग सकते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण तो मैंने बताया कि नमक का रेगिस्तान ही है, और फिर सर्दियों में होने वाला रण महोत्सव, यहाँ ढेरों गतिविधियां उस दौरान आयोजित की जाती हैं। उसके अलावा जीप सफारी, कैमल सफारी, सफेद रेगिस्तान में ढलते हुए सूरज और पूर्णिमा के चांद को देखना, ये सब ना आपको सचमुच बहुत अलग दुनिया में ले जाएगा।

कच्छ क्षेत्र में रहने वाले खानाबदोश लोगों की कला, उनका हस्तशिल्प पूरे भारत में मशहूर है। इनमें कच्छ के रण में तैयार होने वाले प्रिंटेड कपड़े, जिनमें टाई एंड डाई, बाटिक, ब्लॉक प्रिंटिंग, नेचुरल कलर्स वाली बेला प्रिंटिंग और अरंडी के तेल वाली रोगन प्रिंटिंग बहुत मशहूर है। रोगन प्रिंटिंग लगभग विलुप्त होने के कगार पर थी, मगर अब सरकार इन सभी हस्तकलाओं को बढ़ावा देने के लिए कोशिशें कर रही है। इनके अलावा चमड़े का काम, मिट्टी के बर्तन, बेल धातु शिल्प जैसी हस्तकलाएं भी यहां पर फल फूल रही हैं।

सफर तो ऐसे ही होते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता है कि कब किस राह पे कौन सा मोड़ आ जाएगा। अनजानी राहों पर ही तो जाते हैं ना सफर के दौरान हम। तो फिलहाल नीतू को इजाजत दीजिए, सफर की बातें यहीं तक। आपसे फिर मुलाकात होती है इसी चैनल पर, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पश्चिम बंगाल में दो नए अपराधरोधी कानून आज से लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल आरएन रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे है। इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा समय घटकर 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। इस योजना के पहले चरण में पश्चिम चंपारण जिले का वाल्मीकि नगर, कैमूर जिले का मां मुंडेश्वरी और नालंदा जिले का राजगीर शामिल हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरणों में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माई भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिन्दी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। कोलंबिया के बुकारामंगा में 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इन युवा भौतिकविदों ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए देश को गौरवान्वित किया है। भारत ने इस प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। ये इंटर्नशिप कथित तौर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बताई गई थी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक न करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। शोक दिवस के दौरान देशभर में उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। आज कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। वियतनाम के फुकुओक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमरीका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। ये दावे अमरीकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आया है जिसमें ईरान की हवाई रक्षा प्रणाली, मिसाइल और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों, तटीय रडार ढांचे और सामरिक नौसैनिक संसाधनों को निशाना बनाया गया था। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। सेंसेक्स 145 अंक घटकर 77,425 और निफ्टी 55 अंक लुढ़ककर 24,153 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, जीवन में बदलाव के लिए कीजिए एक प्रयोग। अगर किसी कारण आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो एक दिन ध्यान में निकालें। अपने जीवन को सरल और सहज बनाने के लिए ध्यान सबसे उत्तम है। ध्यान से मन का बोझ भी कम होने लगता है, मगर इसके लिए एक ही जगह पर बैठे रहने की जरूरत नहीं है। ध्यान तो कर्म करते हुए भी किया जा सकता है। इसके लिए एक एक काम को बेहद तसल्ली के साथ करते जाना है। इससे आपको एक अनोखी शांति का अनुभव होने लगेगा। अपने घर में, काम पर, खाना खाते हुए और अन्य कार्यों में थोड़ा सा धीरे हो जाएं। जरा भी जल्दीबाजी ना दिखाएं। इससे एक बहुत बड़ा आपको लाभ प्राप्त होगा। आप अपने उन विचारों को बदल सकते हैं जो आपको बार बार परेशान करते रहते हैं, आपको अक्सर बेचैन करते रहते हैं, आपको पीड़ा देते हैं। जब हम जल्दीबाजी को त्याग कर सुकून और आराम की अनोखी दशा से जुड़ते हैं तो ये तरीका हमें अपने भीतर की गहराई को जानने और दुनिया से जुड़ने का एक अनमोल अवसर देता है।

दोस्तों, सुबह घास पर चलने के भी होते हैं बेहद फायदे। ये तो सभी जानते हैं कि सुबह का समय ध्यान और शारीरिक गतिविधियों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आप सुबह में ऐसे घास पर चलेंगे तो सिर्फ एक सुकून ही नहीं मिलेगा, बल्कि मिलेंगे कई सारे फायदे। जिस तरह की आपको तनाव कम होकर अच्छी नींद आती है, सुबह चलने से स्ट्रेस हार्मोन का स्तर कम होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है, रक्त संचार में सुधार और रक्त का प्रभाव ठीक से होता है, जिससे पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का प्रभाव मिलता है। ये पैरों में दर्द, सुन्न होना और अकड़न जैसी समस्याओं को दूर करता है। इसके अलावा विटामिन डी भी मिलता है, क्योंकि सुबह की हल्की धूप में चलने से विटामिन डी प्राप्त होता है और जो कि हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, यानी कि 15 से 30 मिनट तक काफी फायदेमंद होता है विटामिन डी लेना। सुबह घर से जब आप निकलते हैं, तब जब घास पर ओस की बूंदें और सूरज की किरणें हल्की हों, उस समय आप अपना चलना शुरू कर सकते हैं। ये अच्छा माना जाता है। ना कितनी आसान आप एक्सरसाइज करें या कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जिसे आप रोज करना चाहते हैं, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इससे भी आपको कई सारे फायदे मिल सकते हैं। तो आप चाहें तो 15 से 20 मिनट या आधा घंटे आप सुबह घास पर चलें और ढेरों सारे फायदे भी लें।

दोस्तों, रिश्तों की चमक को हमेशा बरकरार रखें, क्योंकि रिश्ता एक खूबसूरत शब्द, एक ऐसा एहसास है जो दिल से जुड़ा होता है और इसमें अनेक भावनाओं और अलग अलग विचारों का समावेश होता है। ये खुशी की ओर धीरे धीरे बढ़ता है। ये एक मजबूत, आकर्षक और निजी जुड़ाव की भावना है। सच्चा रिश्ता वही होता है जो सभी हालातों में एक साथ हो, यानी दुख और सुख में, दोनों में। रोजमर्रा की छोटी छोटी कई सारी बातें हमारे रिश्तों में चमक ला सकती हैं। जैसे कई बार शब्दों से ज्यादा बोलने का

असर पड़ता है। हमेशा सपाट अपेक्षापूर्ण बोलना भावनात्मक दूरी का संकेत है। कम आवाज में धीरे धीरे बातचीत करना आपसी व्यवहार को दर्शाता है। शोध कहते हैं रिश्तों में शब्दों के अलावा शरीर के कई दूसरे संकेत भी मायने रखते हैं। बार बार एक दूसरे को देखते हुए बात करनी या ध्यान से बातचीत को सुनना एक दूसरे के लिए सुरक्षा सम्मान को दिखाता है। एक दूसरे की छोटी बड़ी जरूरत समझना आपसी देखभाल दिखाता है और सहनशीलता का भाव भरोसे को बढ़ाता है। रिश्ता एक सकारात्मक ऊर्जा है जो हमें मानसिक और आंतरिक दोनों ही तरह की सुकून प्रदान करता है, जिससे हम आसानी से जीवन जीने लगते हैं। इसीलिए रिश्तों को हमेशा सहेज कर संभाल कर रखिए और इस तरह आपके रिश्तों में हमेशा चमक जो है वो बरकरार रहेगी।

दोस्तों, वैसे तो बारिश का मौसम प्रकृति और सुंदरता बिखेरता हुआ अच्छा लगता है, लेकिन इस मौसम में खास तौर पर हवा में नमी बनी रहती है। साथ ही भीगने से खुद को हमेशा बचाना भी बहुत जरूरी है, यानी कि मौसम हरे भरे नज़ारे के अलावा बीमारियां भी लेकर आता है। बारिश की बूंदों में कम से कम भीगने का प्रयास करें। इस मौसम में कब बारिश हो जाए ये किसी को भी पता नहीं होता, और ऐसे में जब घर से निकलें तो छाता, रेनकोट जैसी चीज़ों को अपने साथ ले जाना ना भूलें। बरसात में जब भी धूप निकले, बिस्तर को धूप सुखाएं और नमी के कारण उसमें पैदा हुए कीटाणु भी मर जाएंगे। लाख कोशिशों के बावजूद अगर आप बारिश में भीग गए हैं तो तुरंत गीले कपड़े बदलें और फिर तुलसी, लौंग और काली मिर्च युक्त चाय पिए, अन्यथा सर्दी, खांसी, जुकाम होने की आशंका बनी रहती है। अपने जूते, चप्पल या सैंडल भीग जाने पर घर पर आते ही खोलकर दीवार के सहारे खड़े कर दें ताकि पानी निकल जाए, और फिर धूप निकलने के बाद इसे सुखा लें। इस मौसम में साधारण जूते, चप्पल या सैंडल ही पहने। इस मौसम में कपड़े मुश्किल से सूखते हैं, हवादार स्थान पर कपड़े को सुखाना जरूरी है, जैसे कि तौलिया, चादर और जो हमारे यूज के कपड़े होते हैं, उन चीज़ों को सुखाना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह पहने जाने वाले कपड़ों में भी हल्के और जल्दी सूखने वाले कपड़ों का चयन करें, और इस मौसम में घर का भी निरीक्षण जरूर करते रहें कि कहीं से अगर पानी टपक रहा हो तो तुरंत उसे रोकने की व्यवस्था करें, या घर के आसपास जो भी आपको नजर आए कहीं पानी रुका हुआ या जमा हुआ हुआ तो वो भी आप उसे ठीक करा लें, क्योंकि इससे बीमारी का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा कई सारी बातें हैं जो इस मौसम में ध्यान देने की होती हैं। तो जब भी आप बारिश में भीग जाएं तो इस तरह का आप कभी भी नुकसान ना उठाएं, क्योंकि बारिश में भीगने से भी कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो बारिश का आनंद तो आप लें, लेकिन उसके अलावा अपने स्वास्थ्य का भी रखें ख्याल।

दोस्तों, आप हमें मेल कर सकते हैं, आप अपने विचार और सुझाव लिखकर हमें भेज सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है fmgoldga@gmail.com।

दोस्तों बात करते हैं कुछ भारत के राज्य के सबसे साफ गांव की। स्वच्छता की मिसाल पेश कर रहा है प्लास्टिक युक्त और खास तौर पर इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल वाले इस गांव की खूबसूरती देखने के लिए दुनिया भर के पर्यटक यहां आते हैं। ये है मावलिन नांग गांव। दुनिया भर में भारत का एक गांव अपनी साफ सफाई के लिए काफी फेमस है, यानी मशहूर है, जिसे देखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस गांव में एक भी सफाई कर्मी नहीं है और इस छोटे से गांव की दुनिया भर में तारीफ होती है। ये छोटा सा गांव पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित है। करीबन 22 साल से ये गांव सफाई के मामले में सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुका है। ये गांव कैसे सबसे साफ है, ये सवाल हर किसी के मन में आता है। यहाँ बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी लोग मिलकर अपने गांव को साफ रखते हैं। लोग कहीं भी कचरा नहीं फेंकते और हर जगह आपको बांस से बने डस्टबिन दिखाई देंगे। मेघालय में स्थित इस छोटे से गांव में प्लास्टिक का इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक है। यहाँ के लोग पर्यावरण की रक्षा को बहुत गंभीरता से लेते हैं और प्लास्टिक की जगह वे बांस और दूसरे प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि गांव में हरियाली और स्वच्छता दोनों बनी रहती है। हर घर के बाहर और गलियों में सफाई का खास ध्यान रखा जाता है क्योंकि जैविक कचरे से लोग अपने खेतों के लिए नेचुरल खाद बनाते हैं। इस गांव के लोगों के लिए साफ सफाई सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि उनकी जिंदगी का हिस्सा है। बच्चों को छोटी उम्र में ही स्वच्छता का महत्व सिखाया जाता है और स्कूलों में भी साफ सफाई पर ध्यान दिया जाता है। ये गाँव अब एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन गया है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग इस गांव को देखने आते हैं और यहाँ की साफ सुथरी सड़कें, सुकून भरी जिंदगी, हरियाली और प्रकृति की खूबसूरती लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। गांव में एक सफाई कर्मी नहीं है लेकिन फिर भी जहाँ आसपास सुंदर नजारे आप वहाँ पे देख सकते हैं। इस गांव तक जाने के लिए पहले गुवाहाटी या शिलांग पहुंचना होगा और यहाँ से टैक्सी लेकर शिलांग होते हुए मावलिन नांग जा सकते हैं। शिलांग से दूरी करीब 80 से 90 किलोमीटर है और रास्ते में डावकी की खूबसूरत नदी भी आपको देखने को मिल सकती है जो सफर को आपके यादगार बना सकती है।

और दोस्तों बात करते हैं अपना व्यवसाय शुरू करने से पहले कुछ ध्यान देने योग्य बातें। क्या आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और किस तरह करना चाहते हैं तो इसके बारे में ज्यादा ना सोचें। व्यवसाय की सफलता के लिए आपका जुनून, समर्पण और धैर्य की आवश्यकता होती है, साथ ही कुछ बातों की भी होती है। सबसे पहले एक अच्छा व्यवसायिक विचार खोजें, अपनी कौशल, रुचियां बाजार की जरूरत के आधार पर चुनें जो आपको पसंद हो। एक व्यवसाय योजना बनाएं जिसमें विवरण, लक्ष्य, वित्तीय योजना, मार्केटिंग रणनीति शामिल हो। व्यवसाय शुरू करने से पहले धन की व्यवस्था कर लें, चाहे वो आपकी बचत हो, लोन हो या फिर निवेश हो। अपने व्यवसाय को पंजीकृत करें, लाइसेंस परमिट लेना जरूरी है। एक मजबूत ब्रांड पहचान बनाएं, मार्केटिंग करें, ग्राहक सेवा प्रदान करें, साथ ही लगातार निगरानी करते रहें। उद्योग के अन्य लोगों से संपर्क करें, सलाह लें, सहयोग करें और अपने व्यवसाय के वित्त

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पश्चिम बंगाल में दो नए अपराध रोधी कानून आज से लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल RN रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून

0: असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे है। इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने ऐसा झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की ओर से दायर याचिका के बाद किया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सभी मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए मात्र एक महीने में 4 नई खेप के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इनमें नवीनतम जहाज INS महेंद्रगिरी, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया, 6th नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। इसे इस महीने की 11 तारीख को शामिल किया गया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टर्स और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। ये इंटर्नशिप कथित तौर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बताई गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजेस पर क्लिक न करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। वियतनाम के फूक क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमरीका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और उत्तराखंड में भी अगले 2 दिन तक सामान्य बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has congratulated the Indian contingent for winning gold medals at the 56th International Physics Olympiad 2026 held at Bucaramanga, Colombia. In a social media post, Mr. Modi said their feat reflects yet another example of the limitless potential of the nation's Yuva Shakti and their passion towards science and research. The Prime Minister further noted that it is equally commendable that in the last

किशोर कुमार की आवाज़ में आपने सुना मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना जो कि फिल्माया गया था अमिताभ बच्चन पर। दोस्तों आप तो जानते हैं कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन कितने ज़बरदस्त नज़र आए हैं। ये उनकी बहुत ही कामयाब फिल्म थी और इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे प्रकाश मेहरा। दोस्तों प्रकाश मेहरा की ही आज हम बातें करने वाले हैं कलाकार बेमिसाल में। प्रकाश मेहरा हिंदी सिनेमा के सबसे कामयाब डायरेक्टर में से एक माने जाते हैं। भारत में मसाला फिल्मों की जो शुरुआत है उसमें तीन फिल्मकारों का नाम खास तौर से लिया जाता है, नासिर हुसैन, मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा। प्रकाश मेहरा का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से था। उनका जन्म 13 जुलाई 1939 को हुआ था, यानी कि आज ही के दिन। प्रकाश मेहरा के फिल्मकार बनने की कहानी भी एक फिल्म जैसी है दोस्तों। एक बहुत ही मुश्किल बचपन, संघर्ष भरा दौर और फिर बहुत सारी मेहनत के बाद मिली बेहिसाब कामयाबी।

आशा भोसले की आवाज में हेरा फेरी फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना। संगीत कल्याण जी आनंद जी का और इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे प्रकाश मेहरा। दोस्तों, प्रकाश मेहरा महज 8 साल के थे जब माँ गुजर गई। उनके पिता का दुनिया से जैसे मोह सा भंग हो गया, वैरागी हो गए। ऐसे में प्रकाश मौसी के घर जाकर रहने लगे दिल्ली में। कुछ वक्त वहीं गुजारने के बाद उनके मन में आया कि फिल्मों में काम किया जाए। फिल्मों से लगाव उन्हें बचपन से ही रहा। बहुत छोटे थे जब रेडियो सुनने लगे थे और सपने देखने लगे थे मुंबई जाकर फिल्मों में काम करने के। आखिरकार एक दिन कुल जमा 13 रुपए लेकर मुंबई के लिए रवाना हो गए। यहां फिल्मों में तो काम नहीं मिला, लेकिन मजबूरी में एक बार्बर शॉप पर बतौर मजदूर काम करने लगे। दोस्तों, इसी दुकान पर उनकी जान पहचान हुई कुछ निर्माता निर्देशकों से और रास्ता मिला फिल्मों तक जाने का। सबसे पहले उन्होंने फिल्मों के लिए दो कहानियां लिखीं।

प्रोफेसर फिल्म का ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। दोस्तों वैसे अगर आपने ये फिल्म देखी हो, इस फिल्म के बारे में आप जानते हो, तो आप सोच रहे होंगे कि प्रोफेसर का गाना क्यों सुनाया, क्योंकि प्रोफेसर में तो प्रकाश मेहरा का कोई रोल नहीं है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोफेसर 1962 में रिलीज़ हुई थी और फिल्मों से जुड़ने का पहला मौका, पहला जरिया बनी थी प्रकाश मेहरा के लिए। दोस्तों इस फिल्म में उन्होंने प्रोडक्शन कंट्रोलर के तौर पर काम किया था और प्रोफेसर के बाद प्रकाश मेहरा को जो अगली फिल्म मिली उसका नाम था पूर्णिमा। पूर्णिमा में असिस्टेंट डायरेक्टर की कमान संभाली थी उन्होंने।

0: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में आपने बहुत ही प्यारा सा गाना सुना पूर्णिमा फिल्म से। इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था फिल्मकार प्रकाश मेहरा ने। उनके बारे में और भी बातें सुनेंगे करेंगे हम, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप, कलाकार बेमिसाल में। आज बातें हो रही हैं फिल्मकार प्रकाश मेहरा की। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में आने के बाद प्रकाश मेहरा की जो पर्सनल लाइफ की जद्दोजहद है जैसे खत्म ही हो गई। बहुत ही जल्द उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ थी वो भी एकदम अच्छी तरह से चलने वाली थी, क्योंकि उन्हें उनकी तीसरी फिल्म मिल चुकी थी जिसमें डायरेक्शन की जो कमान थी वो पूरी तरह से प्रकाश मेहरा के हाथ में आ गई थी। फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी। ये वो फिल्म है जिसमें पूरी तरह से जो डायरेक्शन था वो प्रकाश मेहरा ने किया।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हसीना मान जाएगी फिल्म का ये गाना आपने सुना। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वो पहली फिल्म थी जिसका डायरेक्शन किया था प्रकाश मेहरा ने। ये बेहद कामयाब रही थी और इस फिल्म के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा प्रकाश मेहरा को। वैसे दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक सुनहरे साथ की, एक ऐसा साथ जो बहुत बहुत लंबे समय तक रहा और इसने हिंदी सिनेमा को समृद्ध किया। दोस्तों, ये साथ था प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा जब साथ आए तो कामयाबी के नए रिकॉर्ड्स बने। दोनों की दोस्ती बहुत लंबे टाइम तक चली पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। उनकी कुल 7 फिल्में ऐसी रहीं जो एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर हिट थीं, जैसे कि खून पसीना, हेरा फेरी, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, नमक हलाल और शराबी आदि। इसलिए आज के प्रोग्राम में आप वो गाने ज़्यादा सुन रहे होंगे जो कि अमिताभ बच्चन पर फिल्माए गए हैं। दोस्तों, दोनों के साथ की जो आखिरी फिल्म थी वो जादूगर थी, जो 1989 में आई थी। लेकिन फिलहाल जो गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो गाना उनकी पहली फिल्म से है, जंजीर से।

लता मंगेशकर की आवाज में जंजीर फिल्म का ये गाना आपने सुना आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। दोस्तों, जया बच्चन और अमिताभ बच्चन की साथ में ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी और प्रकाश मेहरा के लिए जंजीर बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट थी और यही हालत अमिताभ बच्चन की रही। जंजीर से पहले उनकी करीब 14 फिल्में आई थी जो कुछ खास नहीं कर पाई। ऐसे में प्रकाश मेहरा ने जंजीर के लिए अमिताभ बच्चन को ही चुना, उन पर ही भरोसा दिखाया। ये प्रकाश मेहरा की खासियत रही, उन्होंने जब भी किसी कलाकार को अपनी फिल्म में कास्ट किया तो ये नहीं देखा कि पहले उनकी फिल्में कामयाब रही हैं या फिर फ्लॉप रही हैं। वो बस कलाकार को देखते, उसका चयन करते और उसे काम दे दिया करते। दोस्तों, इस तरह से उन्होंने बहुत सारे कलाकारों की जिंदगी बनाई, बहुत सारे कलाकारों के करियर बनाए और कुछ कम जो सफल कलाकार थे उनको स्टार बनाया। बताऊंगी आपको उनकी इस आदत के बारे में और भी, लेकिन उससे पहले नावारिस फिल्म का ये गाना।

मन्ना डे की आवाज में लावारिस फिल्म का ये आइकॉनिक गाना आपने सुना आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। और दोस्तों, प्रकाश मेहरा एक ऐसे फिल्मकार थे जो रिस्क लेने से कभी नहीं डरते थे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात आपको बताना चाहती हूँ कि प्रकाश मेहरा वो पहले हिंदी फिल्मकार थे जिन्होंने हॉलीवुड के लिए फिल्म बनाने की शुरुआत की। 80 के दशक के आखिरी सालों में उन्होंने फिल्म बनानी शुरू की थी जिसका नाम था द गॉड कनेक्शन विद फ्रैंक यंडलून। इसमें आगे चलकर नामी हॉलीवुड स्टार चार्ल्स ब्रॉन्सन भी काम करने वाले थे, लेकिन किन्हीं वजह से ये फिल्म नहीं बन पाई। हालांकि उन्होंने रास्ता दिखा दिया दूसरे फिल्मकारों को और भारत के डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स हॉलीवुड के लिए फिल्में बनाने लगे, आज बन रही हैं। प्रकाश मेहरा को इस वजह से भी जाना जाता है कि वो नए एक्टर्स को कास्ट बहुत ही आराम से कर लिया करते थे। और भी कई ऐसे सितारे हैं जिन्हें उन्होंने कास्ट किया। एक घटना मैं आपको सुनाने वाली हूं, लेकिन उससे पहले गाना सुनिए, फिर लौट कर आइए।

कुमार सानू की आवाज में आपने सुना दलाल फिल्म का ये गाना। दोस्तों कहते हैं कि एक दिन फिल्म खून पसीना की शूटिंग चल रही थी। उस दिन खलनायक के कुछ शॉट्स फिल्माए जाने थे, लेकिन किसी वजह से वो सेट पर नहीं पहुंच पाए। अब ऐसे में प्रकाश मेहरा के जो मामा जी थे सेट पर मौजूद थे, शूटिंग देखने आए थे फिल्म की। प्रकाश मेहरा ने

बिना वक्त बर्बाद किए अपने मामा जी को विलेन बना दिया और उनसे वो सीन पूरा करवा लिया। नए या कम कामयाब कलाकारों के साथ काम करने में प्रकाश कभी नहीं हिचकिचाते थे। प्रकाश मेहरा सिर्फ फिल्म मेकर ही नहीं बल्कि स्टार मेकर भी थे। अमिताभ बच्चन, विनोद मेहरा, अनिल कपूर, पुरु राजकुमार, मिथुन चक्रवर्ती, सबको उन्होंने अपनी कामयाबी के दौर में अपने साथ काम दिया।

0: किशोर कुमार की आवाज में शराबी फिल्म का ये गाना आपने सुना बिल्कुल अभी। दोस्तों, आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा ऐसी हमें उम्मीद है। सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम गोल्ड।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शहरियत और गैर मुल्की होने का तायुन मुनसिफाना, कानूनी और मुनासिब अमल के जरिए किया जाना चाहिए। अदालत ने 27 अफराद को गैर मुल्की करार देने के गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। अदालत आलिया ने राम जन्मभूमि मंदिर में अतियात की मुबैना खुर्दबुर्द की तहकीकात करने वाली एसआईटी की कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस के रिसाव से मुतासिरा झारखंड के कारकुनों के मामले का नोटिस लिया है और फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया है। वियतनाम में कश्ती के हादसे में हलाक होने वाले 15 भारतीय शहरियों के जसद खाकी आज रात वियतनाम एयरलाइंस की परवाज के जरिए भारत लाए जा रहे हैं। ईरान ने अपने फौजी ठिकानों पर अमरीका के हमलों के तनाजुर में जवाबी कार्रवाई करते हुए उर्दुन, बहरेन और कुवैत में अमरीका के फौजी अड्डों पर हमले किए हैं। और खवातीन क्रिकेट में लॉर्ड्स के मैदान पर मेजबान इंग्लैंड भारत के साथ तारीखी वाहिद टेस्ट मैच में आज अपनी दूसरी इनिंग्स में 6

0: विकेट पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शहरियत के तायुन का अमल या किसी फर्द को गैर मुल्की करार देने की कार्रवाई मुनसिफाना होनी चाहिए और इसमें अदालती उसूलों से समझौता नहीं किया जा सकता। अदालत आलिया ने 27 अफराद की दाखिल करदा दरख्वास्तों की समाअत करते हुए यह बात कही जिन्हें आसाम में गैर मुल्कियों से मुतालिक ट्राइब्यूनल ने गैर मुल्की करार दिया था। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता पर मुश्तमिल बेंच ने 27 केसों में गुवाहाटी हाईकोर्ट और गैर मुल्कियों से मुतालिक ट्राइब्यूनल के अहकाम को रद्द कर दिया। अदालत आलिया ने हिदायत दी है कि मुतालिका ट्राइब्यूनल की जानिब से इन केसों की दोबारा समाअत होने तक दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ डराने धमकाने की कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की जानिब से तश्कील दी गई खसूसी जांच टीम SIT को हिदायत दी है कि वह अपनी तहकीकात के बारे में कार्रवाई रिपोर्ट पेश करे। अदालत ने उन दरख्वास्तों पर मरकजी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी नोटिस जारी किए हैं जिनमें अयोध्या राम मंदिर के लिए दिए गए एहतियात में मुबैना खुर्दबुर्द की तहकीकात CBI से कराने की अपील की गई है। इससे कबल उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की दरख्वास्त पर 13 जून को 3 अरकान पर मुश्तमिल SIT तश्कील दी थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हुकूमत के दरख्वास्त गुजार संजीव कुमार अम्बाष्ठा की जानिब से एक उजरदारी दाखिल किए जाने के बाद तमिलनाडु में अमोनिया गैस लीक में मुतासरा झारखंड के वर्करों के मामले का नोटिस लिया है। सदर जमहूरिया के सेक्रेटेरिएट ने रोजगार और मेहनत के सेक्रेटरियों को हिदायत दी है कि वो फौरी जरूरी कार्रवाई करें और की गई कार्रवाई के सिलसिले में रिपोर्ट दाखिल करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब हमाजहत तरक्की से हर शहरी की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली यकीनी हो जाती है तो इससे मुल्क की तरक्की को नई रफ्तार मिलती है। सोशल मीडिया पोस्ट पर एक संस्कृत श्लोक शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क इस बायस तरगीब जज्बे के साथ भारत की सलाहियतों को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोलंबिया में मुनक्किदा 56वें बैन अल-अक़वामी फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में सोने का तमगा जीतने पर भारतीय दस्ते को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इस कामयाबी से मुल्क की युवा शक्ति की बेपनाह सलाहियत की अक्कासी होती है। सरकार ने कहा है कि मुल्क में ही तैयार किए गए नए सिलसिले के 4 बहरी जंगी जहाजों को सिर्फ 1 महीने में भारतीय बहरिया में शामिल किया गया है ताकि मुल्क के बहरी दिफा को मजीद मुस्तहकम बनाया जा सके। इस सिलसिले के तहत INS महिंद्रा गिरी को इस महीने की 11 तारीख को बहरिया में शामिल किया गया है जो मुल्क में ही डिजाइन किया गया नीलगिरी जुमरे का स्टेल्थ फ्रिगेट है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारतीय बहरिया ने पिछले महीने की 21 तारीख को मुल्क में ही तैयार किए गए 3 जंगी बहरी जहाजों को अपने बेड़े में शामिल किया था। इनमें INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे शामिल है। इन जंगी जहाजों को फजाई शिकन, जमीनी शिकन और आबदोज शिकन जंगी जहाज साजो सामान समेत मुख्तलिफ तरह के इस्तेमाल के लिए प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। प्रोजेक्ट 17A नए सिलसिले के 7 गाइडेड मिसाइल जंगी बहरी जहाज बनाने का भारतीय बहरिया का जदीद तर्ज का स्टील्थ फ्रिगेट प्रोग्राम है। ये जंगी जहाज बहरिया की कार्रवाई से मुतालिक तमाम शोबों में भरपूर अंदाज से कार्रवाई करने की सलाहियत रखते हैं। इन जहाजों को बेशतर मुल्की वसाइल से तैयार किया गया और ये आत्मनिर्भर भारत के नजरिए की अक्कासी करते हैं और इनसे मुल्क के दिफाई मैन्युफैक्चरिंग इकोनिज़ाम को तकवियत मिलेगी। इन जंगी जहाज़ों से बहरी सिक्योरिटी में इजाफा होगा, बहरी मईशत को तकवियत मिलेगी और एक सरकर्दा बहरी ताकत के तौर पर भारत की पोजीशन मुस्तहकम होगी। दिल्ली से अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वियतनाम में फूकोक जजीरे के नजदीक एक कश्ती के डूबने के हादसे में मारे गए 15 भारतीय सयाहों के जसद खाकी को वियतनाम एयरलाइंस की परवाज VNN 979 के जरिए आज हो ची मिन्ह शहर से भारत वापस लाया जाएगा। वियतनाम में भारतीय सफारतखाने ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यह परवाज मकामी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे हो ची मिन शहर से रवाना होगी और

0: कोहे के भारतीय वक्त के मुताबिक ये परवाज रात 9:35 पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर पहुंचेगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के हमरा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह करेंगे। 63 किलोमीटर तवील 6 लेन वाला लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे भारत का दूसरा सबसे तवील सतह जमीन से ऊपर कॉरिडोर होने के साथ साथ मुल्क का ऐसा पहला एक्सप्रेसवे भी है जिसे ऐसी तामीराती टेक्नोलॉजी से तामीर किया गया है जो ऑटोमेटेड और इंटेलिजेंट मशीनों पर मबनी है। बिहार में वजीर आला सम्राट चौधरी ने आज पटना में मुनक्कदा एक तकरीब में बिहार हेली टूरिज्म और फिजाई खिदमात की स्कीम की सताइश की है। वजीर आला ने कहा कि इस स्कीम का आगाज रियासत में सियाहत को बेहतर बनाने और बिहार में कनेक्टिविटी में इजाफा करने के लिए किया गया है।
1: लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शो केस में नहीं रखना है, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके, बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो, तब समझिए गया कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
0: मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव का तीसरा मरहला हो रहा है। रियासत के वजीर आला डॉ मोहन यादव ने इस कॉन्क्लेव का इफ्तिताह किया और 178.70 करोड़ रुपए से ज्यादा की मजमूई सरमायेकारी के साथ 20 सनती यूनिटों का आगाज किया। इस मौके पर डॉ मोहन यादव ने कहा कि एक जमाने में मध्य प्रदेश को सिर्फ खेती के लिए जाना जाता था, लेकिन अब ये रियासत ड्रोन से लेकर मिसाइल तक हर चीज बना रही है। ईरान के सिपाही पासदारा ने इनकलाब इस्लामी ने उर्दुन, बहरेन और कुवैत में अमरीका के फौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। उसने ईरान के फौजी ठिकानों पर अमरीका के हालिया हमलों के तनाजुर में जवाबी कार्रवाई के तौर पर ये हमले किए हैं। ईरान की सरकारी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक इस कार्रवाई में उर्दुन में प्रिंस हसन फिजाइया के अड्डे, बहरेन में शेख ईसा फिजाइया के अड्डे और कुवैत में अल सालिम और अहमद अल जाबिर फिजाइया के अड्डों को निशाना बनाया गया है। खवातीन क्रिकेट में लॉर्ड्स के मैदान पर वाहिद तारीखी टेस्ट मैच में इंग्लैंड आज दोपहर भारत के खिलाफ अपनी दूसरी इनिंग्स में 6 विकेट के नुकसान पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। कल तीसरे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो भारत को कुल 269 रन की सबकत हासिल थी और चाय के वक्त तक भारत ने अपनी दूसरी इनिंग्स 7 विकेट पर 341 रन बनाकर खत्म करने का ऐलान किया और इंग्लैंड को 457 रन का निशाना दिया। विकेटकीपर बल्लेबाज यस्तिका भाटिया लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट सेंचुरी बनाने वाली पहली खातून बनी। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शहरियत और गैर मुल्की होने का तायुन मुनसिफाना, कानूनी और मुनासिब अमल के जरिए किया जाना चाहिए। अदालत ने 27 अफराद को गैर मुल्की करार देने के गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। अदालत आलिया ने राम जन्मभूमि मंदिर में अतियात की मुबीना खुर्दबुर्द की तहकीकात करने वाली SIT की कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस के रिसाव से मुतासरा झारखंड के कारकुनों के मामले का नोटिस लिया है और फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: 26, held in Bucaramanga, Colombia. In a social media post, Mr. Modi said their feat reflects yet another example of the limitless potential of the nation's Yuva Shakti and their passion towards science and research. In women's cricket, England will resume their second innings at 130 for six in the historic one-off test at the Lord's against India this afternoon. Resuming the penultimate day with an overall lead of 269, India declared their second innings at 341 for seven at the stroke of tee, giving a target of 457 runs. Wicketkeeper batter Yastika Bhatia became the first woman to score a test century at Lord's. The Intermeteorological Department, IMD, has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Bihar and Gangetic West Bengal today. The IMD said heavy rainfall conditions will also prevail over northeast, east Uttar Pradesh, Odisha, sub-Himalayan West Bengal and Uttarakhand during the next 2 to 3 days. Meanwhile, heat wave conditions are likely to prevail in isolated pockets over coastal Andhra Pradesh, while Odisha, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal will experience hot and humid weather conditions till tomorrow. Benchmark domestic equity indices erased their early losses and were trading on a flat note during the afternoon session today. The Sensex added 20 points to 77,589, while the Nifty dipped 7 points to 24,200 when reports last came in. In the global crude oil market, Brent crude was trading 3.3% up at $78.51 per barrel when reports last came in. In tennis, top seed Italy's Yannick Sinner retained his Wimbledon men's singles title, beating second seed German Alexander Zverev 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 in the final at the All England Club last night. This is Sinner's second consecutive Wimbledon men's singles title and his fifth Grand Slam crown. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court says determination of citizenship and foreigner status must be carried out through a fair, lawful and reasonable process. Sets aside Guwahati High Court's decision declaring 27 appellants as foreigners. Apex Court seeks status report from the SIT probing alleged misappropriation of donations in Ram Janmabhoomi Temple. President Draupadi Murmu takes cognizance of matter regarding Jharkhand workers affected by ammonia gas leak in Tamil Nadu, directs immediate action. Mortal remains of 15 Indians who died in Vietnam boat tragedy to be brought back home tonight by a Vietnam Airlines flight. Iran strikes U.S. military bases in Jordan, Bahrain and Kuwait in retaliation to U.S. attacks on its military targets. And in women's cricket, hosts England to resume their second innings at 130 for six against India in historic one-off test at the Lord's. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर आज रात विशेष विमान से भारत पहुंचेंगे। ईरान ने अपने सैन्य ठिकानों पर अमरीकी हमलों के जवाब में जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन आज भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के

0: आदेशों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि न्यायाधिकरणों द्वारा उनके मामलों की दोबारा सुनवाई होने तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। याचिकाकर्ताओं ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती दी थी। अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 1971 से पहले के अभिलेखों, मतदाता सूचियों और भूमि अभिलेखों जैसे दस्तावेजों का सहारा लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने याचिकाओं की सुनवाई की। इससे पहले 13 जून को एसआई का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में किसी गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय के 27 मई के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें प्रशासन से 28 मई को बकरीद की पूर्व संध्या पर या किसी भी और दिन राज्य में गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने को सुनिश्चित करने को कहा गया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के विपरीत बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घट कर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए मात्र एक महीने में 4 नई पीढ़ी के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। इनमें शामिल नवीनतम जहाज आईएनएस महेंद्र गिरी है जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6वां नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आईएनएस महेंद्र गिरी को इस महीने की 11 तारीख को नौसेना में शामिल किया गया था।
2: पिछले महीने के 21 तारीख को स्वदेश में डिजाइन और निर्मित 3 प्लेटफॉर्म आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं और इन्हें वायु, सतह तथा पनडुब्बी रोधी अभियानों सहित बहुआयामी सैन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट कार्यक्रम है जिसके तहत अगली पीढ़ी के 7 गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। उन्नत स्टेल्थ विशेषताओं और उच्च स्तर की स्वचालन प्रणाली से लैस ये युद्धपोत नौसैनिक युद्ध के साथ सभी आयामों में समुद्री अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। उच्च स्वदेशी कंटेंट के साथ निर्मित ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और देश के रक्षा विनिर्माण तंत्र को मजबूत करते हैं। ये सामूहिक रूप से समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, ब्लू इकोनॉमी को समर्थन देते हैं और देश को एक अग्रणी समुद्री शक्ति के रूप में और मजबूत बनाते हैं। पल्लवी परमार के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास सम्मेलन का 3रा संस्करण आज भोपाल में हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने 178 करोड़ 70 लाख रुपए के कुल निवेश वाली 20 औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी प्रौद्योगिकी और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। डॉ मोहन यादव ने कहा कि पिछले वर्ष बार्सिलोना की उनकी यात्रा के बाद स्पेन, अमरीका और कनाडा की कंपनियों ने राज्य में निवेश किया है।
3: अपने 2 वर्ष के अंदर जो 6 लाख लगाई है, ये केवल यहाँ का अभियान हमारे कुछ नहीं हुआ। अब मध्यप्रदेश में स्पेन, कनाडा, अमेरिका, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने एफडीआई के माध्यम से 28,200 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे प्रदेश के अंदर कर लिया है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और

0: हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ठ की ओर से दायर याचिका के बाद ये संज्ञान लिया। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा योजना पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सब मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरण में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिन्दी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित एक समारोह में बिहार हेलीकॉप्टर पर्यटन और हवाई पर्यटन सेवा योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सेवा के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
1: लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शोकेस में नहीं रखना है, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके। बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो तब समझिए गया कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
0: श्री चौधरी ने कहा कि साप्ताहिक हवाई पर्यटन सेवा को भविष्य में दैनिक सेवा में विस्तारित किया जाएगा। योजना के पहले चरण में पटना, वाल्मीकिनगर, मां मुंडेश्वरी और राजगीर को शामिल किया गया है। राज्य सरकार प्रति टिकट 15,422 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा 18 जुलाई से शुरू होगी और प्रत्येक शनिवार और रविवार को संचालित होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमरीका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इस कार्रवाई में जॉर्डन के प्रिंस हसन हवाई अड्डे, बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे और कुवैत में अली अल सलीम और अहमद अल जाबेर हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। IRGC ने दावा किया है कि इससे ईंधन भंडार, गोला बारूद भंडारण प्रतिष्ठानों, वायु रक्षा प्रणालियों और रडार ढांचे को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य में आगे किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने पर अमरीका को चेतावनी दी है। ये दावे अमरीका अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आए हैं, जिसमें ईरान में कई जगहों पर आक्रामक हमले किए गए थे। इन हमलों में कई सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बाधा डालने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके।

0: अमरीका ने कहा है कि ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और आवाजाही में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए थे। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। न्यूजीलैंड के अभिनेता सैम नील का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे जुरासिक पार्क और द पियानो जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। महिला क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड की टीम आज चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। भारत ने इंग्लैंड को 457 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 269 रन की बढ़त बनाते हुए दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन पर घोषित कर दी। विकेटकीपर और बल्लेबाज यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इंग्लैंड पहली पारी में 170 रन पर ही सिमट गई थी। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक बारिश का अनुमान है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सामान्य रूप से कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 20 अंक बढ़कर 77,589 पर और निफ्टी 7 अंक गिरकर 24,200 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये FM गोल्ड चैनल है, 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ आप सभी जुड़े हुए हैं। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। आज मैं हूं आपके साथ आरती,
3: और मैं हूं अश्विनी कुमार रायपुरिया। स्वीकार कीजिए हम दोनों का नमस्कार।
2: और साथियों, कार्यक्रम किसान की बात में हमारे प्यारे किसान मित्र जितने भी हैं उन सभी के लिए हम कुछ न कुछ ऐसा विषय लेकर आते हैं जो कहीं ना कहीं उनकी जो प्रगति को कहें एक तरफ आगे को लेकर चलता है। तो आज भी जो किसान मित्र कपास की फसल से जुड़े हुए हैं और इस क्षेत्र में अपने कार्य कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए बहुत सारी जानकारी हम अपने इस कार्यक्रम किसान की बात में लेकर आए हैं। तो आपको आज का विषय बता देते हैं। आज का विषय है कपास फसल की समन्वित फसल सुरक्षा आप कैसे कर सकते हैं, यानी कि पूरी तरह से जितनी भी बातें होंगी कपास की फसल को लेकर होंगी, आप इसके बारे में जो कुछ भी पूछना चाहते हैं जरूर आपको इसका भी तरीका बताएंगे किस तरह से आप जुड़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप कुमार जी। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं NRI IPM नई दिल्ली में और ICAR की ही एक परिषद है। आपको बता दें कि डॉक्टर साहब आप इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
4: थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार सभी किसान भाइयों को
2: जी। और साथियों आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं जैसे कि हमने आपको बताया था, तो आपको फोन नंबर हम बता देते हैं
3: जी। हमारे फोन नंबर्स हैं वही जाने पहचाने पुराने नंबर्स हैं हमारे, और जो हमारे दिल्ली के जो श्रोता हैं वो नंबर मिला सकते हैं 1081।

0: और दूसरा नंबर है हमारा 2342-1083। ये पुराने हमारे नंबर्स हैं, इन कॉल इन नंबर्स पे आप कॉल करके अपने इस विषय पर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे डॉक्टर साहब भी तैयार है, हमारी आरती मैडम भी तैयार है माइक को लेकर, आप इनको अपने सवाल पूछे, हमारे डॉक्टर साहब तैयार हैं, इनका जवाब आपको जरूर मिलेगा।
1: जी साथियों, जब तक आपके सवाल आते हैं, आपके प्रश्न आते हैं, तो डॉक्टर साहब से सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारी जिज्ञासा हमारे मन में भी है कपास की फसल को लेकर, तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि एक जो IPM, ये आपने ये वर्ड जो हम सुन रहे हैं या कहें कि संस्था जो परिषद जो हम सुन रहे हैं कपास की फसल को लेके, खास तौर पर इसका क्या रोल हो जाता है, किस तरह से जुड़ा हुआ है इस फसल के साथ?
2: जी मैडम, सभी किसान भाइयों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। IPM और कपास की फसल में समन्वित सुरक्षा की अगर बात करेंगे तो IPM के माध्यम से समन्वित सुरक्षा हो सकती है कपास की फसल में। तो IPM क्या चाहिए ये जानना जरूरी है
1: जी।
2: तो I का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, P का मतलब पेस्ट, M का मतलब मैनेजमेंट
1: जी।
2: हिंदी में अगर कहेंगे तो समेकित नासी जीव प्रबंधन
0: जी।
2: तो कोई भी पेस्ट यानी नासी जीव जो नाश कर रहा है हमारी फसल को, उसका हमें प्रबंधन करना है और समन्वित तरीके से, इंटीग्रेटेड तरीके से
0: जी।
2: सामान्यतः क्या किसान भाई करते हैं, नासी जीव का प्रबंधन वो भी करते हैं, वो प्रबंधन का सीधा नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल करते हैं डायरेक्ट पेस्टिसाइड डाल के
1: जी।
2: उनके पास एक ही तरीका होता है कि पेस्टिसाइड डालो, वो भी उनकी मजबूरी होती है क्योंकि कई बार उन्हें जानकारी नहीं होती कि भाई, कई बार तो उन्हें ये भी जानकारी नहीं होती ये वास्तव में नासी जीव है या मित्र जीव है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: कई बार कपास की फसल में 100 तरीके के नासी जीव भी होंगे, 100 तरीके के मित्र जीव भी होंगे। तो पहचान की कमी की वजह से कोई भी कीट दिख रहा है तो उसको नासी जीव ही मान के चलते।
0: बिल्कुल सही है।
2: और नासी जीव के नाश करने के लिए वो नासी जीव नाशक यानी पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं।
0: बिल्कुल।
2: तो जब बराबर पेस्टिसाइड का प्रयोग करते रहते हैं तो इससे हमारे मित्र जीव भी मर जाते हैं। वो तो मरते मरते साथ में पेस्टिसाइड जब अंदर जाता है, कपास की पत्तों पे लगेगा, कॉटन में जाएगा, मिट्टी में जाएगा, फिर उसके बाद उस खेत में किसान भी चलेगा, जाएगा टच करेगा पौधों को, लेबर जाएगी, बच्चे भी जाएंगे वो टच करेंगे
1: जी।
2: तो उनके हाथों से वो कीटनाशक उनके शरीर में प्रवेश करेगा। और जितने भी कीटनाशक है ज्यादातर नर्व पॉइजन है, इंसेक्ट के नर्वस सिस्टम को डैमेज करते हैं, इंसेक्ट का पैरालिसिस होता है, तभी कीट मरता है। चूंकि कीट छोटा होता है तो इसलिए मर जाता है, इंसान थोड़ा बड़ा है, कीटनाशक कम था इसलिए वो मरता नहीं है
0: जी।
2: बस लेकिन तिल तिल करके मरता है,
1: दुष्प्रभाव पड़ जाते हैं
2: क्योंकि एक छोटी सेल्स पे थोड़ा थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, उसके दुष्प्रभाव तुरंत नहीं दिखाई पड़ते, हो सकता है कि 10 साल बाद उसके असर दिखाई पड़े, हो सकता है कि आप पे असर ही ना दिखे, आपके बच्चों पे असर दिखाई पड़े,
0: मतलब नर्वस सिस्टम पे भी असर डाल सकता
2: है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ऐसे होते हैं पेस्टिसाइड जो कि आपके सिस्टम में फर्क डालेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डैमेज करेंगे, अगली जनरेशन हो सकता है डाउन सिंड्रोम के बच्चे पैदा हों। डाउन सिंड्रोम के डॉक्टर जांच करवाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, NIPT टेस्ट बहुत सारे। तो ये सब समस्याएं कीटनाशकों की वजह से होती है। इन कीटनाशकों का प्रयोग कम हो कैसे होगा, जब एक चीज पे निर्भर नहीं रहेंगे कीटनाशक पे, तो इंटीग्रेट कई तरीकों को इकट्ठा मिला के चलेंगे। कोई भी नासी जीव है उसको नियंत्रण करने का जरूरी नहीं केवल नासी जीव नाशक ही डालो, जैविक तरीके भी हैं। जैविक के अलावा कुछ हमारे सस्य तरीके हैं कि खेती की प्रैक्टिस में थोड़ा सा चेंज कर दें कि बुवाई पहले कर दें या बाद में कर दें, या आवश्यक पोषक तत्व जितने उतने ही दें, फालतू की यूरिया मत दें, अधिक यूरिया डालेंगे तभी कीट बढ़ेंगे, ठीक है। ये सब चीजों को मिला करके रेजिस्टेंट वेरायटी अगर आपने लगाई,
0: मिट्टी की जांच करना बहुत जरूरी है दर्शन यहाँ पर,
2: आप पोषक तत्व प्रबंधन सही तभी कर पाएंगे आपको मिट्टी की जांच कराई होगी, तब आपको सही पता चलेगा मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद है। जिसकी कमी है उसको देना जरूरी है, वो नहीं दोगे तो भी फसल को दिक्कत आएगी, और कोई है वो बहुत ज्यादा दे दिया जैसे कि नाइट्रोजन
0: जी,
2: तो वो भी फसल को परेशान करेगा, कीटों को आकर्षित करेगा। तो इन सब विधियों को मिला करके इंटीग्रेटेड तरीके से, सही तरीके आपने इंटीग्रेट कर लिया, और लोग भी इकट्ठे हों, इसका मतलब संगठित वर्ड इंटीग्रेटेड को संगठित भी कह सकते हैं, सभी किसान संगठित होकर के, सभी तकनीक को संगठित करके, वैज्ञानिकों के साथ भी मिलके उनको भी संगठित करना है, सब मिलके जब काम करेंगे फिर नासी जीव का जब प्रबंधन करेंगे तो बड़े आसानी से होगा, कम कीटनाशक में होगा, और प्रबंधन का मूल उद्देश्य प्रॉफिट
1: जी।
2: प्रॉफिट मतलब सस्टेनेबल प्रॉफिट, टिकाऊ, ऐसा नहीं आज आपने दवाई डाली पैदावार अच्छी मिल गई और प्रॉफिट होगी, वो प्रॉफिट

0: नहीं, आपने दवाई में खर्चा कर दिया अपनी में, बीमार हो गए
1: जी,
0: तो वो प्रॉफिट नहीं है। मैनेजमेंट का उद्देश्य प्रॉफिट सस्टेनेबल होना चाहिए, तो वो आईपीएम से आपको सस्टेनेबल प्रॉफिट मिलेगा, कीटनाशक का प्रयोग कम होगा, फसल की पैदावार अच्छी होगी, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिखवाएगा, तो उससे आप निश्चित रूप से कीटनाशक का प्रयोग कम करते चले जाएंगे।
1: मतलब कि मैनेजमेंट का मतलब ये डॉक्टर साहब सीधा सीधा यहाँ पर यह है कि लोगों को मिलना एक दूसरे के साथ और डिस्कस करना, डिस्कस के बाद कोई समस्या अगर मिलती है तो विज्ञानों के पास, इनके पास जाना है और उसका समाधान लेना है। ये नहीं कि लगातार जो वहाँ पर पेस्टिसाइड छिड़क के जहाँ पर मित्र कीट को मार दिया उसको ही मार दिया तो लगातार क्या है कि वहाँ पर हानि हो रही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
2: जी। डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहते हैं कि आईपीएम का क्या एक स्ट्रक्चर है, किस तरह से वो हेल्प कर रही है इस चीज में, कि कौन कौन से कार्य हैं या क्या चीज बताई जा रही है, किसानों तक पहुंचाई जा रही है कि जिससे वो इस कीटनाशकों का जो इस्तेमाल है वो कम से कम करे, या इनके जो विकल्प है वो क्या क्या है।
0: हाँ, तो इसको विकल्प को जानने से पहले हमें अपनी समस्या को पहचानना जरूरी है। सबसे पहले जब हमें समस्या पता होगी एग्जैक्ट
2: जी
0: कि हमारी समस्या क्या है, कीट कौन है जो नुकसान करने वाला है, तब उसके आसपास फिर हम उसके बारे में विचार करेंगे भाई इसका कैसे प्रबंधन करें।
2: बिल्कुल।
0: तो किसान भाइयों, वर्तमान की परिस्थितियों में देखें तो कपास में एक सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है गुलाबी सुंडी
1: जी,
0: जिसे पिंक बॉलवर्म बोलते हैं
1: जी,
0: ठीक है। एक समस्या दूसरी है सफेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई, ठीक है, जो कि उत्तर भारत में विशेष रूप से। तीसरी है हरा तेला, जिसे जैसेड भी बोलते हैं, एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके अलावा कुछ क्षेत्रों में थ्रिप्स का प्रकोप भी कई बार बहुत ज्यादा देखा जाता है, लेकिन उतना नुकसान नहीं होता जितना कि सफेद मक्खी, हरा तेला और पिंक बॉलवर्म से होता है। कभी कभी मिली बग का प्रकोप भी देखा जाता है, कभी रेड कॉटन बग भी मिलेगी। जब फसल पकने को होती है तुड़ाई से पहले, उस समय बहुत सारी काले काले रंग के कीड़े बग, दूसर बग बोलते उसे, डस्की कॉटन बग, वो भी देखी जाती है। तो ये कुछ कीट हैं जो कि बहुत प्रमुख हैं। तो इन कीटों को पहचानेंगे कैसे
1: जी?
0: पहचानने के लिए भारत सरकार ने और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिलकर के, ये राष्ट्रीय समेकित नासीजी प्रबंधन अनुसंधान संस्थान है जो जिससे हम बिलोंग करते हैं, और डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज ने मिलकर एक एप्लीकेशन बनाया है
1: जी,
0: जो कि हमारे कृषि मंत्री द्वारा 2024 में रिलीज किया गया, NPSS, नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम। उसको सभी किसान भाई डाउनलोड करें। उसमें ये फीचर दिया गया है, जैसे ही आप उसमें फोटो क्लिक करके उसमें डालेंगे वो कीट की पहचान बता देगा सटीक, मित्र कीट है या शत्रु कीट है। जैसे आपको पहचान हो गई, पहचान करने के बाद आप उसके अंदर वो कुछ प्रश्न पूछेगा, इसका स्तर कम है या ज्यादा है, क्योंकि किसान बहुत ज्यादा काउंट करके नहीं एकदम बता पाते, एक अंदाज से बता सकता है कि एक लो लेवल का है कि मीडियम लेवल का है, एक बहुत हाई लेवल, बहुत सीवियर है, गंभीर समस्या है। और वो जैसे उसमें बताता है तो उसको आईपीएम की एडवाइजरी आती है उसमें सिस्टम में
1: जी,
0: कि अगर कम है प्रकोप तो कौन कौन सी प्रिवेंटिव मेजर आप ले सकते हैं, कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर,
1: करेक्ट।
0: तो आईपीएम में प्रिवेंशन, जैसे आयुर्वेद में कहते हैं ना पहले बचाव करो, तो ये मत खाओ वो मत खाओ, है ना, जैसी समस्या उसके हिसाब से। तो ऐसे ही आईपीएम में क्या क्या चीजें नहीं करनी है ये वो महत्वपूर्ण है, करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या नहीं करना है आईपीएम में, तो वो चीजें आपको पता चलेगी
2: जी।
0: गंभीर समस्या है या मध्यम स्तर की है तो कुछ जैविक तरीके आपको बताए जाएंगे इस कीट को या बीमारी को नियंत्रण करने के लिए
2: जी,
0: और गंभीर समस्या है तो फिर सिलेक्टेड कीटनाशक उनको बताए जाएंगे, रसायन जो कि थोड़े सेफर भी हो, एग्जैक्ट उस पर काम करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: सामान्यतः भी किसानों की समस्या क्या है, वो बेचारे निर्भर हैं कीटनाशक विक्रेताओं पर ज्यादातर समस्याओं के लिए, और उनको बहुत आसान भी फील होता है कि उन्हें कई बार हेजिटेशन होता है वैज्ञानिकों से क्या बात करें, क्या प्रश्न पूछें, कई बार प्रश्न पूछना भी बहुत मुश्किल होता है
1: जी,
0: तो हेजिटेट करते तो सीधे दुकानदार के पास जाते हैं कि कपास लगी है इसमें कीड़े वीड़े कुछ लग रहे हैं दवाई दे दो, तो वो एक प्लान बना देते हैं कि भाई यार 15 दिन पर आप डालते रहो 10 दिन पे ये दवाई,
1: बीमारी है या नहीं,
0: है या नहीं, और है अरे एक बीमारी या एक कीड़ा है तो लेकिन वो 3 दवाई डलवा देंगे कि ये इसकी भी डाल दो, इसकी भी डाल दो, इसकी भी डाल दो, तो जहां 1 ग्राम दवाई डालनी चाहिए वहां 3 से 5 ग्राम दवाई पड़ रही है, तो ये किसान एक उसमें फंसे हुए हैं। और कुछ कई बार क्या होता है पड़ोसी ने डाली है तो हो सकता कुछ हो, कुछ ना कुछ तो कर दो, कुछ ना कुछ तो डाल ही दो।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ये किसानों की बड़ी समस्या बनी हुई है। इस समस्या का समाधान सिर्फ आईपीएम से है
2: जी,
0: पूरी समस्या का समाधान। तो अब एक एक कीट को लेकर अगर किसान चलेंगे, जैसे हम बात कर रहे थे ना, और जुलाई का महीना है, इस समय कुछ जगह फूल भी आ चुका होगा कपास की फसल में।

0: कुछ बॉल भी बनना शुरू हो गई और पिंक बॉल वर्म गुलाबी सुंडी
1: जी,
0: उसका भी प्रकोप बॉल में शुरू हो सकता है, खासकर उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में ज्यादातर या मध्य भारत में बुवाई जो है जून की स्टार्टिंग में हुई है, तो अभी वहाँ पिंक बॉल वर्म नहीं होगा, 15-20 दिन बाद 25 दिन बाद आएगा। यहाँ पे संभावना है पिंक बॉल वर्म आने की। तो शुरुआत में अगर खेत में घुसेगा किसान तो उसको जो बॉल होती है, सॉरी बॉल से पहले फूल जो निकल के आता है
1: जी,
0: तो इसकी जो सुंडी है वो पंखुड़ियों को ऐसे सिल देती है, एक प्रकार से जोड़ देती है फूल की, तो गुलाब जैसा बन जाता है,
1: एकदम बंद सा कर देती है।
0: हाँ, गुलाब जैसा लगे, गुलाब जैसा नहीं खिला हुआ गुलाब ना, बंद गुलाब हो।
1: हाँ हाँ हाँ,
0: रोजेट फ्लावर सिम्पटम बोलते हैं इसको, ऐसे दिखाई दे, उसके अंदर देखेंगे खोल के पंखड़ी अंदर सूढ़ी बैठी होगी,
1: अच्छा,
0: अंदर फ्लावर को खा रही होगी, और हल्की पिंक कलर की क्रीमिश कलर की इसकी सुंडी होती है। तो ये कीट की अब ये स्थिति अभी मिल सकती है कुछ जगह, कुछ जगह हो सकता है प्रकोप शुरू भी ना हुआ हो। तो अब इस पूरे कीट के बारे में समझना जरूरी है, ये कीट आता कहाँ से है। अभी मान लो फसल नहीं थी कपास की, तो ये था कहाँ, अभी था कहाँ। बहुत से किसानों से पूछो कि नहीं तो बारिश के साथ आ जाता है, कोई कुछ तरीके बताते हैं ऐसे, तो क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं है। वास्तव में होता क्या है, ये कीट, इस कीट की जीवन की चार अवस्थाएं होती हैं, अंडा, सूडी यानी कि लार्वा, उसके बाद पीपा बनता है, उसके बाद वयस्क बनता है जो पतंगा होता है। तो पिछले सीजन में जो अटैक किया होगा इसने कपास की फसल में, तो जो अंडे से जो लार्वा निकलता है सूडी, वो कपास की फसल को मेन वही नुकसान पहुंचाता है, ना पतंगा नुकसान पहुंचाता है, ना पीपा नुकसान पहुंचाता है, ना अंडे से कोई नुकसान है, केवल उसी से नुकसान है। अंडे दिए, अंडे से है 4-5 दिन में अंडे से बच्चे निकलते हैं यानी कि सूढ़ी निकलते हैं, वो 2-3 घंटे के अंदर सर्च करेगी, पौधे में घूमेगी और जहाँ पे कोमल बॉल होगी नई जो टिंडे बनते हैं उसमें छेद करके अंदर घुस जाएगी, और बाद में वो घाव भर जाता है, वो अंदर रहेगी, बाहर आपको पता नहीं चलेगा इसके अंदर सूढ़ी है, और बाहर बड़ा भी बॉल हो जाएगा इतना बड़ा, उसमें भी एकदम बढ़िया बॉल दिखाई दे, कुछ नहीं पता चलेगा आपको ये इस तरह। इसके लिए अब कीटनाशक के साथ इस पे डाले, बॉल में खूब छिड़कते रहो, क्या होगा, कुछ नहीं होगा।
2: वो तो घर के अंदर बैठी
1: हुई है किसानों के लिए, तो
2: वो तो घर के अंदर बैठी हुई है सर,
0: वो तो अंदर छुपी बैठी है,
2: बिल्कुल,
0: तो उसका कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये अब आती कहां से, अब ये जब सीजन एंड होता है, मान लो अटैक रहा, अगर इसका अटैक रहता है सीजन के आखिरी में, अक्टूबर नवंबर में जब फसल कट जाती है, उसका गेहूं की बुआई करते हैं, तो किसान क्या सारी लकड़ियां जो होती हैं उठा के इकट्ठा कर लेते हैं उसकी, वो ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। अभी मैं गया था पंजाब में, फाजिलका डिस्ट्रिक्ट में गया था, जगह जगह किसान ढेर लगा रखे हैं, उसके अंदर कुछ बॉल पिछले साल के सीजन के पड़े होते हैं, उनमें ये सुंडी जो है 2 बीज को जोड़ के अंदर बैठ जाती है, सुषुप्त अवस्था में चली जाती है, उसकी क्षमता ये 2 साल तक उसमें रह सकती है। जैसे अगले सीजन का बारिश शुरू होगी, कपास लगेगी, तो उसको सिग्नल पहुंच जाएगा कि आप भोजन आ गया है, तब वो प्यूपा बनेगी, फिर उसमें से पतंगा निकलेगा, फिर वो जाके नर्मदा मिलन करेंगे, उसके बाद अंडे देंगे खेत में, अगले साल का आक्रमण शुरू होता है। अगर हमें पता चल गया चोर कहाँ बैठा हुआ है, तो उसका हम नियंत्रण कर सकते हैं, तो कहाँ पे कंट्रोल छिपा हुआ है इसका, मैनेजमेंट, पेस्टिसाइड नहीं छिपा हुआ है, मैनेजमेंट छिपा हुआ वहां पे जो लकड़ियां आपने इकट्ठी की हुई है, और उन लकड़ियों में जो भी एक भी बॉल अगर लग गई है, उनको आपने साफ करके अलग कर दिया होता उस समय, लकड़ियों में नहीं छोड़ा होता उनको, या तो जला देते, सबसे पहले उन्हीं को जला लेते
1: जी,
0: है ना, नष्ट कर देते, तो या उनकी खाद बना देते सड़ा के,
1: द बेस्ट,
0: हाँ, कंपोस्ट
1: बना देते,
0: हाँ। तो इस सीजन के लिए कीट ही नहीं होता
1: जी,
0: ये एक किसान करेगा तो काम नहीं चलेगा, 2 किसान करेंगे तो भी काम नहीं चलेगा, 10 करेंगे तो भी काम नहीं चलेगा, पूरे के पूरे गांव, पूरे के पूरे जिला, पूरे के पूरा क्षेत्र में करना पड़ेगा, इसीलिए कहते हैं इंटीग्रेटेड,
2: दिस इज मैनेजमेंट एक्चुअली,
0: हाँ, इंटीग्रेटेड तरीके से सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, सबको एक दूसरे का ध्यान रखोगे तब सबका कल्याण है, अकेले से नहीं होता, एक नहीं तो फिर पेस्टिसाइड पे आ जाओगे आखिरी में, मजबूरी होगी पेस्टिसाइड। मान लो अब ये नहीं कर पाए, मान लिया कि मान लो बहुत से किसानों ने ये नहीं कर पाया, अब कीट आ चुका खेत में, या आने वाली आने की संभावना, कुछ जगह एगलिंग हो गई, अभी अटैक बहुत थोड़ा होगा, तो अब किसान क्या करे, तो अब ये तरीका है कि मॉनिटरिंग करे, मॉनिटरिंग के तरीके हैं कई, एक तरीका है इसमें कि फेरोमोन ट्रैप लगा करके, फेरोमोन ट्रैप क्या होता है, एक फनल जैसा ट्रैप होता है, उसमें फीमेल का फेरोमोन लगाया जाता है, एक रबड़ का सेप्टा होता है उसके अंदर लगा देते हैं, तो जितने भी मेल है वो मेटिंग के लिए अट्रैक्ट होते हैं,

0: मिलन के लिए। तो उस ट्रैप में आएंगे, एक एकड़ में अगर हमने एक ट्रैप भी लगा दिया तो उससे हमें पता चल जाएगा कि जैसे उसमें ट्रैप में मेल आना शुरू हुए हमें पता चल जाएगा कीटाणु लगा है। तो उसके लिए हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर भी ले सकते हैं, किसी को अंडे ना दे, अंडे दे दिए तो सूड़ी खाए ना, कुछ इस तरह की चीजें डाल सकते हैं। तो उसके लिए अगर हमने ट्रैप लगाया है, एक हेक्टेयर में दो ट्रैप पर्याप्त होते हैं, यानी एक एकड़ में एक से कम में चलता है, लेकिन एक से कम तो क्या लगाओगे, तो दो हेक्टेयर, एक हेक्टेयर दो ट्रैप के हिसाब से।
1: कोई स्प्रे भी है कि प्रिंटली पहले हम स्प्रे कर दें तो वो बैठे ही नहीं या जाए ही नहीं?
0: वो, लेकिन वो भी फालतू में क्यों करो, और मान लो जिस जहाँ कीट नहीं वहां क्यों डालो। प्रिवेंटिव में भी अगर मॉनिटरिंग बेस करोगे तो ज्यादा फायदा, आईपीएम का उद्देश्य फायदा, फायदा ज्यादा कैसे हो
2: सर, तो कम लागत के साथ फायदा, इस पे भी बताइए।
0: हाँ, यही लागत, लागत इसी तरह से कम होगी जो हमें कुछ नहीं करना है। उसके लिए चाहिए नॉलेज
2: जी,
0: बिना नॉलेज के ये डिसीजन ले ही नहीं सकते हम कुछ ना करनी, तो कुछ ना कुछ तो कर ही दोगे, कुछ ना कुछ डाल ही दोगे, तो वो घाटा हो गया ना सीधा सीधा, जब कीट नहीं है कुछ भी नहीं है। उसमें अगर एक आध पतंगा आ रहा है, मेल जैसे स्टार्ट आना होगा तो इमीडिएटली एगलिंग तो नहीं हो जाएगी, फीमेल भी होगी, मेटिंग होगी, एगलिंग होने में सब टाइम लगेगा। जैसे उसमें एक आध आने लगा है मौत पतंगा, तब आप नीम की दवाई, नीम ऑयल मार्केट में मिलता है 1500 ppm का आता है, उसका 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर देंगे तो कीट उसमें अंडे नहीं देगा। अब बाई चांस अंडे दे दिए हैं, उन पे भी अगर ये दवाई गिर जाएगी तो अंडे से बच्चे निकलेंगे नहीं, वो भी साइड इफेक्शन भी है। और बच्चे निकल भी आए हैं तो वो खोजते रहेंगे कहाँ पे जाएं, कहाँ पे खाएं, क्योंकि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो नहीं ऐसी जगह नीम की पत्ती खिलाओ अपने बच्चों खाएंगे, हमारे नहीं खाएंगे कीड़े के बच्चे, खासकर कुछ जो फसल के कीड़े उनको नहीं खाते, तो जो है आपकी फसल लगभग लगभग उससे बच जाती है, अटैक ही नहीं होगा नीम के माध्यम से। और फेरोमोन ट्रैप अगर हम ज्यादा मात्रा में लगा दें, कई किसान मिल करके एक एकड़ में 16 ट्रैप लगा दें अगर, तो सारे मेल मॉस्ट ट्रैप हो जाएं, तो मेटिंग ही नहीं हो पाएगी, तो फीमेल अंडे देगी वो फर्टिलाइज होंगे ही नहीं, तो आगे जनरेशन नहीं बढ़ेगी, तो पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो जाएगी
2: जी।
0: ये एक तरीका है, इसके अलावा और एक तरीका है
2: जी डॉक्टर साहब, तरीके बहुत सारे हैं और इस पे बात भी होती रहेगी। साथ ही आपको बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात के तहत कपास की जो फसलें हैं उनमें किस तरह से आप समन्वित जो फसल सुरक्षा है उसको किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से अपना सकते हैं। डॉक्टर अनूप कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमारे विशेषज्ञ हैं आज के इस कार्यक्रम के। और साथियों अगर आप भी कपास की फसल से जुड़ा कुछ पूछना चाहते हैं तो फोन नंबर आपको बता देते हैं, 011 दिल्ली का सिटी कोड है, इसके बाद आप नंबर डायल कीजिएगा 2342108। एक और फोन नंबर है 2342108। वापस आते हैं, मिलते हैं आपसे एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए
2: कोई डर नहीं,
3: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
4: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
5: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
6: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी,
5: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
6: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
5: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
7: एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में। आज हम बात कर रहे हैं कपास की जो फसल है उसको किस तरह से

0: आप उसमें कीटों से बचाव कर सकते हैं या कहीं पूरी तरह से किस हर तरह से फसल सुरक्षा कर सकते हैं आप? डॉक्टर अनूप कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे किस तरह से जो कीटनाशक हैं उनका उपयोग कम किया जा सकता है, रसायनों का प्रयोग कम किया जा सकता है, और हमारे जो किसान मित्र हैं क्या क्या चीज़ें करें, एक और तरीका आप बताने जा रहे थे।
1: जी, इसमें एक तरीका और है, जैविक तरीका। जो पिंक बॉलवर्म है, गुलाबी सुंडी जो अंडे देती है मादा, उन अंडों का परजीवी है, उसको बोलते हैं ट्रैकोग्रामा, ट्रैकोग्रामा बैक्टेरी। ये एक बहुत छोटा कीट होता है, उसकी अंडे के अंदर अपने अंडे दे देता है, अंड परजीवी है। तो ट्रैकोकार्ड के रूप में मिलते हैं, हम अपने लैब में भी बनाते हैं, किसानों को देते भी हैं और सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मिलते हैं, तो वो भी किसान लगा सकते हैं। लगभग 50,000 अंडे प्रति एकड़ के हिसाब से लगाएंगे, यानी कि दो कार्ड लगेंगे, दो से ढाई कार्ड। एक छोटे से कार्ड में लगभग 20,000 अंडे चिपके होते हैं, 20,000 ततैया निकलती है और जाके उसको नष्ट कर देती है। एक ये काम कर सकते हैं। और फेरोमोन ट्रैप जो लगाए हैं उसमें अगर प्रतिदिन 8 मौत अगर ट्रैप हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि खतरनाक स्तर आ गया है कीट का। उस कंडीशन में आपको कीटनाशक स्प्रे के लिए जाना होगा, उससे कम में आपको जहरीली कीटनाशक डालने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जानकारी बहुत लाभकारी होगी, कब नहीं डालना है।
2: जी,
1: जब जरूरत हो तब आप डालिए। उसमें जो सिफारिश की गई कीटनाशक, आप हमारे NPSS ऐप जो है उसको डाउनलोड करेंगे, उसमें आपको सिफारिश किए हुए कीटनाशक मिलेंगे, जो कि मैं नाम भी बता सकता हूँ आपको। जैसे MMectin बेंजोएट है, आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। इंडोक्साकार्ब है, उसका स्प्रे कर सकते हैं। स्पाइनिटोराम है, उसका स्प्रे कर सकते हैं। ये कुछ हमने सेफर केमिकल्स बताए जो कि मैम उसके लिए भी सेफर है, यद्यपि कीटनाशक बहुत है तो उससे इनका कंट्रोल किया जा सकता है। मान लो किसी फेरोमोन ट्रैप भी नहीं है किसी के पास, वो क्या करेगा?
2: जी,
1: वो सैंपलिंग करेगा खेत में, हर वीक में 20 टिंडे तोड़ेगा जगह जगह से, उनको फाड़ के देखना पड़ेगा, बाहर से नहीं पता चलेगा। 20 में से अगर एक से टिंडा दिख रहा है तो कुछ नहीं करना है, दो टिंडे में अगर कीड़ा दिख रहा है तब जाके दवाई डालने की आवश्यकता होगी। इस तरह से सैंपलिंग करके वो निर्णय ले सकते हैं कब हमें दवाई की जरूरत है, कब दवाई की जरूरत नहीं है।
2: वो उस फूल में बैठा हुआ जो कीड़ा है, क्या दवाई स्प्रे करने से उस पर भी कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? जो आ चुका है, जो
1: आ चुका है फूल के अंदर, सिल के बैठा हुआ अंदर,
2: जी
1: उस पर भी दवाई इतनी जल्दी असर नहीं करने वाली, कुछ असर करेगी। असली प्रकोप होता है बॉल में, फूल में तो होता ही होता है, जब बॉल बन जाती है उस समय। अभी क्या पहली जनरेशन है तो कम कीट है, कम अटैक है। जैसे इसकी अगली पीढ़ी आएगी, एक कीड़े ने 300 अंडे दिए हैं, अगली पीढ़ी में 300 के 300 मल्टीप्लाई कर दो तो कितने हो गए
0: जी।
1: तो इससे अगली पीढ़ी में बहुत ज्यादा अटैक होता है, यानी सितंबर के महीने में बहुत ज्यादा अटैक होता है। अभी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग कब मिलेगा तो इसलिए जानना जरूरी है,
0: अभी इसके निदान करना जरूरी है।
1: हाँ, अभी से इसका मैनेजमेंट आप नीम के माध्यम से, दवाई के माध्यम से करें तो इसका, नीम से यही कंट्रोलिंग, सफेद मक्खी का भी आपका नियंत्रण होगा। ठीक है, इसलिए सफेद मक्खी की विशेष निगरानी रखें उत्तर भारत में। अगर प्रति पत्ती 6 से 8 व्हाइट फ्लाई दिख रही है, सुबह के टाइम देखना पड़ेगा अगर, तो दवाई डालनी पड़ेगी, नहीं तो कम दिख रही तो आप नीम का प्रयोग कर सकते हैं।
2: जैविक, डॉक्टर साहब, जैविक की आपकी तरफ आप बता रहे हैं कि आप, हम नीम का तेल या कोई और जैविक स्प्रे कर सकते जिसमें लागत कम आए किसानों को, नॉमिनल कोई खर्चा हो, कि कम से कम कि कीड़ा जो है उस टोडे में जाके ना बैठे।
1: हाँ, तो नीम, ऐसा ऐसा नीम कोई ही सबसे अच्छा है। नीम,
2: हाँ,
1: नीम की पत्ती का अर्क बना लो, नीम की गुठली का अर्क बना लो, नीम की गुठली इकट्ठी कर लो, आजकल इकट्ठी हो गई, सुखा के उनका पाउडर बना लो, 5 किलो गुठली का पाउडर लो, रात भर भिगो दो पानी में, कपड़े में बांध के सुबह उसको अर्क निकाल लो उसका पूरा, उसमें फिर डिटर्जेंट पाउडर मिला दो 100 ग्राम, 100 लीटर पानी में घोल कर स्प्रे कर दो।
2: तो कम से कम खर्चा तो कहीं कम से कम कुछ ना कुछ देख, अगर घर में तैयार,
1: खर्चा पक्का बचेगा घर में अगर हम इतना मेहनत कर सकते हैं थोड़ी सी,
2: तो
1: क्योंकि आजकल लग्जरी लाइफ की तरफ ज्यादातर लोग जा रहे हैं, तो इसलिए सोचते हैं बस ये दुकान पे जो
2: थोड़ी
1: सी मेहनत करेंगे तो हम जहर से मुक्त रहेंगे, वातावरण सुरक्षित रहेगा हमारा, फसल भी अच्छी होगी। एक चीज और ध्यान रखना है, सफेद मक्खी का नियंत्रण करना बहुत जरूरी है इसमें, और हरे तेले का, इनसे बहुत भारी नुकसान होता है। 2015 में किसानों ने आत्महत्याएं तक की थी, सफेद मक्खी से इतना नुकसान हुआ था।
0: जी जी, डॉक्टर साहब, किस तरह से निदान मिल सकता है, कि क्या आप बताना चाहेंगे ऐसे मुख्य टिप्स जो हमारे किसानों को जरूर अपनाने चाहिए ताकि वो इस बड़ी समस्या से आसानी से बच सके? कुछ तो आपने बताया कि नीम का तेल इस्तेमाल कर ले।
1: सिंपल सिंपल सी चीजें, एक तो आप खेत में अनावश्यक खाद ना डालें, अनावश्यक यूरिया का प्रयोग ना करें।
0: जी,
1: ठीक है, जरूरत

0: पड़ने पे आप नीम की दवाई का प्रयोग करें। नीम ऑयल मिलता है घर पे, नीम की गुठली का अर्क बना के आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। कुछ सेफ कीटनाशक हैं, जैसे कि अगर व्हाइट फ्लाई है उसके लिए फ्लोनिकामिड का आप प्रयोग कर सकते हैं। तेला के लिए, हरा तेला के लिए भी काम करेगी, और ये हनी बी के लिए सेफ है। हनी बी के लिए भी सेफ है, तो ऐसे कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। और जैविक कीटनाशक का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें मेटेरिजियम है वो भी काम करती है, उसका भी स्प्रे कर सकते हैं।
1: जी, और डॉक्टर साहब, हाँ जी,
0: और गुलाबी सुंडी का प्रबंधन करना है तो पूरा अब सबको मिला के सबके लिए आईपीएम करना ही करना है। और वायरस की विशेष प्रॉब्लम आती है, इस व्हाइट फ्लाई से फैलता है
1: जी,
0: तो वो भी अगर व्हाइट फ्लाई का प्रॉपर मैनेजमेंट करोगे तो वायरस का अटैक नहीं होगा। अगर अटैक आ भी गया थोड़ा बहुत, तो इसमें न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट है, पोटेशियम नाइट्रेट का स्प्रे अगर आप करेंगे 2%, तो भी फसल की पैदावार अच्छी मिलेगी। व्हाइट फ्लाई का थोड़ा बहुत अटैक रहेगा, प्लांट सहन कर लेगा उसको, वायरस को भी सहन कर लेगा।
2: यहाँ पर ये है कि अगर हम खेत की तैयारी करते हैं, ऐसा कोई बीज है जिसमें कम से कम कीटों का प्रकोप लगे, ऐसा कुछ आप तैयारी कर रहे हैं क्या?
0: इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भी कुछ प्रजातियां निकाली हैं, और ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर की इसमें हाइब्रिड्स हैं। किसान ज्यादातर वही लगाते हैं, क्योंकि उनमें क्राइवन जीन होता है जो कि कीट के लिए प्रतिरोधी बनाता है। पहले बहुत बड़ा समस्या थी एक अमेरिकन बॉलवर्म की, तो उस कीट के प्रति वो ऐसी वेराइटी, उसको कीट खा ही नहीं सकता, खाएगा तो मर जाएगा। तो दो कीट अभी भी उसकी वजह से नियंत्रित हो रहे हैं। पिंक बॉलवर्म भी पहले कंट्रोल होता लेकिन अब नहीं हो रहा है, इसके अंदर उस खाने की क्षमता आ गई है,
2: मतलब प्रतिरोधी क्षमता उसने बढ़ा ली है,
0: उसने अपनी क्षमता बढ़ा ली है
2: जी।
0: ऐसी कीटनाशी की सहन करने की क्षमता भी बढ़ गई कीटों की, कीटनाशी को खा पी के भी खुश रह रहे हैं, पनप रहे हैं।
1: डॉक्टर साहब, ये वर्तमान का मौसम अगर देखे, इसके अनुसार किसानों को क्या करना चाहिए अभी इस स्थिति में?
0: अभी वर्तमान में जैसे का मौसम है, इसमें किसानों को सिंपल ध्यान रखना है, इसमें सबको 2% पोटेशियम नाइट्रेट का एक तो स्प्रे करना है
1: जी,
0: क्योंकि इस समय जरूरत है, फूल बनने की अवस्था है। और दूसरी चीज, व्हाइट फ्लाई के लिए नीम का प्रयोग करना पड़ेगा आपको, और निगरानी जरूर करें, बस इसके अलावा कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है
1: जी,
0: ठीक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है सूखा है, उसके बाद एकदम बारिश हुई, तो कुछ पौधों में पैरावल्ट की समस्या आ जाती है, उसके लिए एकदम पौधे अगर झुलसते हुए दिखाई पड़े तो कोबाल्ट क्लोराइड का 1% का स्प्रे कर देंगे, सॉरी 10 ppm का, 1 gram 100 liter पानी में डाल के उसका स्प्रे कर देंगे, तो फसल आपकी बच जाएगी
1: जी। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारी जानकारी आपने दी डॉक्टर साहब, बहुत कम समय में, और हमें पता है आप बहुत कुछ कहना भी चाहते हैं, बताना भी चाहते हैं, तो ऐसा ही विषय हम फिर से लेकर जरूर हाजिर होंगे। लेकिन फिलहाल आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होने का समय हो चला है, तो डॉक्टर अनुप कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं कि आपने इतना समय दिया और इतनी अच्छी जानकारी दी।
0: धन्यवाद
1: साथियों, कार्यक्रम किसान की बात आप सभी सुन रहे थे। ये कार्यक्रम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, और आपने सुना, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आज के कार्यक्रम में मैं थी आपके साथ आरती,
2: और मैं हूँ अश्विनी
1: जी, और आपसे विदा लेने का समय हो चला है। लेकिन आपको बता दें, सोमवार से पूरा शनिवार तक ये कार्यक्रम आप तक पहुंचता है, तो इस कार्यक्रम को सुना करें, जुड़ा करें, आपके हित में, किसानों के हित में। फिलहाल के लिए नमस्कार।
3: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायालय ने असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए ये बात कही। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नागरिकता तय करने या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया में न्यायिक सिद्धांतों से समझौता नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में CBI जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। इससे पहले 13 जून को उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर में दान में कथित अनियमितताओं के मद्देनजर 3 सदस्यीय SIT का गठन किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना में प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने ऐसा झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की ओर से दायर याचिका के मद्देनजर किया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा

0: और पुनर्वास की मांग की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घट कर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने रांची जिले के खलारी जिले के पिपरवार क्षेत्र के करकट्टा वन में अवैध कोयला खनन के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। इसमें लगभग 200 टन अवैध रूप से खनन किया गया कोयला जब्त किया गया है। अधिकारियों ने इस अभियान को क्षेत्र में संगठित कोयला खनन और तस्करी पर एक बड़ी कार्रवाई बताया और कहा कि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वियतनाम के फूकुओक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमरीका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इस कार्रवाई में जॉर्डन के प्रिंस हसन हवाई अड्डे, बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे और कुवैत में अली अल सलेम और अहमद अल जाबेर हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य में आगे किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने पर अमरीका को चेतावनी दी है। ये दावे अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आया है, जिसमें ईरान में कई जगहों पर आक्रामक हमले किए गए। इन हमलों में कई सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बाधा डालने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। महिला क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड की टीम आज चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। भारत ने इंग्लैंड को 457 रन का लक्ष्य दिया है। विकेटकीपर और बल्लेबाज यस्तिका भाटिया लॉर्ड्स में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Supreme Court today ruled that the process of determining citizenship or declaring an individual a foreigner must be carried out through a fair, lawful and reasonable process. The Apex Court was hearing a batch of petitions filed by 27 people who had been declared foreigners by the foreigners' tribunals in Assam. The Supreme Court set aside the judgments of the Guwahati High Court that had upheld declarations of 27 appellants as foreigners. A bench of Justice Vikram Nath and Justice Sandeep Mehta acknowledged that the state has a legitimate and compelling interest in ensuring that those not legally entitled to Indian citizenship do not obtain it through false claims, misuse of legal process or delay, but stressed that due process must prevail. The Supreme Court today directed the Special Investigation Team SIT constituted by the Uttar Pradesh government on alleged misappropriation of donations in Ram Janmabhoomi Temple to submit a status report on the investigation. The court also issued notice to the Union Government, the Uttar Pradesh government and the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust on petitions seeking a CBI probe into alleged embezzlement of donations meant for the Ayodhya Ram Mandir. A bench headed by Chief Justice of India Surya Kant and Justices Joymalia Bagchi and V. Mohan heard the petitions. Earlier on June the 13th, the UP government constituted a 3-member SIT at the request of the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust following allegations of misappropriation of temple donations. Defence Minister Rajnath Singh, Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari, along with Uttar

सोमवार की दोपहरी आकाशवाणी एफएम गोल्ड फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम मन भावन आपके साथ है हम रूमी मलिक और हमारे साथ है हमारे ढेर सारे श्रोता और उनकी फरमाइश पर सबसे पहले ये गीत आपके लिए

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। और हमारे कार्यक्रम में जैसे कि अटेंडेंस लगती है, कौन कौन हमारे साथ जुड़े हैं? अहमद फूलवाले, बोधराज कोरवाल, संदीप मक्कड़, कमलकांत गुप्ता, तुलसी मस्कीन, धर्मेंद्र चीपा, विजय सुरालकर, राधेश्याम देवांगन, प्रकाश वर्मा, जय हमारे साथ में है, सतीश अनेजा जी आ गए, राम नरेश चिक जी, अनिल कुमार गभंकर, राशिद हुसैन अंसारी, मोहम्मद इरशाद, प्रताप वर्मा, प्रियंका खंडारे, डरना मत अगर कोई नाम छूट जाए ना, इस गीत के उस पार भी लेंगे, जॉन डिकैस्ट्रो गाजियाबाद से, राशिद हुसैन, अशोक डाले, अनिल मोहन, परमिंदर सिंह जी। और अगला गीत हम प्ले करेंगे, ये गीत जो था जो आपने अभी सुना कई बार हुई देखा है, प्रताप वर्मा जी ने भी इसकी डिमांड की थी और भी बहुत सारे श्रोता है, तो बहुत अच्छा लगा कि आप सबकी जो पसंद है वो भी मिलती जुलती है। और अगला गीत है बेदर्दी बालमा तुझको, फिल्म है आरजू और फरमाइश करने वाले हैं अहमद फूलवाले जी, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: मन भावन में अगली फरमाइश है विजय सुरालकर रत्नमाला और कुमकुम जी की, मोताला महाराष्ट्र से हमें लिखते हैं। मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का गीत चलो सजना जहां तक घटा चले सुनना चाहते हैं।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: मन भावन कार्यक्रम के पेशकर्ता को सादर नमस्कार। नमस्कार जी, शादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ चंद्रकला जी फरमाइश कर रहे हैं गीत की जोत से जोत जगाते चलो, फिल्म है संत ज्ञानेश्वर, आइए सुनते हैं ये गीत।

बसंत कुमार सिन्हा जी हमको लिखते हैं, सलाम आदाब कबूल करें, आपको भी सलाम। ये चाहते हैं फिल्म गुमनाम से गीत सुनना, और ये गीत हम

हमारे पास है कि नहीं है ये हम देखेंगे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल है, दमदम एयरपोर्ट से इनके साथ रेखा हैं, अजय कुमार गुप्ता है, अभय कुमार हैं, श्रीमती रेखा देवी साव भी हैं और नन्हे मुन्ने अन्विका और तनुष भी हैं, सब सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं मन भावन। भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से परमिंदर सिंह रंधावा और लखन बाल जी पारसमणि फिल्म का ये गीत फरमाइश कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये गीत।

मन भावन सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के एफएम गोल चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हरजिंदर सिंह भाटिया जी कह रहे हैं कि हम थोड़ा लेट आए हैं पर हमारी अटेंडेंस लगा दीजिए, लग गई है जी। गौरीशंकर वर्मा जी लिख रहे हैं, रूमी बेटा दूसरा गाना लिख रहा हूँ, फिल्म है बिन बादल बरसात और गीत है जिंदगी कितनी खूबसूरत है, आइए आपकी ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। गौरीशंकर अंकल लिख रहे हैं नांगलोई से, और आपका पहला संदेश हमें देखना होगा, लेकिन दूसरा था संदेश शायद पहले पढ़ लिया है, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

नई दिल्ली से कमलेश मुकुल सचिन और दीपांशु फरमाइश कर रहे हैं गीत रुक जा रात ठहर जा रे चंदा फिल्म है दिल एक मंदिर।

आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। महाराष्ट्र के उमरखेड़ से आशा रेडियो श्रोता संघ के अभिजीत गम्हणकर राही, श्रीमती सरिता गम्हणकड़, प्रणीता, सिद्धांत, अर्जुन, साथ में वैशाली, शैलेश, सुमित, कुमारी, ध्वनि और प्रिंस एकांश, आप सभी फरमाइश कर रहे हैं। बादल फिल्म का ये गीत, दो दिन के लिए मेहमान यहाँ, मालूम नहीं मंजिल है कहाँ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायालय ने असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए ये बात कही। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नागरिकता तय करने या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया न्यायिक सिद्धांतों से समझौता नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। इससे पहले 13 जून को उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर में दान में कथित अनियमितताओं के मद्देनजर 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना में प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की ओर से दायर याचिका के मद्देनजर किया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजे और पुनर्वास की मांग की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और

0: से लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने रांची जिले के खलारी जिले के पिपरवार क्षेत्र के करकट्टा वन में अवैध कोयला खनन के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। इसमें लगभग 200 टन अवैध रूप से खनन किया गया कोयला जब्त किया गया है। अधिकारियों ने इस अभियान को क्षेत्र में संगठित कोयला खनन और तस्करी पर एक बड़ी कार्रवाई बताया और कहा कि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को आज उपराष्ट्रपति भवन में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी और सैनिक स्कूलों के बारे में जानकारी दी। एनसीसी के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कैडेट विनियमित कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की एक उत्कृष्ट पहल बताया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान सहित एनसीसी की सामुदायिक सेवा पहलों की भी प्रशंसा की। वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर आईआरजीसी ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में चौथे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 7 विकेट पर 146 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. The Supreme Court today ruled that the process of determining citizenship or declaring an individual a foreigner must be carried out through a fair, lawful and reasonable process. The Apex Court was hearing a batch of petitions filed by 27 people who had been declared foreigners by the foreigners' tribunals in Assam. The Supreme Court set aside the judgments of the Guwahati High Court that had upheld declarations of 27 appellants as foreigners. A bench of Justice Vikram Nath and Justice Sandeep Mehta acknowledged that the state has a legitimate and compelling interest in ensuring that those not legally entitled to Indian citizenship do not obtain it through false claims, misuse of legal process or delay, but stressed that due process must prevail. The Supreme Court today directed the Special Investigation Team SIT constituted by the Uttar Pradesh government on alleged misappropriation of donations in Ram Janmabhoomi Temple to submit a status report on the investigation. The court also issued notice to the Union government, the Uttar Pradesh government and the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust on petitions seeking a CBI probe into alleged embezzlement of donations meant for the Ayodhya Ram Mandir. A bench headed by Chief Justice of India, Surya Kant, and Justices Joy Mallya Bagchi and V. Mohan heard the petitions. Early on June 13, the UP government constituted a three-member SIT at the request of the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust following allegations of misappropriation of temple donations. Defence Minister Rajnath Singh, Union Minister of Road Transport and Highway Nitin Gadkari, along with Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, will inaugurate the Lucknow-Kanpur Expressway this afternoon. We have a report.
0: 63-kilometer long, 6-lane Lucknow-Kanpur Expressway with India's second longest elevated corridor is also country's first expressway built with automated and intelligent machine-guided construction technology. Equipped with AI-based speed enforcement, emergency call boxes at every 2 kilometers and two integrated 24/7 control rooms, the expressway is designed for speeds of up to 120 km/h and is expected to reduce travel time between Lucknow and Kanpur to just 35 to 40 minutes. A car journey between the two cities

0: .in. The High Court of Delhi has invited online applications from eligible candidates for the Delhi Higher Judicial Services Examination 2026 under the 25% direct recruitment quota. A total of 27 vacancies are available, comprising 17 general, 5 SC and 5 ST posts. Selected candidates will be appointed in the Delhi Higher Judicial Service in the J5 pay level. The online application process will close on 15th July 2026. Candidates are advised to refer to the detailed notification on the official website, that is at www.delhihighcourt.nic.in, for eligibility criteria, examination pattern and important instructions and updates. The Indian Ports Association, IPA, has invited applications for several positions across its organization. The vacancies include Director, Cruise, on fixed term employment contract, Deputy Director, on deputation, various positions in the PHRD vertical, on deputation, and the post of a Secretary and Assistant Manager, on deputation. The last date for submission of applications is 15th July 2026. Interested candidates can check the detailed eligibility criteria, qualifications, experience requirements and application process on the official website. Do look up www.ipa.nic.in. I repeat, it is www.ipa.nic.in. Indian Institute of Management, Visakhapatnam, has invited online applications for the recruitment of contract staff across various departments. Vacancies include academic programs, 2 posts, executive education programs, 2 posts, career development services and alumni relations, 2, one based in Mumbai remotely and 1 in Visakhapatnam on-site, and admissions officer, 1 post. Interested candidates can check the eligibility criteria, job descriptions and apply online through the Institute's career portal at www.iimv.ac.in/careers. The last date for submission of online applications is 18th July 2026. And I repeat the website, it is www.iimv.ac.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग इन प्रशासनिक पदों के लिए भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित कर रहा है। उप महाप्रबंधक ज्ञान सेवाएं, 1 पद। उप महाप्रबंधक पूर्व छात्र संबंध, 1 पद। वरिष्ठ प्रबंधक लेखा परीक्षा, 1 पद। प्रबंधक अकादमिक, 1 पद। प्रबंधक प्रत्यायन, 1 पद। सहायक प्रबंधक आईटी अवसंरचना, 1 पद। और सहायक प्रबंधक मैकेनिकल अवसंरचना, 1 पद। अधिक जानकारी के लिए देखिए भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग की वेबसाइट www.iimshillong.ac.in। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 20 जुलाई 2026। दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा 2026 के लिए 25% प्रत्यक्ष भर्ती कोटा के अंतर्गत पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्तियों की संख्या सामान्य वर्ग के लिए 17, अनुसूचित जाति के लिए 5, अनुसूचित जनजाति के लिए भी 5, कुल 27 रिक्तियां उपलब्ध हैं। वेतनमान रहेगा J5 यानी 1,44,000 रुपये 840 से लेकर 1,94,660 रुपये। पात्रता मानदंड और अन्य विवरणों के लिए कृपया दिल्ली उच्च न्यायालय की वेबसाइट देखिए www.delhihighcourt.nic.in। इस विज्ञापन से संबंधित भविष्य की किसी भी अधिसूचना या शुद्धि पत्र केवल दिल्ली उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर ही प्रकाशित होगा।

0: बसु विज्ञान मंदिर कोलकाता एक पद के लिए ऑडिट एंड फाइनेंस ऑफिसर की भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित कर रहा है। ये भर्ती डेपुटेशन के आधार पर है, जिसमें पे लेवल 10 रहेगा तथा पद की अवधि 3 वर्ष है। विस्तृत रिक्ति विज्ञापन, आवेदन प्रक्रिया, नियम और शर्तों तथा अन्य निर्देशों के लिए कृपया देखिए वेबसाइट www.jcbose.ac.in। भारतीय वायुसेना अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु इंटेक के लिए अविवाहित भारतीय पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख 6 जुलाई 2026 से 26 जुलाई 2026 तक है। ऑनलाइन परीक्षा 22 और 23 सितंबर 2026 को होनी है। उम्मीदवारों को आवेदन सिर्फ ऑनलाइन करना होगा और इसके लिए विस्तृत निर्देश उपलब्ध हैं इस वेबसाइट पर iafrecruitment.edcil.co.in। विस्तृत नियम और शर्तें आप 4 से 10 जुलाई 2026 के रोजगार समाचार पत्र में भी देख सकते हैं। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
3: नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में। श्रोताओं, हर दिन अपने साथ घटनाओं का एक नया अध्याय लेकर आता है। कुछ घटनाएं आज की सुर्खियां बनती है तो कुछ यादें इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर हमें प्रेरित करती है। परिक्रमा के इस अंक में हम आपको रूबरू कराएंगे देश दुनिया के प्रमुख खबरों से, साथ ही उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी याद करेंगे जिनकी उपलब्धियां आज भी हमारे समाज और संस्कृति को समृद्ध बना रही है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। मैं हूं वैष्णवी और मेरे साथ है अभिषेक मुखोपाध्याय। नमस्कार अभिषेक।
4: हेलो वैष्णवी। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा 100.1 मेगाहर्ट्ज एफएम गोल्ड। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज ऑफ कोर्स माय को-होस्ट वैष्णवी।

0: चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया।
1: Apex Court seeks status report from the SIT probing alleged misappropriation of donations in the Ram Janmabhoomi temple.
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश जारी किए।
1: Mortal remains of 15 Indians who died in Vietnam boat tragedy to be brought back home tonight by a Vietnam Airlines flight.
0: और ईरान ने अपने सैन्य ठिकानों पर अमरीकी हमलों के जवाब में जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए।
1: And now listeners, it's time for a segment Dateline India, which we take a look at the developments taking place at the national or the global level, and today we will talk about Catch the Rain अभियान।

0: Yes, and today we are talking about something that affects every one of us, water.
1: बिल्कुल अभिषेक, हम सभी मानसून का बेसब्री से इंतजार करते हैं, लेकिन श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान से बरसने वाला ये अनमोल पानी आखिर जाता कहाँ है?
0: A great question, Vaishnavi, and much of it simply flows away. But imagine if we could save every drop where it falls.
1: जल शक्ति अभियान यानी कैच द रेन अभियान के पीछे ठीक यही सोच है.
0: And the simple yet powerful message is, Vaishnavi, catch the rain where it falls, when it falls. And this nationwide campaign led by the Minister of Jal Shakti under the National Water Mission encourages people across India to harvest rainwater and recharge groundwater.
1: और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये केवल सरकार की पहल नहीं है, बल्कि जन भागीदारी का अभियान है. घर हो या स्कूल, गांव हो या शहर, हर व्यक्ति इसमें अपनी भूमिका निभा सकता है.
0: And you know what, Vaishnavi, people often ask, why should we bother collecting rainwater when we get water from taps?
1: जी, और अभिषेक, आपने ज्यादा देखा है कि लोगों के मन में अक्सर ये सवाल रहता है, जैसे कि आपने पूछा. लेकिन श्रोताओं, देश के कई हिस्सों में भूजल का स्तर लगातार घट रहा है. ऐसे में वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग भूजल को फिर से भरने, पानी की कमी को कम करने, खेती को सहारा देने और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षित रखने का एक प्रभावी उपाय है.
0: Exactly, Vaishnavi. And every drop we save today becomes a lifeline tomorrow. And the campaign focuses on five important areas. Let's take them one by one, shall we?
1: जी, पहला है जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन. इसके अंतर्गत छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, चेक डैम और जल संचयन गड्ढों जैसी संरचनाएं बनाकर वर्षा के पानी को सहेजने पर जोर दिया जाता है.
0: एंड सेकंड ऑफ कोर्स, वैष्णवी, इज द रेनोवेशन एंड द मैपिंग ऑफ वाटर बॉडीज, क्लीनिंग पॉन्ड्स, लेक्स एंड टैंक्स, रिमूविंग एनक्रोचमेंट्स, डीसिल्टिंग देम एंड इवन जियो टैगिंग देम सो दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन्ड.
1: वहीं तीसरा है जल स्रोतों का पुनः उपयोग और भूजल रिचार्ज, यानी पुराने और या अनुपयोगी बोरवेल और कुओं को बेकार छोड़ने के बजाय उन्हें भूजल रिचार्ज के लिए उपयोग में लाया जाता है, ताकि वर्षा का पानी दोबारा धरती के भीतर पहुंच सके.
0: एंड स्पीकिंग ऑफ द फोर्थ इम्पोर्टेंट एरिया, वैष्णवी, इज द इंटेंसिव एफोरेस्टेशन. Planting more trees helps the soil retain moisture and allows more rainwater to seep into the ground naturally.
1: और अभिषेक, पांचवा है यानी आखिरी, जन जागरूकता. क्योंकि अभिषेक, किसी भी अभियान की सफलता तभी संभव है जब समाज का हर व्यक्ति उसकी जिम्मेदारी समझे और उसमें सक्रिय भागीदारी निभाए.
0: So we have covered all the five important areas, isn't it? And you know what, rainwater harvesting sounds like a simple idea, but its benefits are truly remarkable.
1: बिल्कुल श्रोताओं, हम केवल पानी ही नहीं बचाते, बल्कि आने वाले कल को भी सुरक्षित बनाते हैं.
0: Absolutely, and for starters, rainwater harvesting helps recharge groundwater, which means wells and borewells are more likely to have water even during dry seasons.
1: साथ ही ये घरों, बगीचों और खेती के लिए पानी का एक अतिरिक्त स्रोत भी उपलब्ध कराता है, खासकर गर्मियों में जब पानी की सबसे अधिक जरूरत होती है, तब इसका महत्व और बढ़ जाता है.
0: And here's another advantage, Vaishnavi. It helps reduce flooding and soil erosion. Instead of rainwater rushing away

0: and causing waterlogging, it gets absorbed in the ground.
1: अभिषेक, बल्कि इतना ही नहीं, किसानों के लिए भी ये बेहद लाभदायक है। अगर हम देखें तो भूजल का स्तर बेहतर होने से सिंचाई आसान होती है, फसलों की गुणवत्ता सुधरती है और कृषि उत्पादन में भी वृद्धि होती है।
0: And also not to forget, Vaishnavi, rainwater harvesting also helps save energy and reduce the cost of pumping and treating water, making it an environmentally friendly and sustainable solution.
1: श्रोताओं, यानी हर छत पर बना रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, हर जल संचयन गड्ढा और हर चेक डैम्स जल संरक्षण की दिशा में एक छोटा लेकिन बेहद प्रभावी कदम है।
0: Absolutely, Vaishnavi, and one season of rain can create benefits that last all year. That's why every drop we harvest today helps build a stronger, greener and more water secure India.
1: श्रोताओं, यहाँ पर आपके लिए छोटा सा सवाल है। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि आपके घर, स्कूल या कार्यालय में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है या नहीं?
0: If the answer is yes, Vaishnavi, it's wonderful. If not, maybe this monsoon is a perfect time to start the conversation.
1: श्रोताओं, याद रहे, छोटे छोटे प्रयास जैसे पानी की बर्बादी रोकना, नालियों की सफाई, तालाबों का संरक्षण और अधिक से अधिक पेड़ लगाना मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
0: And remember, rainwater is one of the nature's greatest gifts. Conserving it today means ensuring clean and sufficient water for tomorrow. So to conclude our discussion today, Vaishnavi, this monsoon, don't just watch the rain, catch the rain where it falls, when it falls. Together we can recharge our groundwater, strengthen our communities and build a water secure India.
1: श्रोताओं, आइए इस मॉनसून हम सब एक संकल्प लें, पानी बचाए, हर बूंद का सम्मान करें और अपने परिवार, दोस्तों व समाज को भी जल संरक्षण के लिए प्रेरित करें, क्योंकि याद रखिए, हर बूंद कीमती है और आज बचाया गया पानी ही कल का सुरक्षित भविष्य है।

0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में राष्ट्रीय जल मिशन के अपर सचिव और मिशन निदेशक अर्चना वर्मा के साथ जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 0112317177106 और 0112331444। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप अपने सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। और श्रोताओं अब समय हो चला है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या खास है।
1: Yes, absolutely, Vaishnavi, and we start off with a story from Vishakhapatnam. And the Central Tribal University of Andhra Pradesh in Vizianagaram is emerging as a dedicated institution for tribal education, research and community development. We have more from a correspondent.
2: The Central Tribal University of Andhra Pradesh seeks to expand higher education opportunities for tribal youth. It also works to preserve tribal culture, languages, traditions and indigenous knowledge system. The university promotes research on tribal livelihoods, medicinal practices, forest resources and sustainable development. It is also developing tribal-centric models for inclusive growth. Through its science and technology hub, the university is taking the benefits of modern science to tribal communities in North Andhra Pradesh. Its programs focus on skill development, public health, nutrition, climate resilience and local entrepreneurship. Speaking at the first convocation of the university held recently, President Draupadi Murmu said the institution has a special responsibility to build confidence and leadership among tribal youth.
3: Andhra Pradesh ka ek kendriya janajatiya vishwavidyalay apna sarthak samaveshi aur paryavaran sarakshan par kendrit vyavaharik shikshan paddhati se is lakshya prapti kare और उसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। यहाँ के जनजातीय समाज की अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और प्रकृति से जुड़ी जीवन शैली इस समाज के इस वर्ग को आधुनिक शिक्षा के उपयोगी आयामों से जोड़कर ये विश्वविद्यालय देश के समतापरक विकास में यहाँ के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका

0: सुनिश्चित करेगा।
1: द प्रेसिडेंट एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस दैट द यूनिवर्सिटी वुड प्ले अ की रोल इन एम्पावरिंग ट्राइबल कम्युनिटीज एंड कंट्रीब्यूट टू द विजन ऑफ विकसित भारत बाय 2047। अल्लू मुरली फॉर परिक्रमा, आकाशवाणी न्यूज, विशाखापट्टनम।
2: श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की चिप क्रांति को आगे बढ़ाने में झारखंड की बेटियां भी अहम भूमिका निभा रही हैं? जी हाँ, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांणंद में शुरू हुए नए सेमीकंडक्टर प्लांट में झारखंड की बेटियां की ऐतिहासिक भागीदारी देश के लिए गर्व की बात है। आइए सुनते हैं हमारी रांची संवाददाता की ये विशेष रिपोर्ट।
3: कभी पिछड़े समझे जाने वाले झारखंड के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों से निकलकर यहां की बेटियां आज देश की सबसे आधुनिक तकनीक यानी माइक्रोचिप का निर्माण कर रही हैं। गुजरात के सांणंद में सीजी सेमी के नए प्लांट में जब कमर्शियल चिप प्रोडक्शन की शुरुआत हुई तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बेटियों का आत्मविश्वास देखकर गदगद हो गए।
4: उन बेटियों ने जिस तेजी से चीजों को सीखा है और जिस तरीके से वो चीजों को वहाँ कंडक्ट कर रही थी, गर्व होता है मेरे देश की युवा शक्ति पर।
3: प्रधानमंत्री की ये सराहना झारखंड के गिरिडीह, जमशेदपुर और पश्चिमी सिंहभूम सहित आदिवासी क्षेत्रों की बेटियों के संघर्ष का सम्मान है। घरेलू चिप उत्पादन की कमान संभालने से पहले इन महिलाओं ने विशेष प्रशिक्षण के लिए मलेशिया की भी यात्रा की। गिरिडीह की मशीन ऑपरेटर पूनम कुमारी ने प्रधानमंत्री के संवाद में अपनी इस अद्भुत यात्रा का अनुभव साझा किया है।
5: पहले तो लगता था कि हाँ, गाँव की लड़की है, बाहर जाके पढ़ रही है, रांची में जब मैं थी कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसे ही जा रही है बस टाइम पास करने के लिए। लेकिन नहीं, अब उन्हें लगता है कि हाँ, एक्चुअल में कुछ कर रही है।
3: टाटा स्टील तकनीकी संस्थान जमशेदपुर से डिप्लोमा कर देश की पहली कमर्शियल चिप कोर टीम का हिस्सा बनी जूनियर इंजीनियर तनीषा गौतम ने भी इस मिशन को अपने पूरे परिवार के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया।
6: लड़कियां अपने घर से 2700 किलोमीटर दूर आके गुजरात में काम कर रही हैं, सेमीकंडक्टर में काम कर रही हैं। ये हमारे पूरे देश के लिए, जमशेदपुर के लिए, झारखंड के लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है।
3: स्पष्ट है कि झारखंड की इन बेटियों ने साबित कर दिया है कि अगर सही अवसर मिले तो भारत की ग्रामीण प्रतिभाएं ग्लोबल इंडस्ट्रीज के स्टैंडर्ड्स को भी मात दे सकती हैं। परिक्रमा के लिए जमशेदपुर से कुमार कुणाल के साथ रांची से मैं महविश रहमान।
7: Yes, and from Rachi, we now turn our attention to Nagaland and Kohima. And Nagaland has launched the Unified Digital Agriculture Ecosystem, a comprehensive digital platform expected to improve access to information, advisory services and markets across the state. And let's hear more from a Kohima correspondent.
8: The new platform is designed to eliminate traditional bottlenecks in the supply chain and ensure that farmers, particularly in remote areas, have better access to essential information and government support. The Unified Digital Agriculture Ecosystem brings together several advanced technologies under one umbrella. Among its key features are AI-driven market intelligence to provide price forecasts and demand analysis, IoT-based smart field monitoring to deliver real-time soil and weather data, and an AI-powered chatbot, Kitty Manu, which will provide farming advisory and technical guidance in local dialects. The integrated platform also includes GIS services, an enterprise resource planning system, and an e-hub linking all district agricultural offices to strengthen coordination and service delivery. For Parikrama, this is Mary Mayase, Akashwani News, Kohima.
2: श्रोताओं, अब रुक करते हैं कर्स्योंग की तरफ। नेपाली जगत के प्रख्यात प्रथम कवि, लेखक व अनुवादक भानुभक्त आचार्य की 212वीं जन्म जयंती देश विदेश में भव्य रूप से मनाई जा रही है। 13 जुलाई 1814 में नेपाल के तनहू जिला में जन्मे भानुभक्त आचार्य ने वाल्मीकि रामायण को सरल नेपाली भाषा में अनुवाद कर जन जन में नेपाली भाषा को लोकप्रिय बनाया था। आइए सुनते हैं इस विशेष रिपोर्ट में।
9: देश विदेश में, विशेष करके भारत में नेपाली गोरखा आबादी वाले राज्यों तथा नेपाल में आज विविध साहित्यिक व सांस्कृतिक समारोहों के साथ 212वीं भानु भक्त आचार्य जयंती पालन किया जा रहा है। नेपाली भाषा के प्रथम कवि, लेखक व अनुवादक भानुभक्त ने संस्कृत भाषा के वाल्मीकि रामायण का सरल नेपाली भाषा में अनुवाद किया, जिसने नेपाली भाषा को सहज भाव से जन जन तक पहुँचाने तथा भाषा को लोकप्रिय बनाने तथा राष्ट्रीय व सांस्कृतिक एकता को एक मजबूत आधार प्रदान करने में अभूतपूर्व योगदान दिया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़, तराई व डुअर्स, सिक्किम, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व दिल्ली में आज विशेष समारोहों का आयोजन किया गया है तथा भानुभक्त आचार्य को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। दार्जिलिंग पहाड़ तथा सिक्किम में विशेष शोभा यात्राएं निकाल

0: डाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में विद्यार्थी व विविध संघ संगठनों ने भाग लिया। परिक्रमा के लिए अशोक चौरसिया, आकाशवाणी समाचार, कर्शियांग।
1: And from Darjeeling, some news from the state of Bihar. And in Bihar, tourists will now be able to enjoy heli and air tourism services. Chief Minister Samrat Chaudhary today launched the Bihar Heli Tourism and Air Tourism Service Scheme at a function held in Patna. An online booking portal for the service was inaugurated on the occasion.
2: अब आइए सुनते हैं नागपुर के ताजबाग शरीफ में सर्वधर्म संभाव के प्रतीक हजरत ताजुल औलिया बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के 114वें सालाना उर्स के अवसर पर निकाले गए शाही दरबारी संदल पर ये विशेष रिपोर्ट।
3: नागपुर का ऐतिहासिक ताजबाग इन दिनों आस्था श्रद्धा और सूफियाना रंग में सरोबार है। हजरत ताजुल औलिया बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के 104वें सालाना उर्स के अवसर पर शाही दरबारी संदल पूरे शानो शौकत के साथ निकाला गया। इस अवसर पर संदल में शामिल होने के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि
4: आपका सबका जीवन अच्छा हो, सुखमय हो, समृद्ध हो, संपन्न हो, भय भूख आतंक भ्रष्टाचार से मुक्त हो, गरीबी भुखमरी बेरोजगारी से मुक्त हो और आपको अच्छा जीवन प्राप्त हो, इसलिए हजरत बाबा ताजुद्दीन आपको भी और मुझे भी अपना आशीर्वाद दे।
3: हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की ओर से उर्स के दौरान प्रतिदिन लगभग 5000 लोगों के लिए लंगर की व्यवस्था की गई है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी नागपुर से धनंजय वानखेड़े के साथ मैं हिमांगी कुलकर्णी।
1: Yes, and from Nagpur on to Jammu and Kashmir, and the world's highest railway arch bridge, the Chinab Bridge in Riasi district, has become a major attraction for pilgrims undertaking the annual Sri Amarnath Ji Yatra. Akashvani Jammu correspondent reports that thousands of devotees travelling through the region are making brief stops to witness the engineering marvel towering above the Chinab River, and the bridge has become a popular photo and sightseeing destination, adding a unique travel experience to the spiritual journey.
2: अभिषेक, अब चलते हैं खेल के मैदान में और श्रोताओं को देते हैं वहां की ताजा हलचल।
1: एंड वी स्टार्ट ऑफ विद द बॉक्सिंग एशियन चैंपियनशिप्स। एंड इंडियन बॉक्सर्स रिमेन्ड अ स्ट्रॉन्ग फोर्स एट द एशियन अंडर 19 एंड अंडर 23 चैंपियनशिप्स, विद 8 ऑफ देम एडवांसिंग टू द फाइनल्स अक्रॉस मेन्स एंड वुमेन्स अंडर 23 कैटेगरीज एंड 7 अदर्स सिक्योरिंग ब्रॉन्ज मेडल्स आफ्टर सेमीफाइनल फिनिशेस इन जकार्ता। And on to some business news, benchmark domestic equity indices ended with minor gains today, reflecting a subdued trading session, and the Sensex edged up 47 points to close at 77,616. The Nifty added 4 points to settle at 24,211. For more updates about the market activities, tune in to Akashvani's bilingual program, Market Mantra, at 6:30 p.m. this evening.
2: श्रोताओं, अब बात उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की जो आज ही के दिन इस दुनिया में आए या आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। श्रोताओं, आज हम याद कर रहे हैं आशापूर्ण देवी को। आज उनकी पुण्यतिथि है। बांग्ला साहित्य की महान लेखिका आशापूर्ण देवी ने अपने लेखन के माध्यम से भारतीय समाज, विशेषकर महिलाओं के जीवन और संघर्षों को नई आवाज दी। उनकी कालजयी, त्रयी प्रथम प्रतिश्रुति, सुवर्णलता और बकुल कथा भारतीय साहित्य की अमूल धरोहर मानी जाती है। साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, रविंद्र पुरस्कार तथा पद्मश्री सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया गया। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में 1983 विश्व कप की जीत का जिक्र यशपाल शर्मा के बिना अधूरा माना जाता है। वे भारतीय टीम के भरोसेमंद मध्यक्रम बल्लेबाज थे और विश्व कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई उनकी 89 रनों की शानदार पारी आज भी भारतीय क्रिकेट के यादगार पारियों में गिनी जाती है। उनके जुझारू प्रदर्शन ने भारत को पहली बार विश्व विजेता बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
1: Yes, and we also remembering Beena Rai, who was born on this day in 1931. She was an acclaimed Indian actress and a major star during the black and white era of Hindi cinema. Born in British India, she is best remembered for playing tragic and romantic heroines in a timeless classics like Anarkali 1953, Taj Mahal 1963, and she also won the Filmfare Award for Best Actress for Ghungat in 1960. She made her debut with Kali Ghata in 1951 and was married to prominent actor Premnath Malhotra. Let's listen into a dialogue from one of her movies.
5: खबरदार लड़की।
6: बाजी, एक तो पराई

0: लड़कियों से गाने को कहते हो और ऊपर से अकड़ दिखाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें?
1: हम इनकी तरफ से तुमसे माफ़ी चाहते हैं।
0: हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं, अच्छी माफ़ी है ये, अपने आप को हम और मुझे तुम, जैसे तुम कोई बादशाह हो।
1: अब इसका जवाब हम तुम्हें क्या दे सकते?
0: तो फिर चले जाओ यहाँ से।
1: और अगर हम जाने से इनकार करें
0: तो फिर मुझे तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी।
1: किससे?
0: अकबर बादशाह, सजा दो।
1: ऐसा ना करना।
2: अभिषेक, बीना राय की अदाकारी जितनी यादगार रही उतनी ही अमर उनकी फिल्मों के गीत भी रहे हैं। और जैसा कि अभी आपने पाकीज़ा फिल्म का जिक्र किया, तो आइए श्रोताओं को सुनाते हैं उस फिल्म का एक खूबसूरत गीत, ये जिंदगी उसी की है।

सुरों की साधना जब तपस्या बन जाए तब जन्म लेती है केसरबाई केरकर जैसी महान विभूतियां। केसरबाई केरकर का जन्म 13 जुलाई 1892 को गोवा में हुआ था। विजयपुर अत्रौली घराने की महान शास्त्रीय गायिका थी। अपनी विलक्षण गायकी, शुद्ध स्वरों और कठिन रागों पर अद्भुत पकड़ के कारण उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाई दी। ललित, तोड़ी, बसंत बहार और कई दुर्लभ रागों की उनकी प्रस्तुतियां आज भी संगीत प्रेमियों और विद्यार्थियों के लिए आदर्श मानी जाती है। भारतीय संगीत में उनकी असाधारण योगदान के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। केसरबाई केरकर की गायकी का प्रभाव केवल शब्दों में नहीं समाया जा सकता। आइए अब उनकी स्वर साधना की एक अनुपम झलक सुनते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायालय ने असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों की याचिका की सुनवाई करते हुए ये बात कही। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेश को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नागरिकता तय करने या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया न्यायिक सिद्धांतों से समझौता नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में CBI जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। इससे पहले 13 जून को उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर में दान में कथित अनियमितताओं के मद्देनजर 3 सदस्यीय SIT का गठन किया था। जम्मू की एक अदालत ने अलगाववादी नेताओं का महिमामंडन करने वाली पुस्तकें प्रकाशित और प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार 3 प्रकाशकों को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। विवादित पुस्तकों में पर्सनैलिटीज एंड लीजेंड्स ऑफ J&K और ग्रेट पर्सनैलिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना में प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दों का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की ओर से दायर याचिका के मद्देनजर किया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजे और पुनर्वास की मांग की गई है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन को आज उपराष्ट्रपति भवन में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC और सैनिक स्कूल के बारे में जानकारी दी। NCC के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कैडेट विनियमन कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की दिशा में एक उत्कृष्ट पहल बताया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान सहित NCC की सामुदायिक सेवा पहलों की भी प्रशंसा की। न्यूजीलैंड के ग्रामीण समुदाय मंत्री मार्क पैटरसन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली स्थित संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि मुलाकात में संसदीय आदान प्रदान को मजबूत करने और भारत न्यूजीलैंड के बीच लंबे समय से जारी संबंधों को और गहरा करने के महत्व पर जोर दिया गया। भारत और जापान ने मुक्त, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान के टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह कर रहे थे। जापान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मामलों के रक्षा उपमंत्री कानो कोजी ने प्रतिनिधि

मंडल का नेतृत्व किया। दोनों देशों ने रक्षा उद्योग, नई तकनीक, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की सराहना की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज दिल्ली में पोलैंड के विदेश मंत्रालय के राज्य सचिव व्लादिस्लाव बार्तोसेजेस्की और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर सचिव माइकल बरोंस्की से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वियतनाम के फूक्वेक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट मैच में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में चौथे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 9 विकेट पर 186 रन बना लिए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। कार्यक्रम है गाते गुनगुनाते, आपके साथ हम रूमी मलिक। रिश्तों में मिठास आजीवन बरकरार रहेगी, बशर्ते दिल का इस्तेमाल करें, दिमाग का नहीं।

आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल गाते गुनगुनाते सुन रहे हैं आप। जिंदगी में दोस्तों उतार चढ़ाव लगे ही रहते हैं, पर जब जिंदगी में कोई भी मकसद या उद्देश्य या पर्पस होता है तो व्यक्ति थकता ही नहीं है। इस ओर हमारा ध्यान होना चाहिए।

गाती गुनगुनाती सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आपके साथ हैं हम रूमी मालिक। खुशी देखकर दूसरों की आनंदित होना, ये भी एक स्वस्थ मन की पहचान है।

यही इबादत है, यही है दीनो ईमां, कि काम आए दुनिया में इंसा के इंसान। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप गाते गुनगुनाते में, आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, संपत्ति होती है तो उससे बिल बनती है, लेकिन जब संस्कार होते हैं इंसान के पास तो उससे गुडविल बनती है। और सबसे बड़ी संपत्ति ही यही है कि हम अपने परिवार को संजो के रखें और अपने इष्ट देव उस प्रभु उस ईश्वर का स्मरण करते रहें, बाकी तो चीज़ें आती जाती रहती हैं।

गाते गुनगुनाते सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। जीवन बहुत छोटा है, इसे गुस्सा, पछतावा, शिकायत और चिंता करने में बर्बाद कर देते हैं हम, जबकि हमें हमेशा प्रसन्न और सकारात्मक रहना चाहिए।

सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल गाते गुनगुनाते 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आपके साथ है हम रूमी मलिक। दोस्तों, जो आपको नहीं समझते उन्हें मत समझाइए। समंदर खारा है, खारा ही रहेगा, उसमें शक्कर मत मिलाइए। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग।

दोस्तों, गाते गुनगुनाते का सफर यहीं तक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। ढूंढना है तो परवाह करने वाले ढूंढिए, इस्तेमाल करने वाले तो खुद आपको ढूंढ ही लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ रूमी मलिक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और इसके लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायालय ने असम के विदेशी न्यायाधिकरणों से विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए ये बात कही। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष जांच दल से जांच संबंधी रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को इस मामले में 3 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्रियों को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधा योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 6 लेन का यह देश का दूसरा सबसे लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर है। इसकी लंबाई 63 किलोमीटर है। यह स्वचालित और रोबोटिक मशीनों की सहायता से निर्मित देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। इस एक्सप्रेसवे से लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर केवल 35 से 45 मिनट रह जाएगा। दोनों शहरों के बीच कार से यात्रा करने पर ₹275 टोल टैक्स लगेगा। एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहनों की अनुमति नहीं है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेजी से विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी और सैनिक स्कूलों के बारे में जानकारी दी। एनसीसी के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कैडेट विनियम कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की एक उत्कृष्ट पहल बताया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान सहित एनसीसी की सामुदायिक सेवा पहलों की भी प्रशंसा की। भारत और जापान ने मुक्त, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान के टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव

0: और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान दोनों ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान द्वारा किए गए हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन की लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर ही सिमट गई। भारत ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 341 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। In women's cricket, Indian team led by Harmanpreet Kaur today recorded a historic win in one-off test against host England at the Lord's. India defeated England comfortably by 270 runs in the first ever women's test held at Lord's. Chasing a target of 457 runs, the hosts were all out for 186 in their second innings before lunch on day four. For India, Sneh Rana took 4 wickets, while Sayali Sadghare, Kranti Gaur and Deepti Sharma bagged 2 wickets each. India had declared the second innings at 341 for 7 yesterday at the stroke of tee, giving a target of 457 runs. Wicketkeeper batter Yastika Bhatia became the first woman to score a test century at the Lord's. Defence Minister Rajnath Singh, Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari, along with Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, inaugurated the Lucknow-Kanpur Expressway this afternoon. The 63-kilometre, 6-lane Lucknow-Kanpur Expressway, with India's second longest elevated corridor, is also the country's first expressway built with automated and intelligent machine-guided construction technology. The expressway is designed for speeds of up to 120 km per hour and is expected to reduce travel time between Lucknow and Kanpur to just 35 to 45 minutes. Supreme Court today directed the Special Investigation Team or SIT constituted by the UP government to submit a status report on alleged misappropriation of donations in Ram Janmabhoomi Temple. The court also issued notice to the Union Government, the UP Government and the Sri Ram Janmabhoomi Tir Kshetra Trust on petitions seeking a CBI probe into alleged embezzlement of donations meant for the Ayodhya Ram Mandir. A bench headed by Chief Justice of India Surya Kant and Justices Joy Malia Bagchi and V. Mohan heard the petitions. The Supreme Court today stayed a Madras High Court order which directed the Tamil Nadu government to ensure that no cow or calf is slaughtered in the state. A bench of Justices Vikram Nath and Sandeep Mehta passed the order while hearing a plea filed by the state government challenging a May 27 order of the High Court. India's total exports during April to June this year is estimated at over $232 billion, registering a positive growth of 11.37% as compared to the same period last year. Commerce and Industry Ministry said that the total exports for June this year is estimated at $73.45 billion, registering a positive growth of 9.48% as compared to the same month last year. The ministry said the total imports, merchandise and services combined for June this year is estimated at $88.76 billion, registering a positive growth of over 26% as compared to the same month last year. India's largest global textile event, Bharat Tex 2026, will begin tomorrow at Bharat Mandapam in New Delhi. The four-day event will showcase India's growing global leadership in textiles, fashion, sustainability, technology, innovation, investment, and international trade. It will bring together manufacturers, exporters, global buyers, investors, policymakers, international delegations, artisans, startups, and technology providers. The mortal remains of the 15 Indian tourists who lost their lives in the boat capsize incident near Phu Quoc Island in Vietnam will be repatriated from Ho Chi Minh City to India today by Vietnam Airlines flight. The Indian Embassy in Vietnam, in a social media post, said the flight is scheduled to depart from Ho Chi Minh City at 6 p.m. local time and is expected to arrive at Mumbai's Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport at 9:35 p.m. Indian Standard Time. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, has claimed responsibility for missile and drone strikes on U.S. military bases in Jordan, Bahrain and Kuwait as part of its ongoing Eye for an Eye operation. The attacks were described as retaliation for recent U.S. strikes on Iranian military targets. According to Iran's state news agency, the operation targeted the Prince Hassan Air Base in Jordan, Sheikh Isa Air Base in Bahrain and Ali Al Salem and Ahmed Al Jaber Air Bases in Kuwait. And benchmark domestic equity indices ended with minor gains today, reflecting a subdued trading session. The Sensex edged up 47 points to close at 77,616. Nifty added 4 points to settle at 24,211. And that is the end of this news bulletin.
2: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे गगनयान मिशन की, जो भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल से जुड़े 3 महत्वपूर्ण सुरक्षा परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। इन सफल परीक्षणों ने भारत को अपने पहले स्वतंत्र मानव अंतरिक्ष मिशन के और करीब पहुंचा दिया है। क्रू मॉड्यूल वही हिस्सा है जिसमें अंतरिक्ष यात्री यात्रा करेंगे, इसलिए इसकी प्रत्येक प्रणाली का पूरी तरह सुरक्षित और विश्वसनीय होना अत्यंत आवश्यक है। हाल ही में हुए परीक्षणों में समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल को स्वतः सीधा करने वाली प्रणाली, सर्विस मॉड्यूल से उसके सुरक्षित अलग करने की व्यवस्था और पैराशूट खुलने से पहले एपेक्स कवर को अलग करने वाली प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया। ये तीनों प्रणालियां अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन श्रोताओं, ये विषय केवल एक अंतरिक्ष मिशन तक सीमित नहीं है। गगनयान मिशन भारत की वैज्ञानिक क्षमता, आत्मनिर्भर तकनीक, उच्च स्तरीय विनिर्माण, नवाचार और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति बनने की दिशा में बढ़ते कदमों का भी प्रतीक है। ये मिशन केवल अंतरिक्ष में मानव भेजने का प्रयास नहीं, बल्कि देश में विकसित हो रही अत्याधुनिक तकनीकों, उद्योगों और अनुसंधान क्षमताओं का भी प्रमाण है। आज के कार्यक्रम में हम विश्लेषण करेंगे कि गगनयान मिशन क्या है, इसकी शुरुआत क्यों हुई, इसका उद्देश्य क्या है, अब तक इसमें कितनी प्रगति हुई है और हाल ही में हुए ये परीक्षण भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। श्रोताओं, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम 6 दशक से अधिक पुराना है। आर्यभट्ट से लेकर चंद्रयान, मंगलयान और आदित्य L1 जैसे मिशनों तक इसरो ने विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई है। लेकिन इन सभी अभियानों में अंतरिक्ष यान तो भेजे गए, मानव नहीं। मानव अंतरिक्ष उड़ान किसी भी देश के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सबसे जटिल उपलब्धियों में गिनी जाती है। इसमें केवल रॉकेट तैयार करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जीवन रक्षक प्रणाली, सुरक्षित पुनः प्रवेश, पैराशूट प्रणाली, समुद्र में सुरक्षित लैंडिंग और बचाव व्यवस्था जैसी अनेक तकनीकों का सफल होना भी आवश्यक होता है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत ने गगनयान मिशन की शुरुआत की। 15 अगस्त 2018 को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन की घोषणा की।
4: मंगलयान से लेकर के भारत के वैज्ञानिकों ने जो अपने ताकत का परिचय करवाया है, अब हम मानव सहित गगनयान लेकर के चलेंगे और ये गगनयान जब अंतरिक्ष में जाएगा, हिंदुस्तानी लेकर के जाएगा, हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों के द्वारा हुआ, हिंदुस्तान के पुरुषार्थ के द्वारा हुआ होगा, तब विश्व के अंदर हम चौथे देश बन जाएंगे जो मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाले बन जाएंगे। भाइयों बहनों, मैं देश के वैज्ञानिकों को, देश के टेक्नीशियंस को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं इस महान काम के लिए।
3: इस मिशन का उद्देश्य भारत में विकसित स्वदेशी तकनीक के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक भेजना

0: यान पृथ्वी पर लौटकर समुद्र में उतरता है तब समुद्री लहरों के कारण उसके उलट जाने की आशंका बनी रहती है। ऐसी स्थिति में ये प्रणाली मॉड्यूल को स्वतः सीधा कर देती है। ये तकनीक कोल्ड गैस पर आधारित है और अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके सफल परीक्षण से ये पुष्टि हुई है कि आपात स्थिति में भी क्रू मॉड्यूल सुरक्षित स्थिति में आ सकता है। दूसरा परीक्षण था अम्बिलिकल सेपरेशन मैकेनिज्म। ये प्रणाली क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल को अलग करती है। सर्विस मॉड्यूल मिशन के दौरान ऊर्जा और प्रणोदन उपलब्ध कराता है जबकि क्रू मॉड्यूल में अंतरिक्ष यात्री रहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश से पहले दोनों मॉड्यूल का सही समय पर अलग होना अनिवार्य होता है। इसरो ने सिमुलेटेड क्रू मॉड्यूल के माध्यम से इस प्रणाली का परीक्षण किया और ये सफलतापूर्वक निर्धारित मानकों पर खरी उतरी। तीसरा परीक्षण था एपेक्स कवर सेपरेशन सिस्टम का। एपेक्स कवर पूरे मिशन के दौरान पैराशूट प्रणाली की सुरक्षा करता है। पृथ्वी पर उतरने से ठीक पहले इसे अलग किया जाता है ताकि पैराशूट समय पर खुल सके और क्रू मॉड्यूल नियंत्रित गति से सुरक्षित समुद्र में उतर सके। इस परीक्षण में ये भी प्रमाणित हुआ कि एपेक्स कवर के अलग होने के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचना पूरी तरह स्थिर रहती है। इन तीनों सफल परीक्षणों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि गगनयान मिशन की कई महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रणालियां अब परिपक्वता की ओर बढ़ रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए जागृति शर्मा।
1: गगनयान मिशन में हाल ही में हुए इन सफल परीक्षणों का महत्व केवल तकनीकी उपलब्धि तक सीमित नहीं है। इन्हें समझने के लिए ये जानना भी आवश्यक है कि इस मिशन की अब तक की यात्रा कैसी रही है और भारत किस चरण पर पहुंच चुका है। आइए विस्तार से समझते हैं इस रिपोर्ट में।
2: भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन की औपचारिक शुरुआत 15 अगस्त 2018 को हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से इसकी घोषणा की। इसके बाद दिसंबर 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गगनयान परियोजना को मंजूरी दी। साल 2023 में इसरो ने TVD-1 यानी टेस्ट व्हीकल डेमोंस्ट्रेशन 1 मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया। इस मिशन में क्रू स्केप सिस्टम का परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान ये प्रदर्शित किया गया कि यदि प्रक्षेपण के समय किसी प्रकार की आपात स्थिति उत्पन्न होती है तो क्रू मॉड्यूल को रॉकेट से सुरक्षित अलग कर अंतरिक्ष यात्रियों की जान बचाई जा सकती है। इसके बाद मिशन के विभिन्न चरणों में पैराशूट प्रणाली, रिकवरी ऑपरेशन, जीवन रक्षक प्रणाली, प्रोपल्शन सिस्टम और अन्य कई उप प्रणालियों का लगातार परीक्षण किया गया। भारतीय नौसेना के साथ मिलकर समुद्र में रिकवरी अभ्यास भी किए गए ताकि वास्तविक मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा सके। हाल ही में न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि चंद्रयान और आदित्य L1 जैसी सफलताओं के बाद अब गगनयान भारत की अगली बड़ी वैज्ञानिक छलांग है।
3: भारत ने मून के साउथ पोल पर चंद्रयान लैंड कराया। दुनिया में कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन भारत इतने भर से संतुष्ट नहीं रहा क्योंकि भारत कहता है ग्रो मोर। इसलिए साथियों, भारत अब स्पेस में अपना गगनयान भेजने की तैयारी कर रहा है। भारत अब अपना स्पेस स्टेशन बनाने के लक्ष्य पर चल रहा है।
2: इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए वर्ष 2026 में इसरो ने क्रू मॉड्यूल से जुड़े 3 और महत्वपूर्ण परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। इनमें क्रू मॉड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बिलिकल सेपरेशन मैकेनिज्म और एपेक्स कवर सेपरेशन सिस्टम शामिल हैं।
1: श्रोताओं, इस मिशन ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी उद्योगों, स्टार्टअप, अनुसंधान संस्थानों और सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यमों यानी MSME के बीच सहयोग को भी नई दिशा दी है। गगनयान के लिए अनेक महत्वपूर्ण उपकरण और प्रणालियां भारत में ही विकसित की जा रही हैं, जिससे देश में उच्च प्रौद्योगिकी आधारित विनिर्माण को बढ़ावा मिल रहा है। इस मिशन का एक महत्वपूर्ण पक्ष मानव संसाधन विकास भी है। गगनयान नई पीढ़ी को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी STEM शिक्षा की ओर प्रेरित करेगा। श्रोताओं, भारत अब मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए आवश्यक सबसे जटिल और संवेदनशील तकनीकों में भी लगातार आत्मनिर्भर बन रहा है।

0: Namaskar and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we shall be taking your calls on your market related queries. But please do remember, friends, that we do not address stock or company specific queries. Well, you may call us on the numbers, and the numbers are 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do not forget to add 011 as a prefix to these numbers, right? All right, I'm Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor Amrish Saxena.
1: Namaskar. मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. इस कार्यक्रम में हम ताज़ा आर्थिक खबरें आप तक लाएंगे. आज सोमवार है और हर एक सोमवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्नों को सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे. प्रश्न पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444 और 2331-0481 और हमारा तीसरा नंबर है 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. आपके प्रश्नों का उत्तर देने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा.
0: And friends, let's begin with the headlines right away. In the Indian stock market, Sensex edges up 47 points, Nifty closes flat. India's retail inflation rises to 4.38% in June this year, and global crude oil prices rise. And friends,
1: aur hindi mein mukhya samachar. Gharelu share bazaron mein Sensex 47 ank bada, Nifty mein khas badlav nahi hua. देश की खुदरा मुद्रा स्फीति इस वर्ष जून में 4.38% बढ़ी और वैश्विक कच्चे तेल के मूल्यों में तेजी दर्ज की गई.
0: And friends, before we move on in the program, let's have a disclaimer for you all. Well, the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और आज की पहली खबर, घरेलू शेयर बाजार आज लगातार दबाव में रहे और मामूली बढ़त के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 47 अंक बढ़कर 77,616 पर बंद हुआ. निफ्टी 4 अंकों की बढ़त के साथ 24,211 पर आ गया. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक में कोई खास बदलाव नहीं हुआ, हालांकि दोनों ही मामूली बढ़त के साथ बंद हुए. दुनिया के बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ खुले, लेकिन बाद में शुरुआती गिरावट को दरकिनार करते हुए आगे बढ़े. दोपहर के समय बाजारों में सकारात्मक रुख दिखाई दिया, हालांकि वे एक सीमित दायरे में ही कारोबार करते रहे और मामूली बढ़त के साथ बंद हुए.
0: Benchmark domestic equity indices ended with minor gains today, reflecting a subdued trading session. The Sensex edged up 47 points to close at 77,616. The Nifty added 4 points to settle at 24,211. In the broader market on the National Stock Exchange, mid-cap 100 and small-cap 100 indices also ended on a flat note, though both managed to close with a slight positive bias. Earlier today, the benchmark indices opened with a gap down amid weak global cues. However, they recovered from the initial losses and steadily gained momentum. Around noon, the markets entered positive territory but traded in a narrow range thereafter, ending the session with only minor gains.
1: Sensex ki 30 mein se 18 companies mein giravat darj ki gayi. Kharab प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में टाटा स्टील का शेयर 2.1%, इटर्नल का शेयर 1.5% और इंडिगो का शेयर 1.3% गिरा. दूसरी ओर

0: All right, I think the voice was not too clear, but anyway, let's move on.
1: एशिया और यूरोप के बाजारों का हाल भी जान लेते हैं. एशिया के बाजारों में आज मिला जुला रुख देखने को मिला. दक्षिण कोरिया का कोस्पी 9% की गिरावट के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला सूचकांक बन गया. बाजार की गिरावट रोकने के लिए सर्किट ब्रेकर लगाया गया और कारोबार 20 मिनट तक अस्थायी रूप से रोक दिया गया. चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 2.1% और जापान का निकेई 1.9% तक गिरा. दूसरी ओर हांगकांग शेयर बाजार के हैंगसेंग इंडेक्स में लगभग 0.2% की तेजी दर्ज की गई. ताइवान का ताइएक्स और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स दोनों ही सकारात्मक रुझान के साथ स्थिर रहे. यूरोप के प्रमुख शेयर बाजारों में भी मिला जुला रुख देखने को मिला. अंतिम समाचार मिलने तक जर्मनी का डैक्स और फ्रांस का कैक दोनों ही 0.2% आगे चल रहे थे, जबकि लंदन का फुटसी नकारात्मक रुझान के साथ स्थिर बना हुआ था. शशि जी, हालांकि मिक्स ट्रेंड हमें यूरोप और एशिया दोनों में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो खास चीज हमारा ध्यान आकर्षित करती है, अगर दक्षिण कोरिया की हम बात करें जहां पर इतनी तेज गिरावट हमें देखने को मिली, मोटे तौर पर और बाजारों में भी कोई बहुत अच्छी स्थिति एशिया में हमें नहीं दिखाई दे रही.
2: दक्षिण कोरिया की बात का जिक्र करना यहाँ पे ज्यादा अहम होगा, क्योंकि कुछ समय पहले दक्षिण कोरिया में एक या दो ऐसी कंपनियां थीं जिनके शेयरों में काफ़ी तेज उछाल आया था, और उसकी वजह से दक्षिण कोरिया के जो कहते हैं कि बाजार पूंजीकरण जो है वो काफ़ी आगे हो गया था, और ये कहा गया कि दक्षिण कोरिया और ताइवान के शेयर बाजारों की स्थिति देखिए. लेकिन उस समय भी अगर हम लोग अगर उस बात को दोबारा याद करें तो उस समय हमने इस बात का खास तौर पर जिक्र किया था कि दक्षिण कोरिया हो, ताइवान हो या ऐसे बाजार हो, इसमें एक या दो या तीन कंपनियां, चार कंपनियां जो है वो बाजार को ऊंचा ले जा रही हैं. जबकि हमारे यहाँ जो बाजार में स्थिति है कि हम एक विविध बाजार हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं, और उन सभी क्षेत्रों का मिला जुला असर देखने को मिलता है. तो अगर एक लंबे समय की प्रवृत्ति की बात करें तो वो दक्षिण कोरिया हो या फिर ताइवान की बात करें या ऐसे बाजारों की बात करें, शायद वहां देखने को नहीं मिलेगा, जबकि भारतीय बाजारों में हमें वो स्थिति देखने को मिलेगी, और वो बात आज काफी हद तक जो है वो सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है.
1: यहाँ पर हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें कि आज सोमवार है, और हर एक सोमवार की तरह हम श्रोताओं के प्रश्नों को सीधे कार्यक्रम में शामिल करते हैं. श्रोताओं, आप हमसे फोन करके सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं इन नंबरों पर 2331 4444 और 2331 0481, और हमारा तीसरा नंबर है 2371 7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें.
0: शिशिर, नोइंग द मार्केट्स एट द मोमेंट, एज वी सेड इट रोज बाय 47 पॉइंट्स नाउ एंड स्टिल द मार्केट्स आर वोलेटाइल, नो थैंक्स टू द वॉर सिचुएशन एंड द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एंड द स्टेट ऑफ हॉर्मोज एंड द एनर्जी थ्रेट ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी. After seeing all this, is this the right time to invest if somebody wants to invest? What is your overall, how would you analyze? The newcomers should wait and watch, or somebody with a high risk appetite should plunge into the stock market? How would you explain that?
2: So you have mentioned various factors starting from war to crude oil. Hmm. But one more factor needs to be added, and that is the monsoon. Which has much wider impact because almost our agrarian economy is depending upon this thing. So what I mean to say that at this moment, when any kind of investor who is say a beginning, who is a beginner or newcomer in the market, it would be better if we just wait for some more time, because the volatility is too much, uncertainty is at high level, and even if he wants to invest, the mutual fund route is much better. And mutual fund, not just on the equity one, I would say go on the diversified one. Some part in equity, some part in debt, some part in the hybrid. That will give some more comfort. Entering into the market at this point of time, my advice would be it's not the good time.
0: I mean, don't put all your eggs in one basket, as they say. All right, we're now joined by Ramanathan from Chennai. Yes, Ramanathan ji, please ask a question. Yeah.
3: यस गुड इवनिंग मार्केट मंत्री।

0: Yeah. See, I have two questions.
1: Yeah, sure.
0: One is, how is this dollar index calculated? And one more question is, with this inflation going up, can we see any interest rate hike, repo rate hikes?
2: The first question is about the dollar index. It is basically composition of six foreign currencies, and any kind of changes in those six currencies impact the dollar index. And dollar index gives basically indication about that what is happening in the dollar, what kind of a strength we are going to have. Coming to your second part of the second question, which is about the inflation and the interest rate. Basically, the 4% rate is something which is sometime it is giving an indication, is it a time for rate hike? I think we will have to wait for at least two more months. So that is why the number which we have seen today is more than 4%. That means the median rate of targeted inflation rate has been breached, that 4%, after January 2025. Now the expectation is that for the next 2 or 3 months, it could be in the range bound manner, but depends upon that how the monsoon covers entire nation and what is the sowing situation. So we are expecting that in the second half of the fiscal, there may be a rate hike, but that will depends upon that what kind of inflation we see in the month of August or September.
3: और महाराष्ट्र से हमारे श्रोता के के शुक्ला लाइन पे हैं. शुक्ला जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं.
4: नमस्कार सभी को. मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या आज अभी भी गोल्ड का रेट इंग्लैंड में तय होता है इंडिया का भी, और गोल्ड और डॉलर में क्या संबंध है?
2: देखिए, गोल्ड के रेट की जहां तक हम लोग बात करें, कॉमेक्स के आधार पर जो है वो रेट लिया जाता है. और रहा सवाल कि डॉलर और उसके मुकाबले में क्या, देखिए डॉलर मजबूत होता है तो उसका जो है वो नकारात्मक असर हमें सोने को में देखने को मिलता है, और डॉलर कमजोर होता है तो सोने के भाव में तेजी आती है.
1: और जॉइन बाय विशाल फ्रॉम दिल्ली. जी विशाल जी, सवाल पूछिए.
5: नमस्कार. जैसे मैं ये जानना चाहूंगा, 3-4 दिन से आईटी सेक्टर थोड़ा परफॉर्म अच्छा कर रहा है, कोई आने वाले समय में भी अच्छा परफॉर्म करेगा या नहीं?
2: देखिए, आईटी सेक्टर में हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि बीते दिनों जो नतीजे आए हैं वो नतीजे अच्छे रहे हैं, एक उम्मीद दे रहे हैं कि शायद आने वाले दिन भी अच्छे रहेंगे. उनका जो कहते हैं ना कि आउटलुक भी जो वो बता रहे हैं उसमें थोड़ी स्थिति बेहतर है. और अगर आप याद करिए तो जो हमारी देश की एक बड़ी आईटी कंपनी है, उनके चेयरमैन साहब ने ये भी बात कही थी कि जो भी हम एआई की बात करते हैं, एआई के लिए भी हमें एचआई और जो ट्रेडिशनल जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी. इसी तरीके से एनविद्या के अगर आप सीईओ की बात को याद करें तो उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया था कि जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज हैं उनकी जरूरत बनी रहेगी. तो ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसके वजह से आप आईटी कंपनियों में तेजी देख रहे हैं. अब प्रश्न ये कि आने वाले समय में कैसी स्थिति रहेगी, देखिए ये सब कुछ निर्भर करता है कि ये लड़ाई का जो माहौल है उसमें किस तरीके से सुधार होता है. अगर वो सुधार होता है, मांग बढ़ेगी और उस मांग का फायदा जो है वो आईटी कंपनियों को देखने को मिलेगा. तो अभी थोड़ा सा ये जो 1-2 महीने हैं थोड़े से अभी अनिश्चितता के समय में है, उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो लड़ाई अभी दोबारा शुरू हुई है वो लंबा ना खींचे, तो इसका फायदा जो है हमें आईटी सेक्टर्स में भी देखने को मिल सकता है.
1: और जॉइंड बाय तरुण फ्रॉम गुरुग्राम. जी तरुण जी, सवाल पूछिए अपना. जी
6: गुड इवनिंग. माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज योर टेक ऑन द डिफेंस स्टॉक इन द करंट सिचुएशन? And second part of the question is specifically with respect to Cochin Shipyard company's stock price.
2: Tarun, as a matter of policy, we cannot discuss name of any company. Any specific stock cannot be mentioned, but sector you have asked about the defense sector. Of course, defense sector is doing well, and at this moment I feel that defense sector will have a potential to give a better return.
1: All right, moving on. HCL Technologies today reported its financial results for the first quarter of the current financial year, that is from April to June. The company's revenue increased by 13.9% on an annual basis to 34,579. The company's revenue grew by 1.76% on sequential basis. The company's net profit rose by 3% to 4,624 crore rupees on quarterly basis. The country's third largest IT services company also announced an interim dividend of 12 rupees per equity share.

0: एंड
1: और चलते हैं अगली खबर की ओर। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब अमरीकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। इस दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73.45 अरब अमरीकी डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब अमरीकी डॉलर हो गया। इस तरह इसमें 19% की वृद्धि दर्ज की गई। शिशिर, बहुत ही अच्छी खबर है जिस तरह से हमारा निर्यात बढ़ा है।
2: बिल्कुल, देखिए निर्यात का बढ़ना अच्छी खबर है, लेकिन एक चीज और भी देखिए कि आयात भी बढ़ा है और जिसका असर जो है वो हमारे व्यापार घाटे पर देखने को मिला है। लेकिन अभी के समय में हमें आयात में ये भी देखना चाहिए कि आयात किस चीज का बढ़ा है। अगर कच्चे माल, मशीन, इन सब चीजों का आयात बढ़ रहा है तो वो बुरी खबर नहीं है, बल्कि वो हमारे निर्यात को बढ़ाने में मदद करेगा। तो आयात बढ़ने को लेकर के जब कभी भी हम चर्चा करें तो हमें ये भी देखना चाहिए कि किन चीजों का आयात बढ़ा है। और यदि आयात में इस तरह के सामान हमें देखने को मिलते हैं तो उसको लेकर के हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हो सकता है आने वाले कुछ समय में उसका असर एक सकारात्मक देखने
1: जी, जैसा आपने कहा श्री जी, अलग से हमारे पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन वस्तुओं में और सेवाओं में दोनों की दृष्टि से अगर हम देखें तो आयात में भी 26% की वृद्धि हुई।
0: एंड गवर्नमेंट हैज डन अ लॉट ऑफ गुड वर्क बाय एक्सपेंडिंग इट्स बास्केट बाय आउटसोर्सिंग फ्रॉम आई मीन बोथ इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट।
2: सर्टेनली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग दैट इफ यू आर हैविंग मोर एंड मोर कैपिटल गुड्स in import, more and more API imports are there, that is good for us. So import is not a bad word. The thing is not what we are importing.
0: Right.
1: और दिल्ली से हमारे श्रोता रमेश लाइन पे है। रमेश जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं।
3: सर मेरा ना क्वेश्चन नेशनल सेविंग स्कीम सर्टिफिकेट के बारे में है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग स्कीम NSS।
1: जी
3: सर, मैंने ना 91 में सर जी 45,000 सर जी पोस्ट ऑफिस में लगाए थे, तो सर अब वो पोस्ट ऑफिस वाले कह रहे हैं कि अपने पैसे निकाल लीजिए क्योंकि गवर्नमेंट ने स्कीम बंद कर दी है। तो सर मेरा सर से क्वेश्चन ये हैगा कि सर जब मैं पैसा निकालूँ क्या ये टैक्सेबल सर होगा, नॉन टैक्सेबल रहेगा सर? और सर ये बजट में ना सर गवर्नमेंट डिक्लेयर किया था, किसी ने मुझे बताया कि ये गवर्नमेंट बोला है आप निकालेंगे तो टैक्स नहीं लगेगा इसके ऊपर। सर मैं सर की ओपिनियन जानना चाहता हूँ सर। मैं
2: देखिए नेशनल सेविंग स्कीम, अब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या जिसको हम लोग NSE के नाम से जानते हैं, वो अब उस रूप में है। आप अगर पैसा निकालते हैं वो टैक्स ऑलरेडी कट गया है। इसका जो सिस्टम होता है जिसको हम लोग कहते हैं ETE, यानी कि जब आप पैसा लगाते हैं उस समय आपको एक निश्चित रकम तक कर में छूट मिलती है, उसके बाद जो उस पर ब्याज जोड़ता जाता है वहां पर टैक्स कटता है। और जब आप पैसा निकालते हैं तो ऑलरेडी चूंकि टैक्स कट चुका है तो वो आपके ऊपर वो एग्जेम्प्टेड होगा, यानी कि उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना है।
0: ऑलराइट, वी आर नाउ जॉइंड बाय शंकर फ्रॉम भोपाल। जी शंकर जी, सवाल पूछिए।
4: नमस्ते मार्केट मदर टीम। सर मेरा सवाल थोड़ा सा हटके है, ना मार्केट से है ना फाइनेंस से है। मेरा सवाल सर है कि हमारे यहाँ बहुत सारा विकास का काम हो रहा है, जैसे मध्य प्रदेश में भोपाल में सीवर लाइन डल रही है, सड़कें बन रही है, बट द क्वालिटी ऑफ वर्क इज नॉट अप टू द मार्क। ये बिकॉज ऑफ यू नो जो भी रीजन हो, L1 L2 के चक्कर में सबसे सस्ते को लिया जाता है और काम और सस्ता होता है, तो इसका क्या, इसके इम्प्रूवमेंट के लिए क्या किया जा सकता है?
0: Well, I think we can't take that question because we are limiting ourselves to anything which is related to the financial aspect of the country or the markets, right? So this is beyond our syllabus to be honest and to be precise. All right, let's move on with more news. India's retail inflation accelerated to 4.38% year on year in June, breaching the Reserve Bank of India's midpoint target. The June inflation reading was moderately higher than the 3.93% recorded in May. Retail inflation continued to rise for the sixth consecutive month under the new Consumer Price Index CPI series. According to data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, inflation in rural areas edged up to 4.74%, while in urban regions it rose to 3.92%. The food inflation rate based on the all

0: India Consumer Food Price Index stood at 5.32% last month, up from 4.78% in the preceding month. According to the data, the increase in inflation in the previous month was mainly attributed to rising prices in personal care, social protection, restaurants and accommodation services, food and beverages and intoxicants. Your comment on this?
1: See, one factor is that there is a complete pass-through of petrol diesel price hike, and that is being reflected in the inflation number. The second is, of course, precious metal, whether we talk about silver jewelry or whether we talk about gold, diamond and platinum jewelry. In fact, silver jewelry, the inflation rate is 133%, which is not a small number.
0: Absolutely.
1: And the good thing is that the vegetable prices, I mean, especially when we talk about onion and potato, they are in the disinflation. That means they are in the negative territory. But one of the ingredient of our thali, which is ginger, adrak.
0: Yes, yes.
1: That is very costly. Jeera. That's a cummins, that is also very costly. So some of the food items are costly, some of the food products are costly. So we have the pass-through, then we have the precious metal and some of the food items. So combination of all those three have resulted in the 4.3% of the inflation for the month of June.
0: And we know that there is likely to be less monsoon, you know, as is being predicted
1: is
0: by the IMD.
1: Yeah, that
0: so that's
1: is
0: a bit of a worry. A bit of a worry.
1: Yeah, that
0: right?
1: is a concern, and that is what we are expecting, that the inflation will be over 4% in the coming months also.
2: Aur hamare shrota Deepak humse jud chuke hain. Deepak ji, namaskar. Bataiye kya puchna chahte hain?
3: Namaskar sir.
1: Namaskar.
2: Ji, sawal puchho.
3: सर, ये जैसे मार्केट में मैं ना पहले इंट्राडे ट्रेडिंग भी करता था, निफ्टी और इन पे ऑप्शन ट्रेडिंग भी करता था, तो ये गैप अप और गैप डाउन का जो मैकेनिज्म है ये मेरी समझ से बाहर है कि मतलब एक ही नाइट में सेंटीमेंट कैसे चेंज होता है। सुबह सुबह गैप अप होके, जैसे आज ही हुआ था गैप डाउन होकर, शाम तक गैप मतलब फिल हो गया था, तो इतनी जल्दी सेंटीमेंट कैसे चेंज होते हैं सर?
1: तकनीक में समय बहुत कम लगता है। तकनीक जो है वो सूचनाओं को बहुत जल्दी एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाता है। तो जब आप कहते हैं गैप डाउन ओपनिंग हुई, तो जाहिर सी बात है कि रात की घटनाएं, सुबह की घटनाएं असर करती हैं, लेकिन दोपहर के बाद अगर परिस्थितियां, मान लीजिए थोड़ी सी सकारात्मक खबरें आती हैं, कुछ क्षेत्र में अच्छी खबरें आती हैं, सरकार की तरफ से अच्छी खबरें आती हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका बदलाव देखने को मिलता है। तो इसका सीधा सीधा जवाब मैं इतना ही कहूंगा कि तकनीक की वजह से सूचनाओं का जो प्रवाह है, जिसमें तेजी आई है, उससे बाजार में भी जो है वो पल दो पल, जिसको कहते हैं, बदलाव देखने को मिलता है।
0: राइट, ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट ऑयल प्राइसेस नाउ। वेल, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस रोज टुडे आफ्टर रिन्यूड मिलिट्री स्ट्राइक्स बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान रीइग्नाइटेड कंसर्न्स ओवर एनर्जी शिपमेंट्स थ्रू द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ब्रेंट क्रूड वाज ट्रेडिंग 3.4% अप एट $78.59 पर बैरल। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड वाज ट्रेडिंग 3.5% up at $73.89 per barrel when reports last came in. And in the Indian bullion market, 24 carat gold was trading 1% down at 1,42,610 rupees per 10 grams, while silver was trading 1.3% lower at 2,20,140 rupees per kilogram a short while ago.
2: Aur multi commodity exchange mein August anubandh wala sona 1% की गिरावट के साथ 1,42,066 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सितंबर अनुबंध वाली चांदी 1.3% की गिरावट के साथ 2,19,823 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही थी। शशि जी, आप क्या कहना चाहेंगे सोने के मूल्य के बारे में?
1: देखिए, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि महंगाई दर में चांदी की महंगाई दर और सोने की महंगाई दर कितनी है, लेकिन हकीकत यह है कि दैनिक आधार पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर सोने और चांदी दोनों में जो है गिरावट देख रहे हैं, और एक बहुत ही ऊंचे स्तर से गिरावट आई है क्योंकि डॉलर लगातार मजबूत हुआ है। तो वहां पर जो इतनी मजबूती आएगी उसका असर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और दूसरी बात यह भी है कि जो वैश्विक अनिश्चितता का दौर था, उसके में कहा जाता था कि सोने के भाव बढ़ेंगे, लेकिन इस बार उल्टा रहा है। सोने में उस तरीके की स्थिति देखने को नहीं मिली है। उसकी एक वजह यह भी है कि डॉलर की स्थिति अगर अलग रही है तो उसका असर आपके सोने पर पड़ा है।
2: और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। शशि जी से कार्यक्रम में भाग लेने, प्रमुख खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नाउ द हेडलाइंस अगेन, थैंक यू शशि जी। वेल, इन द इंडियन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स एजेस अप 47

0: points. Nifty closes flat. India's retail inflation rises to 4.38% in June this year, and global crude oil prices rise. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. So from all of us here, goodbye.
1: Namaskar.
2: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रूपये की विकास परियोजनाओं का शुभारम्भ किया गया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
4: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है, और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
3: श्री नितिन गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
5: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3-लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा, ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
3: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को आरबीआई की स्वैप सुविधा योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी और सैनिक स्कूलों के बारे में जानकारी दी। एनसीसी के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कैडेट विनियम कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की उत्कृष्ट पहल बताया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान सहित एनसीसी की सामुदायिक सेवा पहलों की भी प्रशंसा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन के स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड दौरे पर हैं। भारत और जापान ने मुक्त, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान की टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक विचार विमर्श किया। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए पश्चिम एशिया संकट के वर्तमान परिदृश्य और वैश्विक प्रभाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत प्रभु दयाल, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: दयाल जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, जो पश्चिम एशिया में तनाव की स्थिति बनी हुई है, कुछ समय पहले ये आशा की जा रही थी कि इस स्थिति में सुधार होगा, लेकिन वर्तमान समय में ये कहा जा सकता है कि तनाव की जो स्थिति है वो कम नहीं हो पा रही, इस पर आप क्या कहेंगे?
2: देखिए, मेरे विचार में जो स्थिति है वो बहुत गंभीर है। यूएस और ईरान के बीच जो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षर किया गया था पिछले महीने, वो बिल्कुल खत्म हो गया। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो ये कह दिया है कि सीज फायर अब खत्म है। आपको याद होगा कि उस एमओयू में ये कहा गया था कि ईरान जो है वो कमर्शियल वेसल्स को 60 दिन के लिए फ्री पैसेज देगा और वो ओमान के साथ काम करेगा कि किस तरह से आगे ये सर्विसेज दी जाएं, इस पे निश्चय किया जा सके। लेकिन ईरान ने जो कंडीशन थी उसको पूरी तरह से नहीं कबूल किया, और जो पुराना स्टेटस को था जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ओपन इंटरनेशनल वाटरवे था, उस स्थिति पे ईरान वापस जाने को तैयार नहीं हो रहा था। और बार बार ईरान ने ये कोशिश की कि वो दिखाए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उसका सॉवरेन कंट्रोल है। और यहाँ तक कि ईरान ने तो कुछ टोल्स भी डिमांड किए, उन्होंने कहा कि ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फीस है। तो जब ये कमर्शियल वेसल्स ने टोल्स देने को इनकार कर दिया और ईरान की बातें मानने से इनकार किया, तो ईरान ने इन कमर्शियल शिप्स को अटैक किया और उसके जवाब में अमेरिका ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स किए। ईरान ने फिर अमेरिकन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक किए, खासतौर पे बहरीन और कुवैत में। तो इस सब से सिचुएशन जो है वो बहुत गंभीर होती जा रही है।
1: क्या ये द्विपक्षीय टकराव है या यूं हम कहें कि वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करने वाला घटनाक्रम बन चुका है सीज फायर के फेल होने के बाद?
2: ये वाकई में ये जो है संतुलन तो बिल्कुल खत्म हो गया और जो स्थिति है वो और गंभीर होती जा रही है। अब मेरे विचार में ये बहुत बड़ा संकट है क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा हैं और इसको कैसे खत्म किया जाए ये सबसे बड़ा एक प्रश्न उठकर सामने आया है विश्व के सामने।
1: दयाल जी, अगर ये टकराव थोड़ा और गहरा होता है तो इसका असर कोई संदेह नहीं कि वैश्विक ऊर्जा बाजार पर सबसे ज्यादा पड़ेगा, समुद्री व्यापार भी प्रभावित होगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था भी गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। तो भारत के लिहाज से अगर हम देखें तो क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं सामने?
2: देखिए, एक तो ये कि भारत के लगभग 9.5 मिलियन यानी 95 लाख लोग रहते हैं गल्फ में और वहाँ काम करते हैं, वहां से रिमिटेंसेस भेजते हैं, तो उनकी फैमिलीज की लाइफ अफेक्ट होती है। अगर ये जो लड़ाई बढ़ती है और उनकी नौकरियां जाती हैं तो ये बहुत बड़ा संकट कई फैमिलीज के लिए होगा और भारत के रेमिटेंसेस जो है उनके कम हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए, हमारा जो ऑयल सप्लाई है वो इस रास्ते से आता है। लगभग 85-90% हम अपने क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करते हैं और वेस्ट एशिया से करीब 50% हमारे पास आता है क्रूड ऑयल। तो अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो हमारे जो सप्लाईज हैं ये बंद होते हैं और क्या होगा कि जो कीमत बढ़ेगी, ऑयल सप्लाईज वहां से बंद होंगी तो क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ेगी, तो इस वजह से हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ता है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि लड़ाई और आगे ना बढ़े, किसी तरह से समझौता।
1: दयाल जी, जहां तक भारत की बात हम करते हैं तो पश्चिम एशिया के अधिकतर देशों के साथ हमारे मजबूत संबंध हैं, तो ऐसे में हमारे लिए संतुलित और बहुआयामी कूटनीति बनाए रखना आपको लगता है कि कुछ चुनौतीपूर्ण हो गया है या ये सामान्य है?
2: नहीं नहीं, वाकई इस वक्त बहुत ही मुश्किल हो गया है। जरूर, हमारे रिश्ते सब पक्षों से अच्छे हैं, अमेरिका के

0: ऐसे में भारत क्या मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है या भारत एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में सामने आ सकता है?
1: देखिए, हम तो हमेशा से ये कहते आए हैं कि लड़ाई का रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से ये कहा था, इट इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। तो यही बात हम समझाते हैं दूसरे देशों को कि भाई लड़ाई झगड़े में मत पड़ो, और कोई मुश्किलात है उनको डायलॉग से सॉल्व करो, डिप्लोमेसी से सॉल्व करो। इंडिया जरूर एक ऐसा देश है जो कि कोशिश कर सकता है, न सिर्फ अकेले बल्कि ऐसे फोरम्स के थ्रू जैसे G20 है जहां भारत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, या ब्रिक्स है, इनके जरिए ये कोशिशें की जा सकती हैं कि दोनों साइड्स, अमेरिका इसराइल एक तरफ और ईरान दूसरी तरफ, इनको समझाया जाए कि आप डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाएं और लड़ाई का रास्ता छोड़ें। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे रेजोल्यूशंस निकल सकते हैं जिसकी वजह से ये लड़ाई खत्म हो और जो सिक्योरिटी ठीक से बन जाए, जिससे ये जो इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स कायम रहे।
0: दयाल जी, जैसा कि अभी आपने संयुक्त राष्ट्र और G20 का जिक्र किया, तो हम थोड़ा सा इसमें और चीजें ऐड कर लें। ब्रिक्स की हम बात कर लें और क्वाड की बात कर लें, अन्य भी कई सारे बहुपक्षीय मंच हैं जो अपने आप में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो क्या लगता है कि इन परिस्थितियों को देखते हुए वैश्विक संस्थाओं में भी सुधार की जरूरत है?
1: देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में सुधार की जरूरत तो बहुत ज्यादा है। अब यूनाइटेड नेशंस की आपने बात की, यूनाइटेड नेशंस जो है उसकी जिम्मेदारी है कि वो पीस फिर से कायम कराए और ये लड़ाई खत्म कराए। लेकिन क्या बात है कि ये यूनाइटेड नेशंस हमेशा ऐसा करने में सक्षम नहीं रहता है, वो कामयाबी नहीं पा पाता है। उसकी वजह है कि यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, वो जो उसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उनके इशारे पे इस तरह से चलती है कि कोई भी परमानेंट मेंबर जो है वो डिसीशन को वीटो कर सकता है। उनकी जो वीटो पावर है वो ग्लोबल पीस के रास्ते में एक अड़चन बनी हो जाए, क्योंकि देखिए, अगर कोई इस जैसे लड़ाई चल रही है अमेरिका और ईरान के बीच, अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कोई ऐसा निर्णय लेता है जो अमेरिका को इंटरेस्ट को नहीं सूट करता, अमेरिका उसको वीटो कर दे। या जैसे रशिया यूक्रेन वॉर है, उसमें आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए, जो रशिया को नामंजूर हो रशिया उसको वीटो कर देगा। तो ये वीटो पावर ऐसी है। और इसके साथ साथ देखिए, ये यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 1945 में की गई थी, तब दुनिया दूसरी थी, भारत एक आजाद मुल्क था ही नहीं। तब से जो है इतने परिवर्तन हुए हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल वैसी की वैसी बनी हुई है। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स होना बहुत जरूरी है, और कुछ ऐसी कंट्रीज जैसे भारत है, जर्मनी है, जापान है, ब्राजील, इन सबको परमानेंट मेंबर्स की तरह उसमें शामिल करना चाहिए और वीटो पावर उनको भी देनी चाहिए, इन सब देशों को। या तो आप वीटो पावर पूरी तरह से हटा दें, और अगर वीटो पावर कुछ देशों के पास है तो भारत के पास क्यों नहीं है? भारत जो है वो दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन के टर्म्स में कंट्री है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो भारत को क्यों नहीं उसमें परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरह उसमें शामिल किया गया? क्यों नहीं वीटो पावर दी गई? हमारे पास इस तरह की शक्ति हो तो जरूर हम दुनिया के जो इस तरह के झगड़े हैं उनको सुलझाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं।
0: दयाल जी, जो बदलते हुए वैश्विक समीकरण है, तो ऐसे में भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की नीति है, इसको आप कितना सफल मानते हैं, और क्या आपको लगता है कि भारत को इसमें भी बदलाव की अब आवश्यकता महसूस हो रही है या होना इसमें चाहिए?
1: देखिए, भारत जो है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी हमेशा अपनाता है, और इस वक्त दुनिया में जो सूरत हाल है उसमें किसी एक के साथ तो हो ही नहीं सकते, इसीलिए हम मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी फॉलो करते हैं। हम सब देशों के साथ अपनी इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप बनाते हैं, और ऐसा ही करना जरूरी है। हमें कभी भी किसी गुट में नहीं शामिल होना चाहिए, हमें अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी, इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी साइड में शामिल हो गए तो उसके सब संकट आपके संकट हो जाते हैं। अगर आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बना के रखते हैं तो आपके लिए यह हमेशा अच्छा होता है। भारत की पॉलिसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टी अलाइनमेंट पे बेस्ड है, और मेरे विचार में ऐसे ही रहनी चाहिए।
0: दयाल जी, जिस तरह से पश्चिम एशिया में लगातार घटनाक्रम बदल रहे हैं, इस साल साल की शुरुआत से अगर देखें, खासतौर से फरवरी से देखें, तो काफी कुछ बदल गया है और लगातार भारत के हितों पर सवालिया निशान खड़े होते रहे हैं। लेकिन भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत की जब हम बात करते हैं तो अपनी स्थिति को लगातार मजबूत बनाने के लिए काम कर रहा है। तो इन दोनों परिप्रेक्ष्य को अगर आप देखें तो भारत की जो सोच

0: से लेकर के, उससे आप किस तरह से देखते हैं?
1: देखिए, भारत जो है वो बिलीव करता है इन सागर डॉक्ट्रिन, सिक्योरिटी फॉर एवरीवन, और जो हमारी पॉलिसी है इंडो पैसिफिक रीजन पे वो इसी पे आधारित है। हम हमेशा चाहते हैं कि सब देशों के जो हित हैं वो बने रहें और किसी को नुकसान ना हो, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल है कि इस रीजन में ये चाइना एक ऐसी कंट्री है जो सबका नाक में दम करके रखे हुए, क्योंकि चाइना जो है वह एक्सपेंशनिस्ट है, चाइना चाहता है उसी का दबदबा रहे, चाइना चाहता है जो सप्लाई चेन्स है वो उसके कब्जे में हो, और इससे दूसरे देशों को नुकसान होता है। तो हम दूसरे देशों के साथ इस तरह से काम कर रहे हैं कि चाइना का ये जो एक्सपेंशनिस्ट रोल है ये रुके और सप्लाई चेन कायम रहे। अभी देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेशल्स का दौरा किया और सेशल्स के साथ एक ऐसे रिश्ते बनाने की कोशिश की कि हम जो वेस्टर्न इंडियन है उसमें अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को मजबूत कर सके। और अभी उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी दौरे पे गए इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, और इन सबके साथ जो रिश्ते बनाने की कोशिश की जा रही वो इस दिशा में कि सप्लाई चेन अच्छी बनी रहे, हमारी जरूरतें वो पूरी कर सके, उनकी जरूरतें हम पूरी कर सके। देखिए, ये बायलैटरल रिलेशनशिप्स ऐसी होती हैं कि दोनों साइड्स को फायदा हो। अब जैसे न्यूजीलैंड है, उसके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और न्यूजीलैंड की पर कैपिटा इनकम अच्छी, वो वहां के लोग रईस हैं और वो अच्छी चीजें खरीद सकते हैं, तो भारत को एक मार्केट मिल रहा है क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स को 100% टैरिफ एग्जेम्पशन मिल रहा है वहां। तो इस तरह से हमने ये कोशिश की है कि इस पूरे क्षेत्र में हमारे जो दूसरे देशों के साथ रिश्ते हों वो ऐसे हो कि उनका भी फायदा हो, हमारा भी फायदा हो। और चीन को यह संदेश गया है कि देखिए, आप जो अपनी मनमानी करने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको ऐसा नहीं करने।
0: दयाल जी, पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति को हम देखें और यदि अमेरिका ईरान जो तनाव है अगर थोड़ा बहुत लंबा खींचता है तो भारत के लिए अपनी रणनीतिक प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, खासतौर पर हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए, हमारे समुद्री व्यापार के लिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था से जो हमारी अपनी जरूरतें पूरी होती हैं वो, और भी तमाम चीजें हैं जो हमारे मानवीय हितों को ध्यान में रख करके हम जिन पर बात करते हैं, खासतौर पर प्रवासी समुदाय और भारतीय नागरिक जो बाहर हैं।
1: देखिए, जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं पूरे रीजन में जो रहते हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, हम उनके हितों में हमेशा कार्य करने की कोशिश करेंगे, ऐसे पॉलिसीज बनाने की कोशिश करेंगे कि उनके हितों पर हम ध्यान रख सकें। और पूरे संकट के दौर में हमने इस बात को सब देशों के साथ ये दोहराया है कि हम अपने एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी के नुकसान को नहीं सह सकते, उनके जो हित हैं वो आप प्लीज कायम रखें। ईरान के साथ भी ये बातचीत हुई, उनको भी ये समझाया है, यूनाइटेड स्टेट्स को समझाया है और गल्फ कंट्रीज को। तो देखिए, गल्फ कंट्रीज को तो जरूरत है हमारे लोगों की, लेकिन अगर वहां पर युद्ध बढ़ता है, ये फैलता है, तो जरूर ये जो हमारी एक्सपैट्रिएट कम्युनिटीज का नुकसान होगा। इसके अलावा देखिए, ये जो हमारी क्रूड ऑयल की सप्लाईज है उधर से आती है, हमें रॉक फॉस्फेट वहां से मिलता है जो हमारे कल्चरल सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जब हमारे इतने अच्छे रिश्ते रहते हैं तो वहां से इन्वेस्टमेंट्स भी आते हैं। अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भारत में बहुत इन्वेस्टमेंट किया है और करता जाएगा, लेकिन अगर वो इस युद्ध में फंस जाएगा तो फिर तो ऐसा नहीं कर सकता, उस पर कुछ रुकावटें आ जाएंगी। तो इन सब वजहों की वजह से हम ये कहते आए हैं कि भाई पीस यहाँ पर स्थापित होना बहुत जरूरी है और हमारा हित इसी में है कि लड़ाई खत्म हो और हमारे जो इंटरेस्ट हैं, चाहे वो ऑयल सप्लाईज के हो, चाहे हमारी वो एक्सपैट्रिएट पॉपुलेशन के हो, या चाहे जो हमारा बायलैटरल ट्रेड इन सब कंट्रीज के साथ उसके संबंध में हो, वो तभी प्रोटेक्टेड रहेंगे जब ये लड़ाई बंद।
0: प्रभु दयाल जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे पश्चिम एशिया संकट के वर्तमान परिदृश्य और वैश्विक प्रभाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत प्रभु दयाल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है eirnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz और ये वक्त है

या ये गीत आपने फिल्म लही राजा से सुना, लता मंगेशकर की आवाज़ में। और अब फिल्म कोरा कागज से ये गीत किशोरदा की आवाज़ में।

0: तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

जी हाँ, अनोखी रात से आपने ये बेहतरीन सा गीत सुना, और इस गीत को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे ये गीत माँ बाप की, बड़ों की दुआओं से भरा हुआ है, क्योंकि कोई भी परिवार हो इस संसार का, वो हमेशा ये चाहता है कि उनकी बेटियाँ, उनके बच्चे हमेशा खुश रहें। और FM गोल्ड भी यही चाहता है कि आप जहाँ रहें और जहाँ पर भी रहें, हमारे साथ रहें और हमारा प्यार बेहतरीन गीत और जानकारी के जरिए आप तक पहुंचता रहे।

0: इसी बेहतरीन संगीत के साथ मैं विल विमलेश फिलहाल इस प्रोग्राम से आपसे अनुमति चाहती हूँ और बस थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे समाचार और फिर से 8:10 पर मधुरिमा में फिर से ढेर सारी बातें ढेर सारे नगमे। फिलहाल वक्त कुछ ही देर बाद समाचार होगा।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।

0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
2: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार, राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एआई संचालित डस्ट पोर्टल 2.0 और मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार ने प्रमुख महिला समृद्धि योजना का आधिकारिक नाम बदलकर दिल्ली लक्ष्मी योजना किया। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रूपये दिए जाएंगे। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया। उद्योग आधारित प्रशिक्षण को विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त डिग्री से जोड़ने के लिए दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय तथा एमईएल ट्रेनिंग एंड असेसमेंट लिमिटेड के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरित दिल्ली संकल्प और एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अब समाचार विस्तार से। राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में एआई संचालित डस्ट पोर्टल 2.0, डस्ट पॉल्यूशन कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की ओर से विकसित ये अत्याधुनिक डिजिटल पोर्टल एआई की सहायता से निर्माण और विध्वंस स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों की वास्तविक समय में निगरानी करेगा। कार्यक्रम के दौरान डस्ट पोर्टल 2.0 का लाइव प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें दिखाया गया कि किस प्रकार एआई निगरानी व्यवस्था को अधिक कुशल, सटीक और प्रभावी बना सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एआई और डिजिटल तकनीक के माध्यम से सरकार अनुपालन प्रक्रिया को सरल, निगरानी को अधिक प्रभावी और एनफोर्समेंट को अधिक पारदर्शी बना रहे हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक निर्माण एजेंसी स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त दिल्ली के निर्माण में सक्रिय भागीदार बने। उन्होंने बताया कि ये पोर्टल निर्माण तथा विध्वंस स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों की एआई की मदद से रियल टाइम निगरानी करेगा।
5: दिल्ली की पॉल्यूशन की समस्या पे एआई एनेबल्ड डस्ट पॉल्यूशन कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट पोर्टल है, जो कि तकनीक की दृष्टि से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दृष्टि से एक बेहतर गवर्नेंस हमें एश्योर करेगा, एक इफेक्टिव मॉनिटरिंग एश्योर करेगा। धीरे धीरे हम ये चलान भी जो है मैनुअल की जगह सीधा इस पोर्टल के माध्यम से ही उनको चलान भेजेंगे। ये इस पर्यावरण को बेहतर करने की दिशा में रहेगा। मैं बधाई देती हूँ डीपीसीसी को, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को।
4: इस अवसर पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत में श्री सिरसा ने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में जितनी भी 500 गज से बड़ी इमारत है, उनकी निर्माण के दौरान निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि धूल मिट्टी को नियंत्रित करने के लिए ये पहला ईआई आधारित पोर्टल है।
6: आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी पोल्यूशन के ऊपर वार करने के लिए डीपीसीसी का पोर्टल 2.0 लॉन्च किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में जितनी भी 500 गज से बड़ी बिल्डिंगें हैं, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी कंस्ट्रक्शन के दौरान। कंस्ट्रक्शन के दौरान वहां पे जो धूल मिट्टी उड़ती है उसको कंट्रोल करने के लिए ये पहली बार एआई एनेबल्ड एक पोर्टल है, जिसके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं।
4: दिल्ली सरकार राजधानी और आसपास के क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की नया सफर योजना लागू करेगी। इस पहल का उद्देश्य दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले कमर्शियल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर उनके स्थान पर साफ सुथरे BS6 या कड़े उत्सर्जन नियमों का पालन करने वाले वाहनों और इलेक्ट्रिक वाहनों को बदलने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अंतर्गत आर्थिक प्रोत्साहन, टैक्स में छूट और स्क्रैप से जुड़े लाभ प्रदान किए जाएंगे। इस स्कीम के अंतर्गत दिल्ली सरकार पात्र नए वाहनों पर 100% मोटर व्हीकल टैक्स में छूट, पात्र पुरानी यूज्ड गाड़ियों की खरीद पर 10 साल के लिए 50% छूट, रजिस्ट्रेशन फीस और स्क्रैप की जा रही पात्र गाड़ियों के लिए रोड टैक्स और फिटनेस पेनल्टी में छूट देने की सुविधा प्रदान करेगी। इस स्कीम से पुरानी कमर्शियल

0: वाहनों के वैज्ञानिक तरीके से स्क्रैपिंग को बढ़ावा मिलेगा। इस स्कीम का कुल बजट 9,585 करोड़ रुपए है। ये स्कीम पूरी तरह से डिजिटल नया सफर पोर्टल के जरिए लागू की जाएगी। ये स्कीम पात्र लाभार्थियों के लिए 2 साल तक खुली रहेगी। इस योजना पर परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार नागरिकों को साफ हवा और ज्यादा मजबूत ट्रांसपोर्ट सिस्टम देने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली सरकार ने अपनी प्रमुख महिला समृद्धि योजना का आधिकारिक नाम बदलकर दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया है। योजना के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस योजना के अंतर्गत 21 से 60 आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को प्रति माह 2500 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। दिल्ली सरकार ने इस योजना को अगले माह रक्षाबंधन के आसपास शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस योजना के लिए पात्रता संबंधी मानक भी तय कर दिए गए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि योजना का लाभ पात्र महिलाओं तक पारदर्शी, सरल और समयबद्ध तरीके से पहुंचे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल एक सामाजिक संकल्प नहीं बल्कि विकसित भारत की आधारशिला बन चुका है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक में योजना की पात्रता संबंधी मानकों पर भी चर्चा हुई। निर्णय के अनुसार योजना का लाभ केवल उसी महिला को मिलेगा जिसका परिवार कम से कम 10 वर्ष से दिल्ली का निवासी हो, लाभार्थी और उसके परिवार के विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। परिवार में आयु के आधार पर सबसे बड़ी महिला ही इस योजना की पात्र होगी तथा एक परिवार से केवल एक महिला को ही इसका लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो महिला पहले से सरकार की किसी पेंशन या अन्य किसी आर्थिक सहायता योजना का लाभ ले रही है वो इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी। इसी प्रकार जिस परिवार के पास 4 पहियों का वाहन होगा उस परिवार की महिला को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऋषु की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के कड़कड़डूमा अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। हुसैन सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत ने ताहिर हुसैन को शत्रुता भड़काने, दंगा, मारपीट, आपराधिक बल प्रयोग और हत्या के आरोपों में दोषी पाया। अंकित शर्मा के पिता रविंदर कुमार ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उनके बेटे की हत्या तत्कालीन आम आदमी पार्टी पार्षद हुसैन और अन्य लोगों ने की थी। 24 मार्च 2023 को अदालत ने हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता आज रोहिणी सेक्टर 9 में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर आयोजित जागरूकता बैठक में शामिल हुए। इस बैठक का उद्देश्य मतदाता सूची के अपडेट की वर्तमान प्रक्रिया के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करना था।
2: विधानसभा अध्यक्ष ने विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों तथा समयबद्ध सत्यापन के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्वच्छ, त्रुटि रहित और अद्यतन मतदाता सूची ही स्वस्थ लोकतंत्र की आधारशिला होती है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की कि वे इस विशेष अभियान के दौरान बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग करें। श्री गुप्ता ने समयबद्ध सत्यापन के महत्व पर बल देते हुए कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो पात्र नागरिक आगामी चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के अवसर से वंचित रह सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने इस अभियान की सफलता के लिए सामुदायिक सहभागिता की आवश्यकता पर बल दिया। श्री गुप्ता ने कहा कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, युवा स्वयंसेवक तथा वरिष्ठ नागरिक इस अभियान की जानकारी को प्रत्येक घर तक पहुंचाने में सहयोग करें। ऋषु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री पंकज कुमार सिंह ने आज द्वारका स्थित पुलिस उपायुक्त कार्यालय में आयोजित जिला स्तरीय कमेटी बैठक में भाग लिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बैठक के दौरान कानून व्यवस्था, जन सुरक्षा, महिला सुरक्षा तथा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर समीक्षा हुई। इसके साथ ही जनहित से जुड़े कार्यों को अधिक प्रभावी, त्वरित और सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। दिल्ली के सहकारिता मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने आज दिल्ली में सहकारिता विभाग के अंतर्गत

0: रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज RCS कार्यालय का दौरा किया। इस दौरान विभागीय कार्यों, योजनाओं तथा भविष्य की कार्य योजना को लेकर अधिकारियों के साथ सार्थक चर्चा हुई। कैबिनेट मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने आज केंद्रीय ऊर्जा तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि इस दौरान दिल्ली के शहरी कायाकल्प, सुलभ आवास योजनाओं और ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे नवाचारों पर चर्चा हुई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय DSEU तथा MEL ट्रेनिंग एंड असेसमेंट लिमिटेड के बीच 5 वर्षों के लिए एक औपचारिक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए गए हैं। इस साझेदारी के माध्यम से उद्योग आधारित प्रशिक्षण को विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त डिग्री से जोड़ा जाएगा। इससे कक्षा 12 के बाद विद्यार्थियों को एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, डिजाइन तथा अन्य रचनात्मक क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर करियर बनाने का अवसर मिलेगा।
1: इस अवसर पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुरूप युवाओं को विश्व स्तरीय अवसर प्रदान करना है तथा दिल्ली को देश की उभरती हुई ऑरेंज इकोनॉमी का प्रमुख केंद्र बनाना है। उन्होंने कहा कि समझौते के अंतर्गत MEL ट्रेनिंग एंड असेसमेंट लिमिटेड पाठ्यक्रम तैयार करेगा तथा विद्यार्थियों को प्लेसमेंट उपलब्ध कराएगा। DSEU परिसर परीक्षाओं और विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त डिग्री प्रदान करने के लिए जिम्मेदारी निभाएगा। श्री सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार की ये पहले समय की आवश्यकता के अनुरूप और विद्यालय स्तर पर प्रशिक्षण, विश्वविद्यालय स्तर की डिग्री तथा उद्योग समर्थित नीति निर्माण के माध्यम से युवाओं को भविष्य के रोजगारों के लिए तैयार करेंगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि समझौते के फलस्वरूप छात्रों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार तथा उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। ऋषु की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: दिल्ली विश्वविद्यालय DU और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के बीच आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर DU कुल सचिव डॉ. विकास गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य दिल्ली विश्वविद्यालय में साइबर अपराध की रोकथाम, साइबर हाइजीन, साइबर जागरूकता, क्षमता निर्माण, शैक्षणिक सहयोग, अनुसंधान, इंटर्नशिप तथा छात्र सहभागिता को बढ़ावा देना है। वडोदरा के नवरचना विद्यालय के छात्रों ने आज दिल्ली विधानसभा का दौरा किया। इस दौरान छात्रों को संसदीय कामकाज, विधायी प्रक्रियाओं और जनसेवा की जिम्मेदारियों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी के मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र में पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हरित दिल्ली संकल्प और एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में मॉडल टाउन क्षेत्र में लगभग 1100 पौधे लगाए गए। मीडिया से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने दिल्ली वासियों से एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पौधा आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, हरियाली और स्वस्थ जीवन देने के संकल्प का प्रतीक है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज ऋषित गर्ग को 56वीं इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। राजधानी दिल्ली में आज दोपहर में उमस भरी गर्मी जारी रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने AI संचालित डस्ट पोर्टल 2.0 और मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार ने प्रमुख महिला समृद्धि योजना का आधिकारिक नाम बदलकर दिल्ली लक्ष्मी योजना किया। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरित दिल्ली संकल्प और एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
3: आ गए सैलरी? नए झुमके?
4: ना, पहले बचत।
3: पहले झुमके
4: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
3: लेकिन झुमकों का क्या,
4: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
5: RBI कहता है
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार।

0: के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि ये दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। ये समझौता दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को आरबीआई की स्वैप सुविधा योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। इस दौरान पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रूपये की परियोजनाओं का शुभारम्भ किया गया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इस एक्सप्रेस वे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है। और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
2: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3 लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा। ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी और सैनिक स्कूलों के बारे में जानकारी दी। एनसीसी के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कैडेट विनियम कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की उत्कृष्ट पहल बताया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान सहित एनसीसी की सामुदायिक सेवा पहलों की भी प्रशंसा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था, व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन के स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर हैं। भारत और जापान ने स्वतंत्र, मुक्त और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान की टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक विचार विमर्श किया। भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन की लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर ही सिमट गई। भारत ने दूसरी पारी में 7 विकेट पर 341 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आर एस रघु। कॉमर्स एंड

लगता है मधुरिमा का। मधुरिमा में मैं विमलेश स्वागत करती हूँ आप सभी का। और आज राग बिहाग का जिक्र होगा इस प्रोग्राम में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये प्रोग्राम राग पर आधारित है और राग पर आधारित गीत इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं। तो राग बिहाग हिंदुस्तानी शास्त्र संगीत का एक अत्यंत मधुर और लोकप्रिय राग है। ये बिलावल थाट से उत्पन्न हुआ है और अपनी श्रृंगार रस प्रधान प्रकृति के लिए काफी जाना जाता है। आइए सुनते हैं इस गी राग पर आधारित ये गीत।

0: बाते।
1: जी हाँ, अभी आपने फिल्म आपकी कसम से गीत सुना जो राग बिहाग पर आधारित था। राग बिहाग की जो जाति है ओड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर ग और संवादी स्वर नी है। गाने का जो समय है रात्रि का दूसरा पहर है।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं मधुरिमा विमलेश के साथ, और आज राग बिहाग का जिक्र है इस प्रोग्राम में। राग बिहाग में जो वर्जित स्वर हैं वो रे और ध हैं। अगर हम इसके आरोह की बात करें तो स ग म प नि सा, और अवरोह स नि ध प म ग म म ग रेसा है।

0: जी हाँ, अब इस प्रोग्राम को यहीं समेटने की बारी आ चुकी है, लेकिन जाते जाते हम आपको बताना चाहते हैं कि राग बिहाग से मिलते जुलता जो एक राग है, वो राग है राग यमन कल्याण थाट। इसके कई अन्य प्रकार भी प्रचलित हैं, जैसे नट बिहाग, मारू बिहाग और बिहाग घड़ा। अगर हम इस राग के आरोह के मध्य में उठाव करते हैं और कभी कभी तीव्र मध्यम का प्रयोग करते हैं तो इस राग का सौंदर्य और अधिक और बढ़ जाता है। और अगर हम इसके वादी संवादी के महत्व की बात करें तो गंधारगा और निषादनी की संगति इस राग को बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। फिलहाल इसी जानकारी के साथ मैं विमलेश इस प्रोग्राम से फिलहाल के लिए अनुमति चाहती हूँ और बस कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार। चलिए, अपना बहुत ख्याल रखना है आपको। फिलहाल के लिए नमस्कार।
1: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला कल से बर्मिंघम में शुरू होगी। यानिक सिनर ने लगातार दूसरी बार विंबलडन पुरुष सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया और जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट

0: कल से टोक्यो में शुरू होगा। तो अब कार्यक्रम को शुरू करते हैं सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर इंग्लैंड पर 270 रन की शानदार जीत दर्ज करते हुए इतिहास रच दिया है। भारत ने इस मैदान पर खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में एक यादगार जीत दर्ज की।
1: भारत की बेटियों ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत मेजबान इंग्लैंड को 270 रन के बड़े अंतर से पस्त करते हुए एक यादगार जीत दर्ज की है। भारत ने मैच की पहली पारी में 285 रन बनाए, जिसमें स्मृति मंधाना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर की 58 और दीप्ति शर्मा ने 57 रनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके बाद पारी आई भारतीय गेंदबाजों की, जिन्होंने इंग्लिश टीम की पूरी बल्लेबाजी को महज 170 रन पर समेट दिया। एमी जॉन्स ने मेजबान टीम के लिए सर्वाधिक 52 रन बनाए, जबकि भारत की तरफ से क्रांति गौड़ 5 विकेट लेते हुए लॉर्ड्स के मैदान पर 5 विकेट हॉल हासिल करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। भारत ने पहली पारी के आधार पर इंग्लैंड पर 115 रन की बढ़त हासिल की। इसके बाद फिर भारत ने अपनी दूसरी पारी में शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और स्कोर बोर्ड पर 7 विकेट खोकर 341 रन चढ़ाए। इसके बाद भारत ने अपनी पारी घोषित कर दी। इस पारी का मुख्य आकर्षण रहा यास्तिका भाटिया का शानदार शतक, जिन्होंने 113 रन बनाए। वे लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली महिला बल्लेबाज बनी। उनके अलावा स्मृति मंधाना ने 70 रन और ऋचा घोष ने नाबाद 50 रन की पारी खेली। इंग्लैंड की तरफ से सोफी एक्लेस्टोन ने 5 विकेट निकाले। जीत के लिए 457 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेजबान टीम अपनी दूसरी पारी में सिर्फ 186 रन पर ढेर हो गई। एमी जोन्स ने 54 और सोफी एक्लेस्टोन के 50 रन के अलावा कोई भी इंग्लिश खिलाड़ी भारतीय गेंदबाजों के सामने नहीं टिक सका। इस पारी में भारत के लिए स्नेह राणा ने सर्वाधिक 4 विकेट निकाले, जबकि सयाली सदघारे, क्रांति गौड़ और दीप्ति शर्मा ने 2-2 विकेट हासिल किए। शानदार गेंदबाजी के लिए क्रांति गौड़ को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। देश विदेश से इस ऐतिहासिक जीत पर भारतीय टीम को बधाइयां मिल रही है। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो इस जीत के बाद इस टीम का हर एक खिलाड़ी इस लम्हे को, उस गेंद को अपने दिल में सजो के रखेगा जो शायद आखिरी गेंद थी और जिसने भारत की जीत की पताका पूरे विश्व में लहराई।
2: After 142 years of test match cricket in the men's game, we've witnessed the first ever in the women's, and it has been a comprehensive win by India. They win by 171 runs. They continue their magnificent form in this format against England.
0: शायद इस गूंज ने कुछ धुंधली किया होगा विश्व कप, T20 विश्व कप के पहले ही दौर में बाहर होने के बाद भारतीय महिला टीम की निराशा को। और अब रुख करते हैं भारतीय पुरुष टीम का। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला कल खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 बजे से बर्मिंघम के एजबेस्टन क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।
3: भारतीय टीम इंग्लैंड के साथ कल से शुरू हो रही 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के लिए तैयार है। 2020 श्रृंखला में मिली निराशाजनक हार के बाद भारतीय टीम एक दिवसीय मुकाबलों में हिस्सा बराबर करने के इरादे से उतरेगी। शुभमन गिल की कप्तानी में एक दिवसीय फॉर्मेट में भारतीय टीम अधिक मजबूत नजर आ रही है। हिटमैन रोहित शर्मा और विराट कोहली के आने से टीम को नई मजबूती मिली है। मध्यक्रम की जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन और अक्षर पटेल पर होगी। वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर और नीतीश कुमार रेड्डी ऑलराउंडर की भूमिका में नजर आएंगे, जबकि जसप्रीत बुमराह की वापसी टीम में गेंदबाजी को नई ताकत देगी। उनके साथ प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और गुरनूर बरार को चुना गया है। स्पिन की जिम्मेदारी कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई पर होगी। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत का पलड़ा भारी है। दोनों देशों के बीच अब तक कुल 110 एक दिवसीय मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 61 में भारत ने और 44 में इंग्लैंड ने जीत दर्ज की है। 2 मुकाबले टाई रहे हैं, जबकि 3 मैचों का नतीजा नहीं निकल सका। ऐसे में भारत की नजर एक दिवसीय श्रृंखला में शानदार जीत दर्ज कर 2020 की हार का हिसाब चुकता करने पर होगी। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो एक तरफ भारतीय क्रिकेट टीम की नजरें होंगी कि किस तरह उस 0-2 और 4-0 की हार को मिटाया जाए, और खेल प्रेमियों की नजरें होंगी कि उनके फेवरेट विराट कोहली और रोहित शर्मा वापस मैदान पर उतरेंगे, और मैदान पर उतरेंगे भारतीय पेस बैटरी के सबसे घातक खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह। तो कह सकते हैं कि एक मजबूत संयोजन जिसमें युवा खिलाड़ी और अनुभवी खिलाड़ी होंगे और तैयारियों का एक ही रूप होगा और नजर होगी 2027 के विश्व कप के लिए अपनी तैयारियों को कैसे अंतिम रूप दिया जाए। और अब रुक करते हैं इंग्लैंड का, जहां विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का समापन हो गया है और जानिक सिनर ने लगातार दूसरी बार विंबलडन पुरुष सिंगल्स

0: खिताब अपने नाम कर लिया है। इटली के इस युवा खिलाड़ी ने फाइनल मुकाबले में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेरेफ पर 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 से शानदार जीत दर्ज की।
1: इटली के यानिक सिनर विंबलडन पुरुष सिंगल्स के नए चैंपियन बन गए हैं। सिनर ने ज़ेरेव पर लगातार 10वीं जीत दर्ज करते हुए अपने करियर का 5वां ग्रैंड स्लैम जीता। इसके साथ ही सिनर विंबलडन पुरुष सिंगल्स के खिताब का बचाव करने वाले 10वें खिलाड़ी भी बन गए हैं। विंबलडन 2026 के खिताबी मुकाबले का पहला सेट बेहद रोमांचक रहा। सिनर और ज़ेरेव के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन ज़ेरेव टाई ब्रेकर में सेट 7-6 से अपने नाम करने में सफल रहे। इसके बाद सिनर ने वापसी करते हुए दूसरा सेट 7-6 से अपने नाम कर स्कोर 1-1 की बराबरी पर ला खड़ा किया। तीसरे सेट में भी कड़ा मुकाबला देखने को मिला, पर सिनर ने 6-3 से सेट जीत लिया। चौथे सेट में सिनर ज़ेरेव पर हावी दिखाई दिए और सेट को 6-4 से जीतने के साथ ही विंबलडन 2026 के पुरुष सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया। आइए सुनते हैं इस ऐतिहासिक जीत के बाद नए विजेता सिनर ने क्या कहा।
2: अमेजिंग साशा डिड, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद यू एंड योर होल टीम एंड फैमिली। यू रीच्ड वन ऑफ योर गोल्स, योर मेन गोल्स, विनिंग ग्रैंड slams and you made it happen in Paris today. You were so close. If you play like this, I'm very very sure you're gonna have this one at home as well. So amazing, keep going. I know another goal is to for you to become number one in the world.
1: वहीं दूसरी तरफ ज़ेरेव ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाया और अंत तक मुकाबले में लड़ते नजर आए।
3: Well, first of all, Yannick, I don't really like you anymore. To be fair, I lost to you 9 times in a row. No, but first of all, congratulations to Yannick. He showed once again why he's the best player in the world. It was great to share the center court with you on finals weekend. It's a great honor to be here. Unfortunately, I didn't go my way, but congratulations to you first of all.
1: और इस मुकाबले के साथ ही साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन ओपन समाप्त हो गया है। अब वर्ष का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम अमरीकी ओपन 24 अगस्त से न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो अब एक ग्रैंड स्लैम समाप्त हुआ और अगले की तैयारी है, लेकिन जिस तरह का खेल इन दोनों खिलाड़ियों ने दिखाया, शायद हर दर्शक तालियां बजाते हुए नजर आ रहा था उस समय मैदान पर। और एक अच्छी राइवलरी आने वाले समय के लिए तैयार होती हुई इस टूर्नामेंट में, जहां एक तरफ ज़ेरेव हैं जो जूझते हैं, हर मैच को अंत तक ले जाते हैं, और इसी तरह उन्होंने फ्रेंच ओपन का भी खिताब जीता था। और देखना होगा कि इस साल के अंतिम ग्रैंड स्लैम का खिताब किस खिलाड़ी के सर सजता है। और अब रुक करते हैं नीरू डांडा का, जिन्होंने इटली के लोनाटो में ISSF निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। विजय कीर्तिमान स्थापित करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। इस अवसर पर नीरू ने कहा कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो आज तक कभी नहीं हुआ था।
4: मुझे ऐसा लग रहा है बहुत स्पेशल दिन था पूरी इंडियन शूटिंग टीम के लिए और इंडिया के लिए, स्पेशली मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। और दूसरा ये था कि हमने एक बैरियर ब्रेक किया है जो आज तक नहीं हुआ था। तो ये चीज मेरे को शुरू से ही लग रही थी कि ये करना है। मैं पिछले 3 बार से फाइनल को मिस कर रही थी, हर एक बार बाहर हो रही थी, कभी शूट ऑफ में, कभी बिग नंबर से बाहर हो रही थी। तो उसको काफी ये बैरियर ब्रेक हुआ तो अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है और फीलिंग नेक्स्ट लेवल है।
0: जब नीरू से पूछा गया कि इतने हाई प्रेशर मैच से पहले वो कैसा महसूस कर रही थी, तो नीरू का जवाब बड़ा मजेदार था। उन्होंने कहा कि वो मैच से पहले ये मानकर उतरी थी कि वे चैंपियन हैं।
4: प्रेशर तो नहीं होता, आप जहाँ खड़े हो ना वो चैंपियन थे, लेकिन उस दिन तो मैं भी चैंपियन हूँ अगर चैंपियन के साथ खड़ी हूँ। मेरा तो वही माइंडसेट था कि मैं चैंपियन हूँ। और मैंने जैसे हमारा अनाउंस होता है, लाइन में खड़े होते हैं सभी शूटर्स, तो उस टाइम स्ट्रेटेजी मेंटली ये किया था मैंने, सबसे पहले ये कर दिया था ऐसे लाइन में और फिर विक्ट्री बना दी थी।
0: तो एक चैंपियन खिलाड़ी की तरह वो मैदान पर उतरी और एक चैंपियन बनकर ही वापस लौटी। और ऐसे ही कुछ चैंपियन लौटे हैं चीन के ओर्डोस से। भारत ने इस प्रतियोगिता में एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान कल 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल थे। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
5: चीन के ओर्डोस में भारतीय एथलीट अपने शानदार प्रदर्शन से एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में अपनी छाप छोड़ते नजर आए। भारत के लिए आनंद सिंह ने पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता, जबकि 4x400 मीटर के महिला और मिक्स्ड वर्ग में भी भारत ने स्वर्ण पदक जीता। शिवाजी पराशर ने 5000 मीटर और शिवाजी परशुराम ने 10000 मीटर में रजत पदक अपने नाम किया, जबकि भारतीय पुरुष टीम ने 4x400 रिले और महिला टीम ने 4x100 मीटर रिले में रजत पदक जीते। अगर कांस्य पदक की बात की जाए तो शिवम लोहाकरे ने भाला फेंक में, भरतप्रीत सिंह ने चक्का फेंक में, प्रिया ने महिलाओं के चक्का फेंक में, अभय सिंह ने 200 मीटर रेस, शवांगी ने

0: मीटर बाधा दौड़, शकील ने पुरुषों की और भुवनेश्वरी ने महिलाओं की 800 मीटर रेस में कांस्य पदक जीता। प्राची देवकर ने महिलाओं की 3000 मीटर स्टेपल चेज स्पर्धा में और विनोद सिंह ने 5000 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय टीम 3 स्वर्ण सहित 16 पदकों के साथ प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रही। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
1: खासकर बात अगर आनंद की जाए, जो जेवलिन में भारत की एक नई आस बनकर उभरे इस युवा खिलाड़ी ने अंडर 23 वर्ग में खेलते हुए पहली बार 80 मीटर का बैरियर इस वर्ग में पार किया, तो कह सकते हैं कि जेवलिन का एक बहुत अच्छा फ्यूचर भारत में पनपता हुआ। और इसके साथ ही तमाम खिलाड़ियों ने अपना पर्सनल बेस्ट देते हुए पदक अपने नाम किए हैं। पहले ओडिशा, उसके बाद चीन का ऑर्डोस, जहां भारतीय खिलाड़ी रोज नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब रुक करते हैं मुक्केबाजी का, जहां भारतीय खिलाड़ियों ने कई और नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन आज भी जारी है। अंडर 23 वर्ग में कल 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश किया था, जिसमें से 5 महिला और 3 पुरुष मुक्केबाज थे। इनके फाइनल मुकाबले अब खेले जाएंगे, जहां वो स्वर्ण पदक के लिए दमखम आजमाते हुए नजर आएंगे। और आज अंडर 19 वर्ग के सेमीफाइनल खेले जा रहे हैं। महिला वर्ग में अब तक 8 महिलाओं खिलाड़ियों ने फाइनल के लिए प्रवेश कर लिया है, जहां पर वो स्वर्ण पदक के लिए दमखम आजमाएंगी। इन खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो अंडर 19 वर्ग में 45 से 50 किलोग्राम वर्ग में गुंजन ने, 51 किलो वर्ग में चंद्रिका पुजारी ने, 54 किलोग्राम वर्ग में जॉयश्री चिरोम, 57 किलोग्राम वर्ग में प्राची, 60 किलो वर्ग में चाहत, 75 किलो वर्ग में अंशिका, और हैवी वेट कैटेगरी की बात की जाए तो 80 किलोग्राम और उससे अधिक के वर्ग में मेघा ने, और 81 किलोग्राम और उससे अधिक के वर्ग में प्राची टोकस ने फाइनल में जगह बना ली है, जहां पे ये खिलाड़ी स्वर्ण पदक के लिए मुकाबले करते नजर आएंगे। अगर पुरुषों के वर्ग की बात की जाए तो लड़कों के सेमीफाइनल मुकाबले इस समय खेले जा रहे हैं जकार्ता में, और इन स्वर्ण पदक और रजत पदक के अलावा 7 खिलाड़ियों ने अंडर 23 वर्ग में सेमीफाइनल में पहुंचकर कांस्य पदक भी हासिल किए। और अब मुक्केबाजी के बाद रुख करते हैं बैडमिंटन का, जहां पर जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट कल से शुरू हो रहा है, जहां कई दिग्गज खिलाड़ी एक बार फिर एशिया कप से पहले, एशियन गेम्स से पहले अपना दमखम आजमाते हुए नजर आएंगे, जिसमें सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और पीवी सिंधु जैसे भारतीय खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे।
2: सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की स्टार पुरुष डबल जोड़ी जापान ओपन में भारत की अगुवाई करेगी। सात्विक कंधे की चोट के कारण जून में इंडोनेशिया ओपन से हट गए थे। पहले दौर में उनका मुकाबला डेनमार्क के डेनियल लुंडगार्ड और मैट्स वेस्टरगार्ड से होगा। सिंगल्स में भारत का दारमदार एक बार फिर लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी पर टिका होगा। इस साल की शुरुआत में ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले लक्ष्य जापान की कोकी वातानाबे के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। आयुष को अपने पहले मुकाबले में थाईलैंड के कुनलावत वीटी डसर्न के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सिंधु महिला सिंगल्स में मलेशिया की वोंग लिंग चिंग से भिड़ेंगी, जबकि उन्नति हुडा अपने पहले मैच में चीनी ताइपे की वांग यू हुसुन का सामना करेंगी। हरिहरन, अमसा करुणन और एमआर अर्जुन पुरुष डबल्स के पहले दौर में चीनी ताइपे की लू झे हुई और यांग पो ह्यूसान का सामना करेंगे। ध्रुव कपला और तनिषा क्रास्टो तथा रोहन कपूर और राधविका शिवानी गड्डे की मिक्स डबल्स जोड़ी भी इस टूर्नामेंट में अपना भाग्य आजमाएंगी। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो एक और बैडमिंटन टूर्नामेंट तैयार है, यहां से खिलाड़ियों की नजर होगी कि आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स जहां पे एशियन गेम्स हैं और कॉमनवेल्थ जैसी प्रतियोगिताएं होनी है, उसके पहले अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाए और तमाम खिलाड़ी जो उन खेलों का हिस्सा होंगे, जैसे सात्विक, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी जो एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में आए, आयुष शेट्टी पे भी काफ़ी लोगों की नज़रें रहेंगी, जिन्होंने पिछले कुछ समय में अपने खेल से काफ़ी प्रभावित किया है मैदान में और मैदान के बाहर भी लोगों को। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, कल तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी, व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% की वृद्धि के साथ 232 अरब डॉलर से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को

2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमरीका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशिया अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमरीका की व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था, व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन की स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर हैं। भारत और जापान ने स्वतंत्र, मुक्त और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान की टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। वियतनाम के फु कोक द्वीप के पास नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात 9:30 बजे पहुंचेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4N को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। ताहिर हुसैन सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत ने ताहिर हुसैन को शत्रुता भड़काने, दंगा, मारपीट, आपराधिक बल प्रयोग और हत्या के आरोपों में दोषी पाया। अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की हत्या तत्कालीन आम आदमी पार्टी पार्षद हुसैन और अन्य लोगों ने की थी। 24 मार्च 2023 को अदालत ने हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश प्रतिभा नारायण ने आरोपियों को 27 जुलाई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। ये कानून देश के नागर विमानन ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने

0: जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, लखनऊ हरदोई राजमार्ग के एक हिस्से को 4 लेन का बनाने का कार्य का उद्घाटन तथा लखनऊ में एक फ्लाईओवर की आधारशिला रखना शामिल है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है, और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही हैं, और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: श्री गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
2: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3 लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा, ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
3: 63 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 45 मिनट तक रह जाने की उम्मीद है। इस पर टोल 275 रुपए होगा और दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। AI आधारित गति नियंत्रण प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है और इस पर कोई बैरियर नहीं है। इससे पहले अपने दौरे पर लखनऊ पहुंचे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक आवास पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और राज्य में चल रही और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में परिचालन से होने वाले राजस्व में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में BSNL की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी।
4: Provisionally, we're looking at a 10% increase.
5: प्रारंभिक तौर पर हम 2025-26 की पहली तिमाही की तुलना में 2026-27 की पहली तिमाही में आय में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। पिछले वर्ष की पहली तिमाही में ये लगभग 4000 करोड़ रुपए थी। इस वर्ष की पहली तिमाही में हमने 4418 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। ये लगभग 10% की बढ़ोतरी है। ये पूरी तरह से सेवाओं से प्राप्त आय है, इसलिए इसमें अन्य आय शामिल नहीं है।
4: अदर ऑपरेटिंग इनकम इज नॉट इंक्लूडेड।
0: इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
6: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88 अरब 76 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले

0: की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: नागालैंड के चुमो केदिमा जिले के शुखोबी के पास खोप नाला में एक संदिग्ध आईईडी विस्फोट में आज असम राइफल्स के एक जवान की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। पुलिस महानिदेशक रूपेन शर्मा ने बताया कि अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इस बीच नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य कायरतापूर्ण कृत्य बताया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक जहाज नहीं गुजरा है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इनमें वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्यवाही ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमले के जवाब में की गई। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ईरान द्वारा संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने की निंदा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पिछली रात समझौते का उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने रात भर चले हमलों में ईरान के उपकरणों को नष्ट कर दिया है। इससे पहले ईरान ने अमरीकी हमलों की निंदा करते हुए अमरीका पर जलडमरू मध्य में सुरक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप करके वैश्विक वाणिज्यिक जहाजों के आगमन को बाधित करने का आरोप लगाया था। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाजों और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। मौसम विभाग ने बिहार और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी कल तेज वर्षा हो सकती है। असम के कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक साप्ताहिक कार्यक्रम में जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के संयुक्त सचिव सुमंत नारायण कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India and US engage for balanced and commercially meaningful trade pact, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, dismisses media reports of deadlock in trade talks. India's total exports jumps over $232 billion, registering growth of 11.37% during first quarter of current fiscal. Former AAP leader Tahir Hussain and four others convicted for killing of IB officer during 2020 Delhi

0: traffic. So I think that what is happening is that there are concerns whether the region will slide into even a bigger scale conflict. And that would certainly impact the passage of oil, or for instance, rock phosphate, which is imported by India from this region. And that would impact a whole range of things, including, of course, infrastructure development in a host of countries. I think that what is transpiring is that direct hits on U.S. infrastructure in the Gulf region are increasing the chances of the conflict escalating further, because these American bases guard critical energy choke points. The risk of extending transit halts has triggered instant panic in global energy and trade markets, driving up crude prices. So I think that if things go on in this manner, we will be witnessing a further slide down.
1: So, Ambassador Dayal, your answer brings me to my next question. And we all have witnessed that there are attacks on American military installations in the region. And the countries which are not a part directly involved in the conflict are facing the consequences of it. So how has this situation led to a pressure in the region?
0: Well, things are looking increasingly more dangerous. The attacks on American military installations in the Middle East significantly alter the warfare dynamics, particularly because it shifts the theater of war from a localized conflict to a more volatile regional one. And what is happening is that the boundaries of deterrence are being tested, and the security architecture of the region has come into open question. Let me say that direct hits on the U.S. infrastructure have, in fact, elevated the likelihood of a massive American counteroffensive. And this reduces, of course, the time for crisis diplomacy. As I said earlier, these bases guard critical energy choke points, and therefore the risk of extended attacks on them triggers serious threats to the global energy markets, particularly because all this drives up crude oil prices.
1: Ambassador Dayal, now I would like to move to a different angle of the entire conflict. We saw that Iran has actually bid farewell to their supreme leader Ayatollah Khamenei last week, and India was also represented. So in your opinion, do you feel that Iran was waiting? Because a number of countries did participate and did represent themselves at the funeral of Ayatollah Khamenei. So do you feel that Iran was actually waiting to get over with the funeral to begin the next phase of the conflict?
0: I think you are right in pointing out that Iran waited for the funeral to get over before escalating the conflict. No doubt, Iran wanted a funeral which it thought would be befitting the supreme leader. And there were a number of foreign dignitaries who were present, including, of course, representatives from India, not just the official delegation. So the Indian delegation was very prominent, but at the same time, there were a whole host of other delegations which were present. And certainly, the Iranians didn't want the conflict to break out at that time. So significantly, once the main ceremonies were over, this process restarted of escalation. Iran attacked the three commercial vessels, and then the United States retaliated in a big way, and what we have witnessed started taking place. That is to say, a very rapid escalation of the conflict again.
1: Also, I would like to understand from you, because we spoke about India and Indian delegation being present in Iran for the funeral. So India has traditionally maintained strong relations with Iran, Israel and the countries in West Asia. So how challenging is it going to be for New Delhi to maintain this strategic balance during the period of intense conflict?
0: I think it's a very big challenge for India, because there are a number of reasons why such an escalation of the conflict would hurt our interests. I referred earlier to the presence of a large expatriate population. We have a big diaspora there. And of course, people always come first in diplomacy. So we have to protect the interests of our diaspora. Then, of course, there are issues like the supply of crude oil, the supplies of LNG, then rock phosphate, which we need for our agriculture, our bilateral trade with all the Gulf countries. All this suffers in a very big way with any escalation of the conflict. Then, of course, there is this other larger global question that, you know, the disruption of peace anywhere becomes a threat to peace everywhere. We could have a situation where things go out of control. There is, again, an escalation involving more and more countries. So it is always better to try and cap the conflict, to try and end the conflict. And this is what India is attempting to do. Of course, our efforts are constrained because of factors which are beyond control. The US-Iran hostility on the one hand, and then again, Israel's hostility with Iran on the other. These are very serious complications. And because of them, the situation is becoming increasingly more dangerous. But nonetheless, we are very hopeful that both sides can be brought to the table, and we are fully encouraging the countries which are trying to mediate, such as, for instance, Qatar and Oman. We want them to continue their efforts, and we do want that the United States and Iran sit down at the diplomatic table and try and resolve this conflict.
1: Also, I would like to understand from you that Prime Minister Narendra Modi concluded his three-nation tour last Saturday, and he visited Indonesia, Australia and New Zealand, and the countries where he visited, his trips were very successful. He had deep engagements with the leaders over there. So in the current geopolitical situation, how do you see India's diplomacy with the world, with the other countries?
0: India's diplomacy is based on the principle of strategic autonomy and multi-alignment. We do not want to align ourselves with any one particular side. We want to have good relations all around. And this is why Prime Minister Modi has been visiting a whole host of countries. And the effort on his part is to strengthen our relations with all these countries. Now, since you referred to his recent tour of Indonesia, Australia and New Zealand, let me mention that this is a very important arc of trust. And this arc is in a very important region, the Indo-Pacific region, where India's interests are being impacted adversely by Chinese expansionism. But at the same time, the interests of all these countries in the region, including, of course, Australia, Indonesia, and New Zealand, they are also being adversely impacted by Chinese policies. China has become a threat to supply chains. China wants to monopolize the resources that are available for its own good. But then that has an adverse impact on other countries. And that's why it's important that India strengthens its relations with the countries of the region, which is what we are trying to do. And it's not just in the eastern part of the Indo-Pacific region, but also in the western part. So India's relations with all the countries of the Indo-Pacific region are aimed at strengthening not only our bilateral relations, but also the maritime aspect, because we are keen to collaborate with all these countries in strengthening our cooperation in the maritime domain so that we are able to ward off any threats towards supply chains that are arising.
1: Ambassador Dayal, you gave us a very lucid explanation of the ongoing conflict, and you delved deep into the reasons behind it and the future that is going to be from this conflict henceforth. Thank you so much for sparing your valuable time and joining us for Spotlight tonight.
0: Thank you, Deeksha. Thank you so much for inviting.
2: You were listening to a discussion on West Asia crisis, evolving situation and global impact. The participants were Prabhu Dayal, former ambassador, and Deeksha Saxena, Akashvani correspondent.
3: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। अच्छा, नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। एक पुरानी कहावत है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ये पंक्ति पानी के पर्यायवाची अर्थों के साथ साथ जल के अप्रतिम महत्व को भी दर्शाती है। हमारे देश में विशाल भूमिगत जल भंडार मौजूद है, लेकिन हाल के दशकों में इन संसाधनों को अत्यधिक दोहन, घटती गुणवत्ता, सीमित विनियमन के कारण बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ा है, जिससे भविष्य में जल की उपलब्धता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। बढ़ते शहरीकरण, वर्षा के बदलते पैटर्न और घटते भूजल स्तर के साथ सवाल उठ खड़ा हुआ है कि हम भविष्य के लिए जल को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। आज बचाया गया पानी का हर बूंद भविष्य के लिए सुरक्षा कवच है। हमारे देश की जल सुरक्षा केवल बड़े बांधों या नदियों पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि प्रत्येक नागरिक अपने घर में वर्षा जल का प्रबंधन कैसे करता है। वर्षा जल संचयन प्रणाली अपनाकर जहां पानी के लिए नगरपालिका की आपूर्ति पर निर्भरता घटाई जा सकती है, वहीं पर्यावरण संरक्षण में भी सक्रिय योगदान दिया जा सकता है। बढ़ते भूजल संकट ने प्रभावी प्रबंधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। वर्षा जल संचयन के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं चलाई हैं। आज हम जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जल शक्ति मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुमंत नारायण जी। स्टूडियो में आपका स्वागत है।
4: धन्यवाद मैडम।
3: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। नंबर है 2331-0481, 2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत में सुमन जी, हम ये जानना चाहेंगे कैच द रेन के बारे में। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में जल संचय की अपील की थी लोगों से और कहा था कि वर्षा का जो बूंद बूंद जो है वो हमें बचाना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस अभियान के बारे में?
4: धन्यवाद मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक बार फिर से कैच द रेन की इंटेंसिफाई करने के लिए, इसको एक मास मूवमेंट बनाने के लिए सबसे अपील किया है। उन्होंने हमको पांच बिंदुओं पे एक्शन लेने के लिए अपील भी किया है कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रत्येक घर में, समाज में, वर्क प्लेस में अपनाएं। दूसरा उन्होंने कहा है कि रिचार्ज पिट को, रिचार्ज शाफ्ट को अप्रोप्रिएट जगह पे इंस्टॉल करा जाए। अपने हमारे ट्रेडिशनल बॉडीज हैं जैसे बावलीज होती थी, कुएं होते थे, उनको रिस्टोर किया जाए। इसी क्रम में ये भी कहा गया है कि क्या हमारे जैसे पुराने तालाब हैं या वाटर रिजर्वॉयर्स हैं जिनमें सिल्ट जमा होने से उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है, तो क्या उस कैपेसिटी को हम डीसिल्ट करके उनकी कैपेसिटी को रिस्टोर करें ताकि अधिक से अधिक वहां पे मॉनसून का जल एकत्रित हो सके। और अंत में मैक्सिमम जितना हम वृक्षारोपण कर सकें ताकि इन वाटर रिटेंशन एरियाज के निकटतम जितना ग्रीन कवरेज बढ़ेगी उतना ही जल संरक्षण भी अधिक होगा।
3: हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिद्वार से रवि जवालिया जी। रवि जी, अपना सवाल पूछिए।
5: हाँ जी, नमस्कार मैम।
3: नमस्कार
5: जी, और विशेषज्ञ को भी मेरा नमस्कार।
4: नमस्कार रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: हाँ सर, आप कैसे हैं सर?
4: मैं ठीक हूँ रवि, आप बताएं। आप तो गंगा नगरी में हैं, आप तो गंगा की नगरी से बोल रहे हैं।
5: जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना, हरिद्वार गंगा की नगरी है, गंगा पवित्र नदी है राष्ट्र में। मैं जानना चाहता हूँ कि वर्षा का जल बचाने के लिए एक आम नागरिक उसमें किस प्रकार से अपना योगदान दे सकता है सर?
4: रवि जी, आपने तो जैसे मेरे मन की बात छीन ली, जैसे मैं सबको इस प्रोग्राम के माध्यम से सबको बताना ही चाहता था। और यदि मैं सबसे पहले बताऊं, हम लोग आप रवि जी कहाँ रहते हैं? आपकी कॉलोनी है, आपका अपना घर है, कैसे?
3: हमारा संपर्क इनसे टूट गया, हालांकि ये हमारी बात सुन पा रहे हैं।
4: ओके, सो मैं ये मानता हूँ कि रवि जी किसी कॉलोनी में रह रहे हैं, एक अपार्टमेंट में हैं। तो रवि जी, यदि आपका ऐसा है तो इस कॉलोनी में कम्युनिटी बेस्ड प्रत्येक घर में, जैसे हमारे वर्षा हुई, सारी छतों पे पानी एकत्रित होता है, क्या हम उसको पाइप के माध्यम से एक रिचार्ज पिट, एक कॉमन एरिया में गड्ढे खोद के, मे बी 3x3x3 का गड्ढा खोद कर उसमें कुछ ग्रेवल और सैंड टाइप से डाल सके ताकि जल सभी छतों से जो बहे वो व्यर्थ होने के अपेक्षा में उस गड्ढे में एकत्रित हो जाए ताकि धीमे धीमे वो भूजल को भी बढ़ा सके?
3: भूजल का स्तर इससे बढ़ता है और भूजल का जो स्तर गिर रहा है उसके लिए बहुत जरूरी है कि वर्षा जल संचयन किया जाए

0: तो क्या जो आम आदमी के लिए आपने जो बात बताई कि वर्षा जल का संचयन किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी और कितना खर्च आएगा अगर हम वर्षा जल संचयन करना चाहें अपने घर की छतों पर। तो
1: थैंक यू मैडम। और इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे बचपन में हम लोग सर्वप्रथम पहले कहते थे कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए
0: जी।
1: कहते थे पहली बारिश से जो धूल निकल जाए, धूल मिट्टी निकल जाए, उसके पश्चात नहाना चाहिए। उसी तरह से जैसे हमारी छतों पे अगर धूल मिट्टी है तो फर्स्ट फ्लश जो अंग्रेजी में कहा जाता है, वो फर्स्ट फ्लश का पानी सारी धूल मिट्टी को साफ कर दे। तो छतों पे अगर हमारी एकत्रित हमारे छत का एरिया निर्धारित होता है सभी के घरों के छत, उसको पाइप के माध्यम से जैसे मैंने पहले बताया नीचे ले जाए, लूज सैंड ऑफकोर्स ये सब उस रीजन के हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन और जियोलॉजिकल कंडीशन, वहां कैसी भूमि कैसी है, वहां का एक्विफर लेवल कैसा है, उस पर निर्भर करेगा। बट यदि मैं एक जनरल ज्ञान दूं तो फर्स्ट फ्लश सिस्टम लगाएं, सैंड का प्रयोग करें, बजरी डाल लें ताकि पानी दलदल बनने के बजाय वो सीधे भूजल में जाए, और चारकोल या कार्बन फिल्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेट बोलूं तो मल्टीपल लेयर फिल्टर, ताकि जो अगर कोई धूल मिट्टी आ रही है वो भी फिल्टर होके ताकि भूजल में जब जाए तो स्वच्छ पानी जाए। इसका खर्चा अंदाजन अगर ये 3x3x3 का करते हैं तो मुझे बताया गया कि 10 से 15 हजार। ऑफकोर्स ये रीजन स्पेसिफिक होगा, वहां पे पत्थर की क्या है, भूमि कैसी है, उस पर निर्धारित करेगा, पर अंदाजन इतना खर्चा आना चाहिए। जो कि अगर हमारे एक कॉलोनी में हम बनाने की कोशिश करें तो एक सार्वजनिक रूप से ये शायद, चूंकि ये हमारे बच्चों के भविष्य, हमारे अपने भविष्य के निर्भर करता है इस इन चीजों पे, तो शायद मेरा मानना है कि हम इतना खर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।
0: हमारे दूसरे श्रोता हैं सासाराम बिहार से अमित
2: जी। नमस्कार। मेरा ये सवाल था कि जैसे हम लोग रेन हार्वेस्टिंग का जैसे सरकार की तरफ से तो कुछ जैसे कैसे अभी घर सूर घर योजना के तहत बहुत व्यापक तौर से इसको व्यापक तौर पर सरकार प्रचार प्रसार करे, उसी टाइप से इसको भी एक लेकर जल संचय को लेकर बहुत लोग सोचते हैं कि घर में हम रेन हार्वेस्टिंग करें या फिर अपने कॉलोनी में जैसे सर अभी बता रहे थे कि इसको संचय करने का क्या तरीका हो सकता है, कैसे इसमें सरकार कुछ सब्सिडी दे ताकि अधिक से अधिक लोग इस ओर झुकाव करें और बचाने के लिए इस बारे में सोचे।
1: अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न का, और आपके माध्यम से मैं आपके सभी अपने सभी भाइयों बहनों और बाकियों को भी ये बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने जल संचय जन भागीदारी नाम की एक अभियान का इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, जिसके अंतर्गत हमारा प्रयत्न है कि कैसे, जैसे ये नाम ही सजेस्ट करता है जल संचय जन भागीदारी, तो कैसे अधिकाधिक इसमें जनता, समुदाय, पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाएं, उद्योग और जो कहते हैं ना नॉन गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स, उनका भी अधिक से अधिक इसमें वो सम्मिलित हो सके। और सम्मिलित होने का मतलब ये है, जैसे इसमें कई उदाहरण भी मैं देना चाहूंगा
0: जी।
1: कुछ एग्जांपल अगर बोलूं तो छत्तीसगढ़ का कोरिया डिस्ट्रिक्ट है, और इसको माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने एक और मन की बात में भी इसका जिक्र किया है। वहां के किसानों ने अपने 5% भूमि जल संरक्षण के लिए यूटिलाइज किया। उसी क्रम में जैसे बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है, वहां की बनास डेयरी ने वाटर कंजर्वेशन के लिए अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन किया। मैं इस तरह एग्जांपल दे सकता हूं, नॉर्थ त्रिपुरा में एक कम्युनिटी करीब 500 घर हैं, वहां कम्युनिटी ने मिलकर ही अपने सभी घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाया और इम्प्लीमेंट किया। तो सरकार तो अपना काम कर ही रही है, मगर सबसे बड़ी बात इस अभियान का या इस इनिशिएटिव का मैं बोलूं तो इसमें जन जागरूकता एक, जन पार्टिसिपेशन दो, एंड कम्युनिटी ओनरशिप, ताकि ये मेरा भविष्य है, मेरे बच्चों का भविष्य है,
0: मेरी जिम्मेदारी है,
1: उस पे जोर डाला जा रहा है। और अधिकाधिक आप सभी जगह जान के ये खुशी भी होगी कि JSJB जल संचय जन भागीदारी के सीरियल

0: जो 1.0 था, जो कि 24 से 25 में था, 31 मई 2025 को खत्म हुआ था। माफी चाहूंगा यदि मेरा जवाब ज्यादा लंबा हो रहा है,
1: नहीं,
0: बट जनता को बताना भी जरूरी है कि
1: बिल्कुल
0: जो
1: जरूरी है।
0: जी, तो 10 लाख का टारगेट, मतलब इस पीरियड में इतने आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाने का टारगेट था जन भागीदारी से। और जो मैंने बनस का अठा कर एग्जाम्पल दिया और जो अदर
1: छत्तीसगढ़
0: एग्जाम्पल,
1: का
0: जी 10 लाख के अगेंस्ट करीब 25 लाख से अधिक स्ट्रक्चर्स बने, और उसका एक आकलन के हिसाब से 2.4 बिलियन क्यूबिक मीटर रिचार्ज हुआ। अगर मैं इसको एक इक्विवेलेंस के टर्म में बोलूं तो एक रंजीत सागर डैम है थेम रावी रिवर पे, या उसकी भागीदारी से बने कि उसने एक डैम के बराबर का
1: पानी इकट्ठा हो
0: जल
1: गया,
0: इकट्ठा एक्वीफर में कर दिया।
1: बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, और
0: सो
1: सबके लिए भी प्रेरणा की
0: ये
1: बात ही
0: प्रेरणा
1: है।
0: है, ये सभी के
1: बिल्कुल
0: लिए हौसला अफजाई का भी है, और हमको ये आगे के लिए भी इंस्पायर करती है कि हम कैसे और से आगे कर सकें।
1: फोन लाइन पर उड़ीसा से है अब देशदीप दास। देशदीप जी, आप हमें सुन रहे हैं?
2: जी नमस्ते जी,
1: जी
2: नारायण
1: नमस्ते,
2: जी और कनकलता जी, मेरा सादर नमन आपसे। जी
1: नमन,
0: प्रणाम आपको भी देशदीप जी।
2: जी नमस्ते जी। जी मेरा सवाल है,
1: जी
2: एक सामान्य आवासीय घर या बड़ी इमारत के लिए रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने में कितना खर्च आता है और इसके मुख्य कंपोनेंट्स क्या है?
0: देशदीप जी धन्यवाद। मैं मुख्य कंपोनेंट्स आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को दोबारा बता देना चाहूंगा कि इसके मुख्य आम तौर पे जो फिल्टर सो छत में पानी जो एकत्रित हुआ उसको एक पाइप के माध्यम से नीचे ले गए जमीन के स्तर पे, और जमीन में एक रिचार्ज पिट बनाया जिसमें फिल्टर लगाया, जो मैंने फर्स्ट फ्लश सिस्टम बताया। फिर मैंने सैंड का सो ताकि सैंड ऊपर फाइन मटेरियल हो, नीचे ग्रेवल हो ताकि वो पानी को दलदल ना बने या मिट्टी इकट्ठा ना हो, तो और धीमे धीमे सीप करे। इस तरह से बड़ी ही सिंपल तरीके से एक आम नागरिक, आपके और मेरे जैसे लोग, इस भूजल को मतलब रिचार्ज करने के लिए प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक समाज इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। बहुत ही सिंपल प्रणाली है, इसको अपनाएं और अपने और अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करें।
1: एक बात और बताइए कि क्या ये जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो सिस्टम है, ये सिर्फ नई इमारतों में ही लगाया जा सकता है या जो पुराने घर बने हुए हैं कहीं पर भी इसको स्थापित किया जा सकता है?
0: मैडम इसको कहीं भी लगाया जा सकता है, क्योंकि जब वर्षा होती है
1: जी
0: वो पुराने और नए घरों में डिफ्रेंशिएट नहीं करती, वर्षा तो प्रकृति से आ रही है। ये हमको ध्यान देना है कि जो पुरानी अगर इमारत है तो जो छत है उस कितनी समतल है, क्या स्लोप है, उससे वो निर्धारित, ताकि जो पाइप में जो पानी एकत्रित हो, इधर उधर एकत्रित होने के बजाय पूरा अधिक से अधिक जल पाइप के माध्यम से भूजल तक पहुंच जाए। शॉर्ट आंसर, देयर इज नो डिफ्रेंसिएशन। लॉन्ग आंसर मैंने आपको बताया।
1: इस तरह का जो पानी जो इकट्ठा किया जाता है वो क्या पीने में और खाना बनाने में भी इस्तेमाल हो सकता है?
0: बहुत ही अच्छा सवाल किया मैडम आपने। इस तरह से पानी हम लोग ये सोचेंगे कि अगर जैसे फर्स्ट फ्लश से सारी धूल मिट्टी निकल गई, फिर हम इसको भूजल में रिचार्ज करें। अगर हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया है, फिल्टर्ड ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ है, इनफैक्ट आज भी जो हम दोहन कर रहे हैं, आज जिन भी डिस्ट्रिक्ट्स में या गांवों में या ब्लॉक्स में हम दोहन कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर दोहन कर रहे हैं, वहां तो हम आराम से इस्तेमाल कर रहे हैं।
1: उसी तरह से भी कर सकते
0: जी
1: हैं। रमाकांत वाजपेयी जी हैं उत्तर प्रदेश से।
3: नमस्कार।
1: नमस्कार रमाकांत जी।
0: नमस्कार
3: रमाकांत
0: जी, नमस्ते।
3: नमस्ते। मैं ये पूछना चाहता था कि जिस तरह से जल सुरक्षा और जल पुनर्भरण, भूगर्भीय जल पुनर्भरण, तो जल सुरक्षा का मतलब है कि जब हम 1 लीटर पानी खर्च करते थे, आज उस जगह जो है नए व्हीकल आ गए, नए नई परंपराएं हो गई, नई चीजें, इनमें हजारों लीटर पानी खत्म होता। और दूसरी चीज है भूगर्भीय जल पुनर्भरण, तो कंक्रीट का सड़क

0: कंक्रीट की गली, ऊपर से नीचे पानी जाता नहीं है, कुंड सूख दिए गए हैं, तो बताइए कैसे जो है जल पुनर्भरण हो।
1: रमाकांत जी, आपने बिल्कुल सही बात की कि हमारी डिमांड्स बढ़ रही हैं, हमारे औद्योगिकरण बढ़ रहा है, हमारे समुदाय बढ़ रहा है, उनकी ग्रोथ जरूरी है, और कहते हैं ना जल ही जीवन है, तो इन सब के लिए जल तो अति आवश्यक है। सो आपकी, मेरी, कनकलता मैडम की और पूरे समुदाय की यह जिम्मेदारी भी है कि कैसे हम अधिक से अधिक जल को संरक्षण कर सकें, चाहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, चाहे समुदाय के तौर पे हम कंटूर ट्रेंचेस बनाएं, या देर आर मतलब कई सारे तरीके होते हैं आर्टिफिशियल कृत्रिम स्ट्रक्चर बनाने के। एक उनमें से है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दूसरा कि जैसे किसान मैंने कोरिया वाला बताया, अगर कंटूर ट्रेंच बना ले या रिचार्ज पिट बना ले। सो ये छोटे छोटे तरीकों से, जैसे जमीन हुई, जैसे इकोसिस्टम हुआ, उस हिसाब से स्ट्रक्चर बनाया, पानी का संरक्षण किया, भूजल का अपग्रेडेशन हुआ, और साथ ही साथ ऐसे समझे कि जो बारिश अगर सरफेस रन ऑफ या पानी का व्यर्थ बह जाती, वो पानी मैंने एकत्रित कर लिया जो मैं अपने भविष्य में इस्तेमाल कर सकता
2: हूँ। भविष्य के लिए निवेश है,
1: भविष्य का बिल्कुल निवेश है। जैसे हम पिगी बैंक में अपने एक एक पैसे डालते हैं,
2: बच्चे डालते हैं,
1: बिल्कुल उसी तरीके से हम अपने भविष्य के लिए एक एक बूंद को, जैसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी कहा कि एक एक बूंद को बचाना है, उसी तरह हमारे प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी हो जाती है।
2: हर बूंद कीमती है।
1: जी बिल्कुल।
2: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप इस पर सवाल भेज सकते हैं। नंबर है 2331 01 2371 11 2371 11 6 और 2331 4444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। अब हमारे साथ अगले श्रोता की अभी प्रतीक्षा है, तब तक आप हमें ये बताइए सुमंत जी कि जो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो प्रोसेस है, जो प्रणाली है, इसका रख रखाव भी क्या कठिन होता है, किस तरह करते हैं?
1: मैडम बिल्कुल आपका सही सवाल है कि बट जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे बनाना, उसको कंस्ट्रक्ट करना या एस्टैब्लिश करना जितना सिंपल है, रख रखाव उससे भी अधिक मैं कहूँगा सिंपल है कि बस साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर 6-8 महीने में एक बार, जैसे मॉनसून से पहले एक बार सफाई कर दिए ताकि वो रिचार्ज होने के लिए, जैसे कहते हैं ना, तैयार होए, तो वो साफ सफाई हो गई, धूल मिट्टी हट गई, अगर कोई एक्स्ट्रा कुछ गर्द आ गई हो वो साफ हो गया, ताकि जब जल आए वो धीमे धीमे भूजल पे मतलब अपग्रेड हो जाए,
2: उसका जो स्तर ऊपर
1: हो जाए।
2: वर्षा जल संचयन योजना 2025 की काफी चर्चा है, आप इसके बारे में श्रोताओं को थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैंने पिछले उत्तर में शायद आधा ही बताया था कि जैसे JSJB जल संचय जन भागीदारी 1.0 जो 2024 से 25 चली, उसमें क्या हुआ। अब ये अवसर मुझे आपके प्रश्न से मिलता है कि 2025 से 26 जो जल संचय जन भागीदारी, जिसको हम 2.0 कहते हैं, वो 1 जून 2025 को स्टार्ट हुई थी और 31 मई 2026 को खत्म हुई है। उसके अंतर्गत भी देश से बहुत करीब 700 डिस्ट्रिक्ट्स, वहां पे वहां की जनता ने, वहां के क्राउड ने, वहां के डिस्ट्रिक्ट्स ने, वहां के म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस ने, वहां की इंडस्ट्री ने, वहां के एनजीओस ने, सब ने मिलकर जो आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया रूफ टॉप रेन वाटर या हार्वेस्टिंग, या फिर जैसे रिचार्ज पिट हुआ या रिचार्ज शाफ्ट हुआ, इस तरह के जो करीब 18-19 तरीके के लो कॉस्ट स्ट्रक्चर्स हैं, 1 करोड़ का टारगेट हमारा, हमने इंटरनली जो हमारे लिए सेट किया गया था, उस 1 करोड़ टारगेट के अगेंस्ट पूरे भारतवर्ष से

0: करीब 1.5 करोड़ स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं,
1: ज्यादा बन गए,
0: मतलब
1: जितना लक्ष्य था
0: उस लक्ष्य से करीब 50% अधिक बने। और मैंने बताया ना कि अगर 2.4 BCM जो कि करीब 23-24 लाख स्ट्रक्चर से बने थे जितना रिचार्ज हुआ था, तो हम अभी ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसका कितना फायदा हमारे आने वाले समय में दिखेगा। सो इसमें भी जन समुदाय भागीदारी, नॉन गवर्नमेंटल, ऑफकोर्स सरकार तो कंट्रीब्यूट कर ही रही है, बट सभी लोगों
1: की भागीदारी बहुत
0: बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कोई भी कहते ना, कोई भी, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का भी ये फोकस है कि जैसे इसको मास मूवमेंट बनाया जाए, कैसे इसकी जन ओनरशिप, कम्युनिटी ओनरशिप हो, ये हमारा भी प्रयत्न है कि इसको हम आगे से आगे कैसे लेके जा पाए। इनफैक्ट आज जो आपका रेडियो का कार्यक्रम है
1: जी,
0: ये एक अपने आप में एक माध्यम है कि लोगों की अवेयरनेस कैसे बढ़ाई जाए, लोगों को कैसे पता चले कि आप जैसे आपके स्टूडियो में मैं 3-4 लोगों को देख सकता हूं, जब हम अपने घर जाएं क्या हम कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे।
1: आपने कहा लोगों तक हम पहुंच सके। देखिए शिमला से एक सवाल आया है राकेश जी का। राकेश जी
2: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला जिले की कोटखाई से।
1: नमस्कार।
2: और मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे कि हमारे सर्दी में जो कई बार जो है माइनस में तापमान चलता है और हमारी जो है बर्फबारी होती है काफी कोटखाई क्षेत्र में, तो मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो बर्फ का जो पानी है उसको किस तरह से जो है संरक्षण किया जा सकता है।
0: राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न का, बिकॉज आप शिमलाई के लिए नहीं, ये प्रश्न मेरे ख्याल से हमारे पहाड़ी राज्यों में कई डिस्ट्रिक्ट्स पे ये लागू किया जा सकता है।
1: लद्दाख के बारे में बताइए।
0: आई एम सो ग्लैड आपने ये पूछा। इनफैक्ट लद्दाख का एक अभी कुछ हफ्तों पहले ही मुझे एक एग्जांपल बताया गया था कि लद्दाख में कैसे लोग अपना वाटर कंजर्वेशन या जल संरक्षण कर रहे हैं। वहां डिटेल्स तो हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, मगर जल स्तूपा का कॉन्सेप्ट वो लोग लाए हैं कि एक बर्फ के एक स्तूप बनाते हैं और उस स्तूप से ताकि वो धीमे धीमे जब वो पानी गलता जाए तो विंटर में जाड़ों में वो पानी एकत्रित हो गया, बर्फ बन गई, और वो समर में जब वो गलना स्टार्ट होती है तो धीमे धीमे पाइप के माध्यम से मेन स्ट्रीम में ले जाया जाता है। तो राकेश जी आपने बहुत सही सवाल पूछा कि हम शिमला हो, लद्दाख हो, सिक्किम में ये सब एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ऐसी गुड प्रैक्टिसेस अपनाई जा सकती हैं। हमने सभी राज्यों से ये शेयर भी किया है और आप वेबसाइट भी, अगर अपने वेबसाइट देखेंगे तो भी आपको इसके विस्तृत जानकारी मिल सकती है। बट बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न का।
1: एक और श्रोता हमारे साथ है, विवेक। विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। विवेक जी
3: नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव जयपुर से बोल रहा हूँ
1: जी।
3: सर मेरा प्रश्न ये था, जैसे सोलर के लिए बहुत मार्केटिंग है, काफी लोग फोन आते हैं तो हम लोग उससे करा भी लेते हैं, बहुत सोलर के लिए जैसे अच्छे रेस्पॉन्स है, इस तरह के हम लोग जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए या कोई टोल फ्री नंबर या कोई संस्थाएं सरकारी प्रेरित करें, हमें बताएं कैसे लगाएं, क्या करें, तो एक यूजर फ्रेंडली चीज होना तो इसको करा जा सकता है।
0: विवेक जी बहुत सही सवाल है कि आम नागरिक के लिए इसको कैसे आसान किया जाए। तो आपको और मैडम आपके माध्यम से बाकी श्रोताओं को भी ये जानकर बताने से मुझे हर्ष हो रहा है कि देश भर में करीब 700 जल शक्ति केंद्रज हैं। जैसे हमारे कृषि केवीकेज हैं
1: जी,
0: उसी तरह जल शक्ति केंद्रज हैं। हर अब ये जयपुर से कर रहे हैं तो मुझे उनका टोल फ्री नंबर नहीं पता है, मगर डिस्ट्रिक्ट में जल शक्ति केंद्र में तो एक टोल फ्री नंबर है, आप उनको फोन करें, आपको जो सिंपल तकनीकी राय लेनी हो कि हम कैसे संरक्षण, बिकॉज जयपुर की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है अपितु शिमला से या उत्तर प्रदेश, जो हमारे डिफरेंट श्रोता हुए हैं, तो आपको रीजन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो सबसे आसान और सुविधाजनक समाधान होगा वो आपको आपका जल शक्ति केंद्र ही बता सकता है, लोकल रिक्वायरमेंट।
1: जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं जल शक्ति मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुमंत नारायण। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। सुमंत जी, मिशन अमृत सरोवर की चर्चा होती है और अटल भूजल योजना की भी चर्चा काफी हो रही है। ये सारी जो पहले हैं सरकार की ओर से की जा रही हैं ताकि वर्षा जल का संचयन किया जा सके, भूजल के स्तर को बढ़ाया जा सके, इन सब के बारे में आप कुल मिलाकर क्या कहना चाहेंगे?
0: धन्यवाद मैडम आपके इस सवाल का। आप यही समझे कि जो होल ऑफ गवर्नमेंट होल ऑफ सोसाइटी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का ये मोटो है कि कैसे सरकार के सभी अंग होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से अडॉप्ट करके बनाए, उसी के अंतर्गत आपने अमृत सरोवर बोला या अटल भूजल योजना बोली। एक एक सरकार का अंग ये कंट्रीब्यूट कर रहा है कि कैसे भूजल, कहीं पे सरोवर बनेगा कि बड़े सरोवर बने, कहीं पे भूजल डायरेक्ट इंजेक्शन वेल से चला जाए, किसी और स्कीम के अंतर्गत अगर रिचार्ज पिट बन जाए, या अगर मैं होल ऑफ सोसाइटी की बात करूं तो अगर मैं रायपुर का एग्जांपल दूं तो वहां पे इंडस्ट्री एसोसिएशन ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स बनवाए। इस तरह मैं एग्जांपल्स, देश भर में अनगिनत एग्जांपल्स हैं जो जन भागीदारी होती जा रही है, मगर अभी रास्ता लंबा है। हम सबको अपना, रिपीट कर रहा हूं, मगर अपना और अपने बच्चों का भविष्य इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए सुदृढ़ करना आवश्यक,
1: को भी जागरूक किया जाना चाहिए इसके लिए।
0: एब्सोल्युटली कहते हैं ना कि बच्चों से ही जितना बिहेवियर चेंज होता है वो सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो बच्चों के सिलेबस में
1: इसको जोड़ा जाना चाहिए।
0: कई कक्षाओं में जुड़ा हुआ है, जैसे छठवीं सातवीं कक्षा के सिलेबस में चैप्टर्स हैं। इसको हम और अवेयरनेस मॉडल्स, जैसे एक ये रेडियो प्रोग्राम हुआ या यूट्यूब हुआ या सोशल मीडिया हुआ,
1: आकाशवाणी पर भी इसके बारे में प्रचार किया जा रहा है।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी पे डेली जिंगल्स चल रहे हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे शामिल हो सकते हैं, कैसे इस मिशन को या अभियान को हम और इंटेंसिफाई कर सकते हैं।
1: सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में भी प्रभावी भूजल प्रबंधन आवश्यक है, और जैसा कि आपने बताया कि जो बावड़ियां हैं पुरानी, उन सबको भी, उनका भी पुनरुद्धार करने की कोशिश चल रही है ताकि वर्षा जल का संचयन किया जा सके। अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन्स और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जल शक्ति मंत्रालय में सचिव सुमंत नारायण स्टूडियो में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आपको एक कार्यक्रम कैसा लगा? कार्यक्रम के संबंध में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है AIRNSDtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। कनकलता को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीक के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय हैं। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात $232 अरब से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
5: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4 अरब 14 करोड़ अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4 अरब 93 करोड़ डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88 अरब 76 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
4: पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान दोनों ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान द्वारा किए गए हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इनमें वायु रक्षा प्रणालियां, तटीय राडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत समेत शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमले करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान के राडार ठिकानों को निशान बनाने का दावा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया है। यह कानून देश के नागर विमानन ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। जनहित याचिका में नागर विमानन क्षेत्र में पारदर्शिता और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले एक मजबूत और स्वतंत्र नियामक की मांग की गई है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। हुसैन सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी पाया है। 2024 मार्च को अदालत ने हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। अंडर 23 में 8 मुक्केबाजों और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है, जबकि 7 ने सेमीफाइनल में पहुंचकर कांस्य पदक हासिल किए। अंडर 23 में 5 महिला और 3 पुरुष मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई, जबकि अंडर 19 में सभी 8 महिलाओं ने स्थान अपने पक्के किए। भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन मात्र 186 रन पर सिमट गई। भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी थी। इंग्लैंड ने पहली पारी में 170 और भारत ने 285 रन बनाए थे। क्रांति गौड़ को 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
6: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today dismissed media reports of a deadlock in India-US trade talks, calling them as completely false, baseless and misleading. In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers. He said he had a fantastic meeting with US Trade Representative Jameson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goyal said both sides reaffirmed their commitment to an agreement that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers in both the countries. He asserted that the teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile, Mr. Piyush Goyal today began his official engagements in Spain by meeting first Vice President of the Government of Spain and Minister of Economy, Trade and Business, Carlos Quirpa Caballero. In a social media post, Mr. Goyal said that they had productive discussions on strengthening the India-Spain economic partnership through greater trade, investment and technology collaboration. India's total exports during April to June this year is estimated at over 200

0: ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीमें लगातार सक्रिय हैं। इस बीच श्री गोयल ने स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था, व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस कुएर्पो काबुलेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन के स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड दौरे पर हैं। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और जापान ने मुक्त, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान के तोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह कर रहे थे। जापान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मामलों के रक्षा उपमंत्री कानो कोजी ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। एक रिपोर्ट।
1: वार्ता में पिछली बैठक के बाद रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों देशों ने रक्षा उद्योग, नई तकनीक, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। बैठक में सैन्य आदान प्रदान, संयुक्त मुख्यालयों के बीच सहयोग, समुद्री सहयोग, रक्षा अभ्यास, क्षमता निर्माण, रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से समुद्री प्रौद्योगिकी तथा संस्थागत सहयोग की भी समीक्षा की गई। दोनों पक्षों ने रक्षा सहयोग के लगातार विस्तार का स्वागत किया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की सराहना की। उन्होंने भारत जापान सामरिक और वैश्विक साझेदारी के अंतर्गत व्यवहारिक सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। इससे पहले रक्षा सचिव ने जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजमुनी से मुलाकात की। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से शुभकामनाएं दी। दोनों पक्षों ने भारत जापान विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति जताई। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: न्यूजीलैंड के ग्रामीण समुदाय मंत्री मार्क पैटरसन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली के संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। श्री बिरला ने कहा कि मुलाकात में संसदीय आदान प्रदान को मजबूत करने और भारत न्यूजीलैंड के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को और गहरा करने के महत्व पर बल दिया गया। कांगो में इबोला वायरस के बुंजीबुगियो प्रकार से बचाव के लिए विकसित नए टीके का जल्द ही ब्रिटेन में वयस्कों पर परीक्षण शुरू किया जाएगा। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक इस टीके को विकसित कर रहे हैं। अब इसकी सुरक्षा और शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का आकलन 18 से 55 वर्ष आयु वर्ग के 50 स्वस्थ वयस्कों पर किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 17 मई को प्रकोप घोषित होने के तुरंत बाद इबोला के टीके के विकास को प्राथमिकता देने की सिफारिश की थी। इसके बाद वैज्ञानिकों ने लगभग 8 सप्ताह पहले इस टीके का विकास शुरू किया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन कल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे। वे कजाकिस्तान के बैकुनूर अंतरिक्ष केंद्र से 2 रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रोसकोस्मोस के सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान से उड़ान भरेंगे। अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण भारतीय समयानुसार कल रात 8:17 पर होगा। इसके लगभग 3.5 घंटे बाद ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ेगा। अनिल मेनन के साथ रूस के अंतरिक्ष यात्री प्योत्र दुब्रोव और अन्ना किकीना भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 75वें अभियान का हिस्सा होंगे। अंतरिक्ष यात्री बुधवार तड़के करीब 1:25 पर अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश करेंगे।

0: रूस ने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इनमें वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्यवाही ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमले के जवाब में की गई। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ईरान द्वारा संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने की निंदा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पिछली रात समझौते का उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने रात भर चले हमलों में ईरान के उपकरणों को नष्ट कर दिया है। इससे पहले ईरान ने अमेरिकी हमलों की निंदा करते हुए अमेरिका पर जलडमरू मध्य में सुरक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप करके वैश्विक वाणिज्यिक जहाजों के आगमन को बाधित करने का आरोप लगाया था। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने बताया कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने आगे बताया कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीरों को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। और जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। अंडर 23 में 8 मुक्केबाज और अंडर 19 में 8 मुक्केबाज ने फाइनल में जगह बनाई, जबकि 7 ने सेमीफाइनल में पहुंचकर कांस्य पदक हासिल किए। अंडर 23 में 5 महिला और 3 पुरुष मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है। अंडर 19 में 8 महिला खिलाड़ी फाइनल में पहुंच चुकी हैं, जबकि पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल जारी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। भारत और जापान ने स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am R.S. Raghu with the World News. The headlines. India and US engaged for balanced and commercially meaningful trade pact, says Commerce Minister Piyush Goyal. India and Japan reiterate commitment to promote a free, open and rules-based Indo-Pacific region. The US and Iran exchange fresh strikes as dispute over control of Strait of Hormuz raises tension in West Asia region. In cricket, India script history beating England by 270 runs in first ever women's test at Lord's. And 16 Indian boxers enter finals of Asian Under 19 and Under 23 championships in Jakarta. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today said India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers in both countries. In a social media post, Mr. Goyal dismissed media reports of a deadlock in India-US trade talks, calling them as completely false, baseless and misleading. We have a report.
3: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said he had a fantastic meeting with US Trade Representatives Jamieson Greer in New Delhi last month on India-US trade deal. He asserted that their teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile, the Commerce and Industry Minister today began his official engagements in Spain by meeting first Vice President of the Government of Spain and Minister of Economy, Trade and Business Carlos Guerpo Caballero. In a social media post, Mr. Goyal said they had productive

1988 में आई फिल्म लिबास से आपने ये गीत सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत दिया आरडी बर्मन ने और इस गीत को लिखा गुलजार ने। कहते हैं कि कभी कभी एक ठंडी हवा का झोंका बरसों पुरानी यादों को फिर से जिंदा कर देता है। कुछ रिश्ते वक्त के साथ बदल जाते हैं, लेकिन जो उनकी खुशबू होती है ना, हमेशा दिल में बसी रहती है। बस एक ऐसा ही गीत जो आप अगला सुनने वाले हैं, हमें जिंदगी का सबसे सुंदर सच दिखाता है और सिखाता भी है। सुख और दुख दोनों ही जीवन की धुन का हिस्सा है।

1972 में आई फिल्म शोर का आपने ये गीत सुना, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और इस गीत को लिखा संतोष आनंद ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना फिल्म खुशबू से ये गीत, आर डी बर्मन का संगीत और इस गीत को लिखा गुलजार ने। कहते हैं दोस्तों कि कुछ पल मुस्कुराने के होते हैं और कुछ पल खामोशी से गुजर जाते हैं, ये तो हम भी मानते हैं, है ना। हमारे भी बहुत सारे पल इन्हीं चीजों से, इन्हीं पलों से गुजरे हैं, लेकिन हर पल अपनी एक कहानी छोड़ जाता है। और जब बात साथ निभाने की हो तो कुछ रिश्ते शिकायतों से ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि शिकायतें प्यार में अक्सर होती हैं, लेकिन जब शिकायतें होनी बंद हो जाएं तो वाकई वो रिश्ता रिश्ता रहता है।
1: बरसों बाद यूं खुद में निकली हूं, ऐसा लगता है कि वो किसी और सभी की बात थी।
2: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
1: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
2: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ है?
1: भूल गई। ना ना,
2: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

1975 में आई फिल्म आंधी से आपने ये गीत सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। गुलजार का लिखा ये गीत और आरडी बर्मन का संगीत। क्या खूबसूरत एहसास है ना, जब शब्द कम पड़ जाएं और सिर्फ संगीत दिल की बात कह दें। कुछ गीत उम्र भर हमारे साथ चलते हैं क्योंकि उनसे हमारी अपनी कहानियां छिपी होती है, उनमें हम अपनी कहानियों को देखते हैं। और अब एक ऐसा गीत जो दिल की उलझनों और खामोश सवालों को बड़ी नज़ाकत से बयां करता हुआ

0: तो दोस्तों, हर श्रृंगार में आज बस इतना ही। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। 11:10 पर समय रहेगा मार्केट मंत्रा का और 11:40 पर सुनेंगे गीत मेरे मन मीत। बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनके अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हों। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीमें लगातार सक्रिय हैं। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73.45 अरब डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88 अरब 76 करोड़

0: डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान दोनों ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मूज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मूज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने कहा कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीर को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। भारतीय दूतावास ने इस कठिन समय में सहयोग और सहायता के लिए वियतनाम सरकार और वहां के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। 2 जुलाई को शंकरपुर बंदरगाह से मछली पकड़ने निकले 15 मछुआरों की नाव का 5 जुलाई के बाद संपर्क टूट गया था। तटरक्षक बल, नौसेना और राज्य एजेंसियों ने संयुक्त अभियान में 12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में नाव का पता लगाया। हादसे में 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 6 अब भी लापता हैं। राज्य के मत्स्य मंत्री राजेश महतो ने कहा कि सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाज और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की। अंडर 23 में 5 महिला और 3 पुरुष मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। अंडर 19 में 8 महिला खिलाड़ी फाइनल में पहुंच चुकी हैं। पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल जारी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल टुडे डिसमिस्ड मीडिया रिपोर्ट्स ऑफ अ डेडलॉक इन इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स, कॉलिंग देम एज कंप्लीटली फॉल्स, बेसलेस एंड मिसलीडिंग। In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful, and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers, and consumers. He said he had a fantastic meeting with the US trade representative Jameson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goyal said, both sides reaffirmed their commitment to an agreement that is balanced, commercially meaningful, and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers in both the countries. He asserted that their teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile, Mr. Piyush Goyal today began his official engagements in Spain by meeting first Vice President of the Government of Spain and Ministry of Economy, Trade and Business, Carlos Cuerpo Caballero. In a social media post, Mr. Goyal said that they had productive discussions on strengthening the Indian-Spain economic partnership through greater trade, investment and technology collaboration. India's total exports during April to June this year is estimated at over $232 billion, registering a positive growth of 11.37% as compared to the same period last year. Commerce and Industry Ministry said that the total exports for June this year is estimated at $73.45 billion, registering a positive growth of 9.48% as compared to the same month last year. The major

0: So, of course, the Monday has started on slightly positive note, but for the next 4 or 5 days, we do not see much relief kind of thing. There will be more volatility and more it will be towards the downward risk.
1: And more anxiety because state of Hormuz stands
0: closed again.
1: Of course,
0: we do not know what is happening. Somebody is saying that it has closed down. Somebody is saying, no, the SIPs are still going on, but there are problems which are affecting the moods or the sentiment in the market.
2: तो आपको क्या लगता है शशि जी, बाजार की आज की हालत देख के, हालांकि आखिर में थोड़ा मामूली बढ़त दिखाई दी, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि लगातार ये उथल पुथल चलती रही और ये संकेत यही है कि इसी तरह से आगे चलेगा?
0: बिल्कुल, देखिए आज अगर मैं 2-3 सेक्टर्स की बात करूं जहां पर हमने नतीजे का असर देखने को कह सकते हैं, जैसा मैंने कहा कि तकनीकी कंपनियों के शेयरों में अच्छे सुधार आई, वही विमानन बाजार की जो सबसे बड़ी कंपनी है उसमें हमने गिरावट देखी, क्योंकि पश्चिम एशिया में अगर उथल पुथल होता है तो उसका असर हवाई ईंधन के ऊपर पड़ेगा, हवाई ईंधन के दाम के ऊपर पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि कई उड़ानें जो हैं वो दोबारा से रद्द होने की आशंका है, तो इन सब के बीच में विमानन सेक्टर में हमने देखा, विमानन क्षेत्र में हमने देखा कि थोड़ा सा मामला जो है वो बहुत ही थोड़ा नहीं बहुत ही कमजोर था। लेकिन एक अच्छी वही बात जो मैंने कहा कि थोड़ा सा जो हमें सुधार देखने को मिल रहा है वो तकनीकी क्षेत्र में मिल रहा है, और इसके अलावा थोड़ा बहुत हम FMCG सेक्टर में भी जो है वो हम सुधार देख सकते हैं। लेकिन ये पूरे वीक की बात करें, पूरे सप्ताह की बात करें, तो बहुत ज्यादा कोई सुधार की उम्मीद जो है वो हमें नहीं दिख रही है।
1: Alright, now we're joined by Sitaraman from Mumbai. Yes, Sitaraman ji, please ask a question.
3: I tell you, I hear your program occasionally, but one thing I find that you are not prepared to take the responsibility when you give some news or some opinion. You disown. हमारा कुछ जिम्मेदारी है, तुमको जैसा मरने मरो, मैं आपको।
1: All right, I think the voice was not too clear, but anyway, let's move on.
2: और एशिया और यूरोप के बाजारों का हाल भी जान लेते हैं। एशिया के बाजारों में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 9% की गिरावट के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला सूचकांक बन गया। बाजार की गिरावट रोकने के लिए सर्किट ब्रेकर लगाया गया और कारोबार 20 मिनट तक अस्थायी रूप से रोक दिया गया। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 2.1% और जापान का निकेई 1.9% तक गिरा। दूसरी ओर हांगकांग शेयर बाजार के हैंगसेंग इंडेक्स में लगभग 0.2% की तेजी दर्ज की गई। ताइवान का ताइएक्स और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स दोनों ही सकारात्मक रुझान के साथ स्थिर रहे। शशि जी, जो खास चीज हमारा ध्यान आकर्षित करती है, अगर दक्षिण कोरिया की हम बात करें जहां पर इतनी तेज गिरावट हमें देखने को मिली, मोटे तौर पर और बाजारों में भी कोई बहुत अच्छी स्थिति एशिया में हमें नहीं दिखाई दे रही।
0: दक्षिण कोरिया की बात का जिक्र करना यहाँ पे ज्यादा अहम होगा, क्योंकि कुछ समय पहले दक्षिण कोरिया में एक या दो ऐसी कंपनियां थी जिनके शेयरों में काफी तेज उछाल आया था, और उसकी वजह से दक्षिण कोरिया के जो कहते हैं कि बाजार पूंजीकरण जो है वो काफी आगे हो गया था, और ये कहा गया कि दक्षिण कोरिया और ताइवान के शेयर बाजारों की स्थिति देखिए। लेकिन उस समय भी अगर हम लोग अगर उस बात को दोबारा याद करें, तो उस समय हमने इस बात का खास तौर पर जिक्र किया था कि दक्षिण कोरिया हो, ताइवान हो, या ऐसे बाजार हो, इसमें एक या दो या तीन कंपनियां, चार कंपनियां जो है वो बाजार को ऊंचा ले जा रही हैं, जबकि हमारे यहां जो बाजार में स्थिति है कि हम एक विविध बाजार हैं, हमारे यहां बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं, और उन सभी क्षेत्रों का मिला जुला असर देखने को मिलता है। तो अगर एक लंबे समय की प्रवृत्ति की बात करें तो वो दक्षिण कोरिया हो या फिर ताइवान की बात करें या ऐसे बाजारों की बात करें, शायद वहां देखने को नहीं मिलेगा, जबकि भारतीय बाजारों में हमें वो स्थिति देखने को मिलेगी, और वो बात आज काफी हद तक जो है वो सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है।
2: यहाँ पर हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें कि आज सोमवार है, और हर एक सोमवार की तरह हम श्रोताओं के प्रश्नों को सीधे कार्यक्रम में शामिल करते हैं। श्रोताओं, आप हमसे फोन करके सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं इन नंबरों पर 2331444 और 2331-0481, और हमारा तीसरा नंबर है 2371 7107

0: 06। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें।
1: शिशिर, नोइंग द मार्केट्स एट द मोमेंट, एज वी सेड इट रोज बाय 47 पॉइंट्स नाउ एंड स्टिल द मार्केट्स आर वोलेटाइल, नो थैंक्स टू द वॉर सिचुएशन एंड द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एंड द स्टेट ऑफ हॉर्मुज एंड द एनर्जी थ्रेट ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी। आफ्टर सीइंग ऑल दिस, इज दिस द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इफ समबडी वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट? व्हाट इज योर ओवरऑल, हाउ वुड यू एनालाइज? The newcomers should wait and watch, or somebody with a high risk appetite should plunge into the stock market? How would you explain that?
2: So you have mentioned various factors, starting from war to crude oil.
1: Hmm.
2: But one more factor needs to be added, and that is the monsoon, which has much wider impact because almost our aggregate economy is depending upon this thing. So what I mean to say that at this moment, when any kind of investor who is a beginner or newcomer in the market, it would be better if you just wait for some more time, because the volatility is too much, uncertainty is at high level, and even if he wants to invest, the mutual fund route is much better. And mutual fund, not just in the equity one, I would say go on the diversified one. Some part in equity, some part in debt, some part in the hybrid. That will give some more comfort. Entering into the market at this point of time, my advice would be it's not the good time.
1: I mean, don't put all your eggs in one basket, as they say. All right, we're now joined by Ramanathan from Chennai. Yes, sir, Ramanathan ji, please ask a question. Yeah.
3: Yes, good evening, Market Mundra.
1: Good evening, ji.
3: Yeah. See, I have two questions.
1: Yeah, sure.
3: One is, how is this dollar index calculated? And one more question is, with this inflation going up, can we see any interest rate hike, repo rate hikes?
2: The first question is about the dollar index. It is basically composition of six foreign currencies, and any kind of changes in those six currencies impact the dollar index. And dollar index gives basically indication about that what is happening in the dollar, what kind of a strength we are going to have. Coming to your second part of the second question, which is about the inflation and the interest rate. Basically, the 4% rate is something which is sometime it is giving an indication. Is it a time for rate hike? I think we will have to wait for at least two more months. So that is why the number which we have seen today is more than 4%. That means the median rate of targeted inflation rate has been breached, that 4%, after January 2025. Now the expectation is that for the next two or three months, it could be in the range bound manner, but depends upon that how the monsoon covers entire nation and what is the swing situation. So we are expecting that in the second half of the fiscal, there may be a rate hike, but that will depends upon that what kind of inflation we see in the month of August or September.
0: और महाराष्ट्र से हमारे श्रोता के शुक्ला लाइन पे हैं। शुक्ला जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं।
4: नमस्कार सभी को। मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या आज अभी भी गोल्ड का रेट इंग्लैंड में तय होता है इंडिया का भी, और गोल्ड और डॉलर में क्या संबंध है?
2: देखिए, गोल्ड के रेट की जहां तक हम लोग बात करें, कॉमेक्स के आधार पर जो है वो रेट लिया जाता है। और रहा सवाल कि डॉलर उसके मुकाबले में क्या, देखिए डॉलर मजबूत होता है तो उसका जो है वो नकारात्मक असर हमें सोने को में देखने को मिलता है, और डॉलर कमजोर होता है तो सोने के भाव में तेजी आती है।
1: और वी आर जॉइंड बाय विशाल फ्रॉम दिल्ली। जी विशाल जी, सवाल पूछिए।
5: मार्केट मंत्री जी नमस्कार। जैसे मैं ये जानना चाहूंगा, 3-4 दिन से आईटी सेक्टर थोड़ा परफॉर्म अच्छा कर रहा है, तो ये आने वाले समय में भी अच्छा परफॉर्म करेगा या नहीं?
2: देखिए, आईटी सेक्टर में हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि बीते दिनों जो नतीजे आए हैं वो नतीजे अच्छे रहे हैं, एक उम्मीद दे रहे हैं कि शायद आने वाले दिन भी अच्छे रहेंगे। उनका जो कहते हैं ना कि आउटलुक भी जो वो बता रहे हैं, उसमें थोड़ी स्थिति बेहतर है। और अगर आप याद करिए तो जो हमारी देश की एक बड़ी आईटी कंपनी, उनके चेयरमैन साहब ने ये भी बात कही थी कि जो भी हम एआई की बात करते हैं, एआई के लिए भी हमें एचआई और जो ट्रेडिशनल जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी। इसी तरीके से एनविद्या के अगर आप सीईओ की याद की बात को याद करें तो उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया था कि जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज हैं उनकी जरूरत बनी रहेगी। तो ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसके वजह से आप आईटी कंपनियों में तेजी देख रहे हैं। अब प्रश्न ये कि आने वाले समय में कैसी स्थिति रहेगी, देखिए ये सब कुछ निर्भर करता है कि ये

0: का जो माहौल है उसमें किस तरीके से सुधार होता है, अगर वो सुधार होता है मांग बढ़ेगी और उस मांग का फायदा जो है वो आईटी कंपनियों को देखने को मिलेगा। तो अभी थोड़ा सा ये जो 1-2 महीने हैं थोड़े से अभी अनिश्चितता के समय में है, उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो लड़ाई अभी शुरू दोबारा शुरू हुई है वो लंबा ना खींचे, तो इसका फायदा जो है हमें आईटी सेक्टर्स में भी देखने को मिल सकता है।
1: जॉइंड बाय तरुण फ्रॉम गुरुग्राम। जी तरुण जी, सवाल पूछिए अपना। जी
2: गुड इवनिंग। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज योर टेक ऑन द डिफेंस स्टॉक इवन द करंट सिचुएशन, एंड सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू कोचीन शिपयार्ड कंपनीज स्टॉक प्राइस।
0: तरुण, एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी वी कैन नॉट डिस्कस नेम ऑफ एनी कंपनी, एनी स्पेसिफिक स्टॉक कैन नॉट बी मेंशन, बट सेक्टर यू हैव आस्क अबाउट द डिफेंस सेक्टर, ऑफकोर्स डिफेंस सेक्टर इज डूइंग वेल एंड एट दिस मोमेंट आई फील दैट डिफेंस सेक्टर विल हैव अ पोटेंशियल टू गिव अ बेटर रिटर्न।
1: All right, moving on. HCL Technologies today reported its financial results for the first quarter of the current financial year, that is from April to June. The company's revenue increased by 13.9% on an annual basis to 34,579. The company's revenue grew by 1.76% on sequential basis. The company's net profit rose by 3% to 4,624 crore rupees on quarterly basis. The country's third largest IT services company also announced an interim dividend of 12 rupees per equity share. And
3: और चलते हैं अगली खबर की ओर। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। इस दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ अमरीकी डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4 अरब 14 करोड़ अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4 अरब 93 करोड़ अमरीकी डॉलर हो गया। इस तरह इसमें 19% की वृद्धि दर्ज की गई। शिशिर, बहुत ही अच्छी खबर है जिस तरह से हमारा निर्यात बढ़ा है।
0: बिल्कुल, देखिए निर्यात का बढ़ना अच्छी खबर है, लेकिन एक चीज और भी देखिए कि आयात भी बढ़ा है और जिसका असर जो है वो हमारे व्यापार घाटे पर देखने को मिला है। लेकिन अभी के समय में हमें आयात में ये भी देखना चाहिए कि आयात किस चीज का बढ़ा है। अगर कच्चे माल, मशीन, इन सब चीजों का आयात बढ़ रहा है तो वो बुरी खबर नहीं है, बल्कि वो हमारे निर्यात को बढ़ाने में मदद करेगा। तो आयात बढ़ने को लेकर के जब कभी भी हम चर्चा करें तो हमें ये भी देखना चाहिए कि किन चीजों का आयात बढ़ा है। और यदि आयात में इस तरह के सामान हमें देखने को मिलते हैं तो उसको लेकर के हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हो सकता है आने वाले कुछ समय में उसका असर एक सकारात्मक देखने
3: जी, जैसा आपने कहा श्री जी, अलग से हमारे पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन वस्तुओं में और सेवाओं में दोनों की दृष्टि से अगर हम देखें तो आयात में भी 26% की वृद्धि हुई।
1: एंड गवर्नमेंट हैज डन अ लॉट ऑफ गुड वर्क बाय एक्सपेंडिंग इट्स बास्केट बाय आउटसोर्सिंग फ्रॉम आई मीन बोथ इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट।
0: सर्टेनली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग दैट इफ यू आर हैविंग मोर एंड मोर कैपिटल goods in import, more and more API imports are there, that is good for us. So import is not a bad word. The thing is what we are importing.
1: Right.
3: और दिल्ली से हमारे श्रोता रमेश लाइन पे है। रमेश जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं।
4: मेरा ना क्वेश्चन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग स्कीम, NSS।
3: जी
4: सर, मैंने ना 91 में सर जी 45,000 सर जी पोस्ट ऑफिस में लगाए थे, तो सर अब वो पोस्ट ऑफिस वाले कह रहे हैं कि अपने पैसे निकाल लीजिए क्योंकि गवर्नमेंट ने स्कीम बंद कर दी है। तो सर मेरा सर से क्वेश्चन ये हैगा कि सर जब मैं पैसे निकालूँ क्या ये टैक्सेबल सर होगा या नॉन टैक्सेबल रहेगा सर? और सर ये बजट में ना सर गवर्नमेंट डिक्लेयर किया था किसी ने मुझे बताया कि ये गवर्नमेंट बोला या हम निकालेंगे तो टैक्स नहीं लगेगा इसके ऊपर, सर मैं सर की ओपिनियन जानना चाहता हूँ सर मैं।
0: देखिए नेशनल सेविंग स्कीम, अब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या जिसको हम लोग NSE के नाम से जानते हैं, वो अब उस रूप में है। आप अगर पैसा निकालते हैं वो टैक्स ऑलरेडी कट गया है,

0: जो सिस्टम होता है जिसको हम लोग कहते हैं ईटीई, यानी कि जब आप पैसा लगाते हैं उस समय आपको एक निश्चित रकम तक कर में छूट मिलती है, उसके बाद जो उस पे ब्याज जोड़ता जाता है वहां पर टैक्स कटता है, और जब आप पैसा निकालते हैं तो ऑलरेडी चूंकि टैक्स कट चुका है तो वो आपके ऊपर वो एग्जेम्प्टेड होगा, यानी कि उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना है।
1: ऑलराइट, वी आर नाउ जॉइंड बाय शंकर फ्रॉम भोपाल। जी शंकर जी, सवाल पूछिए।
2: नमस्ते मार्केट अथॉरिटी सर, मेरा सवाल थोड़ा सा हटके है, ना मार्केट से है ना फाइनेंस से है। मेरा सवाल सर ये कि हमारे यहाँ बहुत सारा विकास का काम हो रहा है, जैसे मध्य प्रदेश में भोपाल में सीवर लाइन डल रही है, सड़कें बन रही है, बट द क्वालिटी ऑफ वर्क इज नॉट अप टू द मार्क, ये बिकॉज ऑफ यू नो जो भी रीजन हो, L1 L2 के चक्कर में सबसे सस्ते को लिया जाता है और काम और सस्ता होता है, तो इसका क्या, इसके इम्प्रूवमेंट के लिए क्या किया जा सकता है?
1: Well, I think we can't take that question because we are limiting ourselves to anything which is related to the financial aspect of the country or the markets, right? So this is beyond our syllabus, to be honest and to be precise. All right, let's move on with more news. India's retail inflation accelerated to 4.38% year on year in June, breaching the Reserve Bank of India's midpoint target. The June inflation reading was moderately higher than the 3.93% recorded in May. Retail inflation continued to rise for the sixth consecutive month under the new Consumer Price Index, CPI series. According to data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, inflation in rural areas edged up to 4.74%, while in urban regions it rose to 3.92%. The food inflation rate based on the All India Consumer Food Price Index stood at 5.32% last month, up from 4.78% in the preceding month. According to the data, the increase in inflation in the previous month was mainly attributed to rising prices in personal care, social protection, restaurants and accommodation services, food and beverages and intoxicants. Your comment on this?
0: See, one factor is that there is a complete pass-through of petrol diesel price hike, and that is being reflected in the inflation number. The second is, of course, precious metal, whether we talk about silver jewelry or whether we talk about gold, diamond and platinum jewelry. In fact, silver jewelry, the inflation rate is 133%, which is not a small number.
1: Absolutely.
0: And the good thing is that the vegetable prices, I mean, especially when we talk about onion and potato, they are in the disinflation, that means they are in the negative territory. But one of the ingredient of our thali, which is ginger, adrak,
1: yes,
0: that is very costly. Jeera, that's a cummins, that is also very costly. So some of the food items are costly, some of the food products are costly. So we have the pass through, then we have the precious metal and some of the food items. So combination of all those three have resulted in the 4.3% of the inflation for the month of June.
1: And we know that there is likely to be less monsoon, you know, as is being predicted by the IMD.
0: That's a bit of a worry. Yeah, that
1: right?
0: is a concern, and that is what we are expecting, that the inflation will be over 4% in the coming months also.
3: Aur hamare shrota Deepak humse jud chuke hain. Deepak ji namaskar, bataiye kya पूछना चाहते
4: हैं? नमस्कार सर।
0: नमस्कार
3: जी, सवाल पूछिए
4: सर। ये जैसे मार्केट में मैं ना पहले इंट्राडे ट्रेडिंग भी करता था, निफ्टी और इन पर ऑप्शन ट्रेडिंग भी करता था, तो ये गैप अप और गैप डाउन का जो मैकेनिज्म है, ये मेरी समझ से बाहर है कि मतलब एक ही नाइट में सेंटिमेंट कैसे चेंज होता है। सुबह सुबह गैप अप होके, जैसे आज ही हुआ था गैप डाउन होकर, शाम तक गैप मतलब फिल हो गया था, तो इतनी जल्दी सेंटिमेंट कैसे चेंज होते हैं सर?
0: तकनीक में समय बहुत कम लगता है, तकनीक जो है वो सूचनाओं को बहुत जल्दी एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाता है। तो जब आप कहते हैं गैप डाउन ओपनिंग हुई, तो जाहिर सी बात है कि रात की घटनाएं, सुबह की घटनाएं असर करती हैं, लेकिन दोपहर के बाद अगर परिस्थितियां, मान लीजिए थोड़ी सी सकारात्मक खबरें आती हैं, कुछ क्षेत्र में अच्छी खबरें आती हैं, सरकार की तरफ से अच्छी खबरें आती हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका बदलाव देखने को मिलता है। तो इसका सीधा सीधा जवाब मैं इतना ही कहूंगा कि तकनीक की वजह से सूचनाओं का जो प्रवाह है, जिसमें तेजी आई है, उससे बाजार में भी जो है वो पल दो पल, जिसको कहते हैं, बदलाव देखने को मिलता है।
1: राइट, ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट ऑयल प्राइसेस नाउ। वेल, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस रोज टुडे आफ्टर रिन्यूड मिलिट्री स्ट्राइक्स बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान रीइग्नाइटेड कंसर्न्स ओवर एनर्जी शिपमेंट्स थ्रू द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ब्रेंट क्रूड वाज ट्रेडिंग 3.4% अप एट $78.59 पर बैरल। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड वाज ट्रेडिंग 3.5 0.5% up at $73 US and $0.89 per barrel when reports

0: last came in. And in the Indian bullion market, 24 carat gold was trading 1% down at 1,42,610 rupees per 10 grams, while silver was trading 1.3% lower at 2,20,140 rupees per kilogram a short while ago.
1: Aur multi commodity exchange mein August anubandh wala sona 1% ki giravat ke saath 1,42,066 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. अंतिम समाचार मिलने तक सितंबर अनुबंध वाली चांदी 1.3% की गिरावट के साथ 2,19,823 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही थी. शशि जी, आप क्या कहना चाहेंगे सोने के मूल्य के बारे में?
2: देखिए, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि महंगाई दर में चांदी की महंगाई दर और सोने की महंगाई दर कितनी है, लेकिन हकीकत यह है कि दैनिक आधार पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर सोने और चांदी दोनों में जो है गिरावट देख रहे हैं, और एक बहुत ही ऊंचे स्तर से गिरावट आई है क्योंकि डॉलर लगातार मजबूत हुआ है. तो वहां पर जो इतनी मजबूती आएगी उसका असर आपको यहां पर देखने को मिलेगा. और दूसरी बात यह भी है कि जो वैश्विक अनिश्चितता का दौर था उसकी में कहा जाता था कि सोने के भाव बढ़ेंगे, लेकिन इस बार उल्टा रहा है. सोने में उस तरीके की स्थिति देखने को नहीं मिली है. उसकी एक वजह यह भी है कि डॉलर की स्थिति अगर अलग रही है तो उसका असर आपके सोने पर पड़ा है.
1: और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर. शशि जी से कार्यक्रम में भाग लेने, प्रमुख खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: नाउ द हेडलाइंस अगेन. थैंक यू शशि जी. वेल, इन द इंडियन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स एजेस अप 47 पॉइंट्स, निफ्टी क्लोजेस flat. India's retail inflation rises to 4.38% in June this year, and global crude oil prices rise. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. So from all of us here, goodbye.
1: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

1974 में आई फिल्म रजनीगंधा का आपने ये गीत सुना, सलील चौधरी का संगीत और मुकेश की आवाज, और इस गीत को लिखा योगेश ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम है गीत मेरे मन मीत और मैं हूँ आपके साथ रितिका।

0: दोस्तों, गीत मेरे मनमीत में आज बस इतना ही। अपनी दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत। राखी आ चुकी है निशिगंधा कार्यक्रम लेकर। छोड़े जाती हूँ आप सभी को उन्हीं के साथ। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हों। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4 अरब 14 करोड़ अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4 अरब 93 करोड़ डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88 अरब 76 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मूज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मूज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा। अमरीका ने कहा है कि उसने

0: रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। वियतनाम के फूकवॉक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने बताया कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने आगे बताया कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीर को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। 2 जुलाई को शंकरपुर बंदरगाह से मछली पकड़ने निकले 15 मछुआरों की नाव का 5 जुलाई के बाद संपर्क टूट गया था। तटरक्षक बल, नौसेना और राज्य एजेंसियों ने संयुक्त अभियान में 12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में नाव का पता लगाया। हादसे में 9 मछुआरों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 6 अभी लापता हैं। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA में आज से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम 2026 आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी उपस्थित रहेंगे। संगोष्ठी का उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के बीच शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देना तथा शोध, नवाचार और चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करना है। जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस राघु। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal yesterday dismissed media reports of a deadlock in India-US trade talks, calling them as completely false, baseless and misleading. In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers. He said he had a fantastic meeting with U.S. Trade Representative Jameson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goyal said both sides reaffirmed their commitment to an agreement that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers in both countries. He asserted that their teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile, Mr. Piyush Goyal yesterday began his official engagements in Spain by meeting First Vice President of the Government of Spain and Minister of Economy, Trade and Business, Carlos Cuerpo Caballero. In a social media post, Mr. Goyal said that they had a productive discussions on strengthening the India-Spain economic partnership through greater trade, investment and technology collaboration. India's total exports during April to June this year is estimated at over $232 billion, registering a positive growth of 11.37% as compared to same period last year. Commerce and Industry Ministry said that the total exports for June this year is estimated at $73.45 billion, registering a positive growth of 9.48% as compared to same month last year. The major drivers of merchandise exports growth in June include gems and jewellery, engineering goods, organic and inorganic chemicals, electronic goods and rice. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives following a boat capsizing in West Bengal's South 24 Parganas district. In a social media post, the president said her thoughts and prayers are with the affected families. Expressing condolences to the bereaved families, the vice president prayed for the speedy recovery of

वक्त हुआ है 12:11 और ठीक 3 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, मैं हूँ राखी आपके साथ।

थक गए हैं? अरे जनाब, अभी तो सोमवार बीता है, पूरा हफ्ता बाकी है। जोश बनाए रखिए, मुस्कान सजाए रखिए, क्योंकि मंजिल तक वही पहुंचते हैं जो सफर का आखिर तक साथ निभाते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

की जिम्मेदारियां चेहरे की मुस्कान कहीं छिपा देती हैं, लेकिन यकीन मानिए, मुस्कुराहट से खूबसूरत कोई गहना नहीं होता। तो अगर आज कोई आपसे कह दे मुस्कुराइए ना, तो बुरा मत मानिए, शायद वो आपकी मुस्कान की अहमियत जानता हो। यूं ही किसी शायर ने नहीं कहा कि मुस्कुराता हुआ चेहरा हर दिल को अपना बना लेता है।

गोलमाल फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीतबद्ध किया आरडी बर्मन ने। जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वो कभी ठहरती नहीं, हर पल आता है अपनी कोई

0: याद कोई एहसास कोई मुस्कान दे जाता है और फिर चुपचाप आगे बढ़ जाता है। इसीलिए जो लम्हा इस वक्त आपकी मुट्ठी में है उसे खुलकर जी लीजिए। अपनों के साथ बिताया गया एक छोटा सा पल भी उम्र भर की याद बन सकता है।
1: उठ सबके कदम देखो रम पम।

वक्त हुआ है 12:34 और ठीक 3 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूँ राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

जुर्माना फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। जिंदगी की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, अगर दिल में उत्साह हो और होठों पर कोई प्यारा सा गीत हो तो सफर भी आसान लगने लगता है। संगीत की यही खूबी है, ये थके हुए कदमों में भी नई ऊर्जा भर देता है, मुस्कुराने की वजह दे देता है और महफिल का रंग ही बदल देता है।

बिन फेरे हम तेरे फिल्म का गाना आपने सुना, रफी और उषा खन्ना की आवाज में। असद भोपाली ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया उषा खन्ना ने। दोस्ती का रिश्ता उन अनमोल रिश्तों में से एक है जिसे न किसी नाम की जरूरत होती है और न किसी शर्त की, बस थोड़ा सा अपनापन, थोड़ा सा विश्वास और साथ निभाने का वादा, यही इसे उम्र भर के लिए खास बना देता है। जिंदगी के सफर में ऐसे दोस्त मिल जाएं जो हर खुशी में मुस्कुराएं और हर मुश्किल में साथ खड़े रहें तो राहें आसान लगने लगती हैं।

नमक हराम फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है, मगर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी यादें वक्त के साथ और भी गहरी हो जाती हैं। वाकई जब कोई जुदा होता है तो दिल पर यादों के तीर चलते हैं। हर धड़कन जैसे किसी पुराने लम्हे को पुकारती है। हर खामोशी किसी अधूरी बात का एहसास दिलाती है। शायद इसी एहसास का नाम मोहब्बत भी है, जो जुदाई के बाद भी दिल से कभी जुदा नहीं होती।

बेताब फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। वक्त हुआ है 12:58 और ठीक 18 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से

कुछ ही देर में यानी ठीक एक बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हों। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88.76 अरब डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। वियतनाम के फूकवॉक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने बताया कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीरों को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 59 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत सुहाने, मैं हूँ राखी आपके साथ।

ताजमहल फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने। कुछ चेहरे तस्वीरों में बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिन्हें कोई तस्वीर, कोई आईना या चंद लफ्ज पूरी तरह बयान नहीं कर पाते। उनकी मुस्कान की मासूमियत, उनकी नजरों की गहराई और उनकी मौजूदगी की रौनक सिर्फ महसूस की जा सकती है।

0: दिल दिया दर्द लिया फिल्म से आपने गाना सुना रफी की आवाज में। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया नौशाद ने। मोहब्बत हर बार मंजिल तक पहुंचा दे ऐसा जरूरी नहीं, कभी यही इस एहसास इंसान को इतनी गहरी चोट दे जाता है कि जिन लफ्जों से कभी जिंदगी बसती थी वही लफ्ज अजनबी लगने लगते हैं। दिल टूटता है तो शिकायत किसी एक शख्स से नहीं रहती, बल्कि कभी कभी मोहब्बत का नाम भी दर्द का दूसरा नाम बन जाता है।
1: न झटको जुल्फ से पा

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 1:29 और ठीक 15 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

गूंज उठी शहनाई फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। भरत व्यास ने इसे लिखा और संगीत दिया वसंत देसाई ने। कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस भी किए जाते हैं। दर्द जब शब्दों का सहारा लेता है तो कुछ इस तरह की ही धुनें बनती हैं जो अमर हो जाती हैं। एक टूटा हुआ दिल, बिखरे हुए अरमान और बिछड़ने की कसक।

असली नकली फिल्म का गाना आपने सुना, लता और रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। प्रेम का सबसे सुंदर रूप शायद वही है जहां शिकायतें भी हों, रूठना मनाना भी हो, लेकिन साथ निभाने का वादा सबसे बड़ा हो।

काला पानी फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। इश्क जब अपनी हदें पार कर जाए तो होश और बेखुदी का फर्क मिट जाता है, फिर दिल बस उसी का नाम लेता है जिसकी याद हर सांस में बसी हो।

आह फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। इंतजार का हर पल उम्मीद से भरा होता है। जब दिल किसी अपने को पुकारता है तो उसकी सदा में दर्द भी होता है और मिलने की आस भी। आंसू बहते बहते जब गम भी थक जाए तब दिल से यही गुजारिश होती है, आ जा रे अब मेरा दिल पुकारा।

प्यासा फिल्म का गाना आपने सुना गीता दत्त की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। कभी कभी मोहब्बत को इजहार के लिए बड़े बड़े अल्फाज नहीं चाहिए होते, बस एक नजर, एक मुस्कान या दो अनकहे शब्द और दिल अपनी कहानी खुद लिखने लगता है।

उड़न खटोला फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया नौशाद अली ने। मोहब्बत का सफर जितना हसीन होता है उतना ही नाजुक भी। यहाँ हर मोड़ पर उम्मीदें हैं, सपने हैं, तो कभी कभी इम्तिहान भी। इसलिए इस राह पर कदम बढ़ाइए तो दिल संभाल कर, क्योंकि एक छोटी सी आहट भी उम्र भर की याद बन सकती है।

वक्त हुआ है 1:53 और 40 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म से आपने गाना सुना रफी की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने।

तर पे कबूतर बने हुए, जिस प्यार में ये हाल हो, जिस प्यार में ये हाल हो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा और निराधार तथा भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई। वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने बताया कि पार्थिव शरीरों को होची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने आगे बताया कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीर को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे। वे कजाकिस्तान के बैकनूर अंतरिक्ष केंद्र से दो रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रोस कोस्मोस के सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान से उड़ान भरेंगे। अनिल मेनन के साथ रूस के अंतरिक्ष यात्री प्योत्र दुब्रोव और अन्ना किकिना भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 75वें अभियान का हिस्सा होंगे। अंतरिक्ष यात्री बुधवार तड़के करीब 1:25 पर अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज तीसरे नमस्ते दिवस का आयोजन करेगा। ये मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई नमस्ते योजना के शुभारंभ के 3 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। मंत्रालय ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के रविन्द्र सदन में दिव्या कला मेले के साथ आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि नमस्ते दिवस सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वच्छता की रक्षा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सफाई कर्मियों को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। इनमें सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारी, कचरा बीनने वाले और मैला ढोने वाले शामिल हैं। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने निजी विद्यालयों की फीस पर नियंत्रण से जुड़े संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके लागू होने से राज्य के सभी निजी विद्यालयों की फीस पर सख्त निगरानी होगी। नए प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी निजी विद्यालय सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना एक शैक्षणिक वर्ष में वार्षिक फीस और अन्य शुल्क में 5% से अधिक की बढ़ोतरी नहीं कर पाएगा। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंडर 23 और अंडर 19 में 8-8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की। अंडर 23 में 5 महिला और 3 पुरुष मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी और पीवी सिंधु जैसे भारतीय खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेते नजर आएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal yesterday dismissed media reports of a deadlock in India-US trade talks, calling them as completely false, baseless and misleading. In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers. He said he had a fantastic meeting with the US trade representative Jamieson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goyal said both sides reaffirmed their commitment to an agreement that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers in both the countries. He asserted that their teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile, Mr. Piyush Goyal yesterday began his official engagements in Spain by meeting first Vice President of the Government of Spain and Minister of Economy, Trade and Business, Carlos Cuerpo Caballero. In a social media post, Mr. Goyal said that they had productive discussions on strengthening the India-Spain economic partnership through greater trade, investment and technology collaboration. India's total exports during April to June this year is estimated at over $232 billion, registering a positive growth of 11.37% as compared to same period last year. Commerce and Industry Ministry said that the total exports for June this year is estimated at $73.45 billion, registering a positive growth of 9.48% as compared to same month last year. The major drivers of merchandise exports growth in June include gems and jewelry, engineering goods, organic and inorganic chemicals, electronic goods and rice. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives following a boat capsizing in West Bengal's South 24 Parganas district. In a social media post, the President said her thoughts and prayers are with the affected families. Expressing condolences to the bereaved families, the Vice President prayed for the speedy recovery of those injured. In a social media post, Mr. Modi said, his thoughts are with the bereaved families and hoped for the speedy recovery of those injured. He also announced an ex gratia payment of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each of deceased and 50,000 rupees for the injured. The decomposed bodies of the 9 fishermen who lost their lives due to the capsizing of a boat off the coast of West Bengal in the Bay of Bengal have been kept at the Katapukur morgue in South 24 Parganas district. 6 persons are still missing. The mortal remains of the 15 Indian tourists who were killed in a speedboat accident off Vietnam's Phu Quoc Island have been brought back home. According to the official X account of the Embassy of India, Hanoi, the mortal remains departed from Ho Chi Minh City by Vietnam Airlines flight VN979 and arrived in Mumbai. In a tragic incident on Friday, a speedboat carrying 32 Indian tourists and 4 local crew members capsized off Phu Quoc Island, leaving 15 tourists dead. A Delhi High Court yesterday convicted former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and 4 others for the killing of the Intelligence Bureau officer Ankit Sharma during the 2020 Northeast Delhi riots. Additional sessions judge Praveen Singh was hearing the case against a total of 11 accused, including Hussain, and convicted 5 of them. The court found Tahir Hussain guilty under the charges of promoting enmity, rioting, assault, criminal force, and murder. India Meteorological Department IMD has forecast heavy to very heavy rainfall over Bihar and Odisha till today. The weather department said that isolated heavy rainfall is also expected over Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, West Bengal, Sikkim, Assam and Meghalaya today. Indian boxers remained a strong force at the Asian Under-19 and Under-23 championships, with 16 of them advancing to the finals across men's and women's categories in Jakarta. In the Under-19 women's category, 8 boxers reached finals yesterday. Earlier in Under-23 women's category, 5 Indian boxers progressed to the finals. And that is the end of this news bulletin.

वक्त हुआ है 2:11 और ठीक 2 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ। संगीत रातों को सुरमई बना देता है और सुरमई रातें दिल के एहसासों को और भी गहरा कर देती हैं।

जूली फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। जी हाँ, ये रातें आते जाते कहती हैं ढेर सारी कहानियां। चांद उसकी जुबान बन जाता है और सितारे उसके अल्फाज। बस सुनने वाला दिल चाहिए, हर खामोशी में एक दास्तान मिल जाती है।

घर फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। कभी कभी किसी की आंखों में ऐसे राज छिपे होते हैं जो लफ्जों से बयान नहीं हो पाते, बस एक नजर दिल तक उतर जाती है और एहसासों की खुशबू देर तक साथ रहती है।

0: पिया का घर फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 2:29 और ठीक 12 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

दो रास्ते फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मेरे नसीब में है दोस्त, तेरा प्यार शायद कभी लिखा ही नहीं था, मगर इतना जरूर लिखा था कि तेरा साथ, तेरी यादें और तेरा एहसास उम्र भर मेरे दिल के किसी कोने में महफूज रहेंगे। कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं होते, लेकिन उनकी खूबसूरती कभी कम नहीं होती।

की कसम फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसका संगीत दिया और इसे लिखा आनंद बख्शी ने। जिंदगी के सफर में कुछ मकाम ऐसे भी आते हैं जो एक बार गुजर जाएं तो फिर कभी लौट कर नहीं आते। वक्त आगे बढ़ जाता है लेकिन उन लम्हों की महक, उसकी कसक और उनकी यादें उम्र भर दिल के किसी कोने में जिंदा रहती हैं।

थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से आपने ये गाना सुना। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया खय्याम ने। शायद यही सच्चे रिश्तों की पहचान है, जहां शिकायतें भी मोहब्बत से की जाती हैं और खामोशियां भी वफादारी निभाती हैं।

गुलामी फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। वक्त हुआ है 2:55 और ठीक 17 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही पंकज गोस्वामी के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

अर्थ फिल्म से आपने नज्म सुनी जगजीत सिंह की आवाज में। इसे कैफी आजमी ने लिखा और संगीत दिया कुलदीप सिंह ने।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतरिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान के वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई। भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे। वे कजाकिस्तान के बैकुनूर अंतरिक्ष केंद्र से दो रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रोसकोस्मोस के सोयुज MS-29 अंतरिक्ष यान से उड़ान भरेंगे। अनिल मेनन के साथ रूस के अंतरिक्ष यात्री प्योत्र दुब्रोव और अन्ना किकीना भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 75वें अभियान का हिस्सा होंगे। अंतरिक्ष यात्री बुधवार तड़के करीब 1:25 पर अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2027 के अंतर्गत क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 2 के लिए उद्योग आधारित चुनौतियों के प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का उद्देश्य मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में रचनात्मक प्रतिभाओं की पहचान करके उन्हें प्रोत्साहित और प्रशिक्षित करना है। विजेताओं और उनके कार्यों का प्रदर्शन वेव्स 2027 के दौरान आयोजित क्रिएटोस फेयर में किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि प्रस्ताव जमा करने और चुनौतियों के चयन के लिए एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है। मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े इच्छुक संस्थान 31 जुलाई तक wavesbazaar.com पोर्टल पर अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज तीसरे नमस्ते दिवस का आयोजन करेगा। ये मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई नमस्ते योजना के शुभारंभ के 3 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। मंत्रालय ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के रविन्द्र सदन में दिव्या कला मेले के साथ आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि नमस्ते दिवस सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वच्छता की रक्षा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सफाई कर्मियों को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA में आज से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम 2026 आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगी। इसका उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के बीच शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देना है। जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, आयुष शेट्टी और पीवी सिंधु जैसे भारतीय खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेते नजर आएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर टाइम हुआ है रात के 3:10 और अब शुरू होता है कार्यक्रम हमराही और मैं हूं पंकज आपके साथ और दो गानों के बाद मैं आपसे मिलता हूं। अभी के लिए शुरुआत करते हैं वारिस मूवी के इस गाने के साथ।

मूवी का नाम प्यासी आंखें किशोरदा और आशा जी की रोमांटिक आवाज में गाना था। उषा खन्ना का म्यूजिक और इंदिवर के बोलते 14 जुलाई की इस आधी रात में मेरे यानी पंकज के साथ हमराही शो सुन रहे हैं आप सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। और इस पूरे घंटे हम सुनेंगे पुराने डुएट्स गाने। इन गानों को सुनकर ना मन की थकान मिट जाती है, क्योंकि मन खुश तो सब खुश। तो इन दो गानों के बाद मैं आपसे दोबारा मिलता हूं। अभी के लिए सुनिए हीरो फिल्म का गाना मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज में, और फिर मैं मिलता हूं आपसे इन गानों के बाद।

किशोर कुमार और आशा जी की आपके लिए गाते हुए फ्रॉम द मूवी ये वादा रहा। आर डी बर्मन का म्यूजिक और गुलशन बावरा के बोल थे। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर मैं हूं पंकज आपके साथ। शो का नाम है हम रहे। और पता है, दिल के सुकून को ना हर हाल में बचाए रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये खो जाए तो दुनिया की हर महफिल बेरंग लगती है। और प्यार और रिश्ते नातों में तो ये बात और भी ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि रिश्ते बिगड़ने पर ना सुकून खो जाता है। मैं हूं पंकज आपके साथ। और एक चीज पता है, मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि पसंद का रिश्ता अगर हमारी जिंदगी में है तो जिंदगी जो है ना खिली हुई चांदनी जैसा हो जाता है। यकीन मानिए, एक पसंदीदा इंसान आपकी जिंदगी में है ना तो वो हजारों लोगों के ऊपर भारी पड़ जाएगा। वो इतनी खुशी आपको दे देगा कि फिर ऐसा लगे यार, जब इतना एक बंदा मेरे पास है तो मुझे हजारों की क्या जरूरत है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई है तो सच में बहुत अच्छा नसीब है आपका।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

एक बात है ना, आप अच्छे से मान लीजिए कि जिंदगी जो है एक प्यारे से रिश्ते के बिना चलानी बहुत मुश्किल है, इसलिए रिश्ते कमाइए। पैसे तो खैर हम सब कमा ही रहे हैं, लेकिन रिश्ते अगर अच्छे हो, एक ही रिश्ता अगर अच्छा हो, तो वो सारी खुशियों की वजह बन सकता है। बाकी आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर अब हमराही शो का समय जो है वो पूरा होने वाला है। सुबह 4 बजे से हिंदी और इंग्लिश में आप समाचार सुनेंगे और फिर सुबह 4:10 पर अगला शो होगा अरुणिमा। मैं पंकज आपके साथ फिर से उसी शो में मिलूंगा। तो अभी इन गानों का मजा लेते रहिए और गानों की बीट्स पर झूमते रहिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में

0: पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा कर रहे हैं। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान द्वारा किए गए हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई। भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे। वे कजाकिस्तान के बैकनूर अंतरिक्ष केंद्र से दो रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रोसकोस्मोस के सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान से उड़ान भरेंगे। अनिल मेनन के साथ रूस के अंतरिक्ष यात्री प्योत्र दुब्रोव और अन्ना किकिना भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 75वें अभियान का हिस्सा होंगे। अंतरिक्ष यात्री बुधवार तड़के करीब 1:25 पर अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2027 के अंतर्गत क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 2 के लिए उद्योग आधारित चुनौतियों के प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का उद्देश्य मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में रचनात्मक प्रतिभाओं की पहचान करके उन्हें प्रोत्साहित और प्रशिक्षित करना है। मंत्रालय ने बताया कि प्रस्ताव जमा करने और चुनौतियों के चयन के लिए एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है। मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े इच्छुक संस्थान 31 जुलाई तक wavesbazaar.com पोर्टल पर अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज तीसरे नमस्ते दिवस का आयोजन करेगा। ये मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई नमस्ते योजना के शुभारंभ के 3 पूरे होने का प्रतीक है। मंत्रालय ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के रविन्द्र सदन में दिव्य कला मेले के साथ आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि नमस्ते दिवस सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वच्छता की रक्षा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सफाई कर्मियों को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA में आज से 3 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम 2026 आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगी। इसका उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के बीच शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देना है। मौसम विभाग ने बिहार और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और ओडिशा में बिजली के साथ तेज हवाओं के साथ तूफान की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय RS रघु। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal yesterday dismissed media reports of a deadlock in India-US trade talks, calling them as completely false, baseless and misleading. In a social media post, Mr. Goyal said India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers. He said

सुबह के 4:10 हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और अब शुरू होता है कार्यक्रम। अरुणिमा और मैं पंकज हूं आपके साथ। तो इन दो गानों के बाद आपसे मैं मिलता हूं और अभी शुरुआत करते हैं इस गाने से। जहरीला इंसान फिल्म का नाम है और किशोर कुमार की आवाज है।

जी और नितिन मुकेश की आवाज में मेरी जंग फिल्म से ये गाना था। इस मूवी के लिए नूतन जी को और अमरीश पुरी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और बिल्कुल सही मिला था। अरुणिमा शो में मैं हूं पंकज आपके साथ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के फिल्म गोल्ड चैनल पर। जिंदगी एक जंग तो है ही, लेकिन इसे धैर्य, मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी के बलबूते पर जीता जा सकता है, क्योंकि सत्य ही हमेशा जीतता है। 14 जुलाई मंगलवार की छोटी सी सुबह हो चुकी है और इन दो गाने के बाद मैं आपसे फिर से मिलूंगा और कहीं नहीं जा रहा हूं, बस यहीं स्टूडियो की कुर्सी पे बैठकर आपके साथ गाने सुन रहा हूं। आप उधर गाने सुनिए, मैं इधर गाने सुनता हूं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद

मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

ये गाना जो है वो एक तरह से आई ओपनर का काम करता है, क्योंकि हमें मिले हुए पदार्थों का जो है अहंकार हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि बस ये चीज जो है हमारे पास है और हम ही इसके मालिक हैं। लेकिन फिर उसके बाद याद आता है कि ये सब तो एक दिन यहीं रह जाएगा। इंसान का शरीर जो है वो पंच तत्व में जाता है और रह जाती हैं सिर्फ यादें। हमारे कर्म ऐसे हों कि कोई हमें याद करे ना तो प्यार से याद करे और हमारे बारे में अच्छा बोले, कोई आपके जाने पर दुखी ना हो, मतलब कि कोई खुश ना हो कि नहीं भाई वो अच्छा हुआ वो चले गए। नहीं नहीं, होना तो ये चाहिए कि लोग आपके बारे में अच्छा बोलें और ये कहें कि हाँ दुख तो हुआ वो गए हैं लेकिन जहाँ भी वो खुश हैं। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर अरुणिमा शो में मैं हूँ पंकज आपके साथ। जिंदगी में खुशियाँ मिले ना तो उन्हें जरूर बांटिए, क्योंकि

0: सुबह के 4:41 हो चुके हैं और गाइड मूवी का ये गाना लता जी की आवाज में था, एस डी बर्मन का संगीत और शैलेंद्र के बोल थे। ये मूवी हमने देखी ही है, लेकिन बार बार इस फिल्म को देखने पर पता है जीवन के कई सूत्र हमें पता चलते हैं। एक सूत्र तो यही है कि जिंदगी में सुख और दुख जो है वो भोगने ही पड़ते हैं और चाहे जो हो। लेकिन न्यूज़ में कई बार हम देखते हैं कि कई लोग जो हैं वो दुखों से हार जाते हैं और अपना नुकसान करते हैं, ये बहुत गलत बात है। मैंने शो की शुरुआत में भी कहा था कि जिंदगी की जंग को जो है हम धैर्य, मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी से जीत सकते हैं। बुरा समय अच्छा समय अपने पीछे छुपाकर लाता ही है और वो जो बुरा समय होता है वो एक तरह से हमारी परीक्षा होती है। चुपचाप सहकर परेशानियों को पार पाने दीजिए और फिर खुशियों का सूरज सामने चमकता दिखेगा। अरुणिमा सुनते रहिए, मैं पंकज सिर्फ आपके लिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।
1: संग रहे ना को।

ये जुलाई बारिश का मौसम है और घर से अगर आप बाहर जाएं तो छोटा छोटा बैग में हमेशा अपने पास रखें, क्योंकि धीरे धीरे सुबह जो है वो तेज हो रही है। और अभी मैंने स्टूडियो की खिड़की से देखा तो मुझे सामने जो सड़कें हैं ना वो गीली गीली नजर आई है। इससे मैंने अंदाजा लगाया कि बारिश हुई है और वैसे भी छोटी छोटी बूंदों का मुझे कुछ दिख रहा है, तो वहां से मुझे लग रहा है कि बारिश अभी दिल्ली में हुई है। खैर, अगले शो भोर सुहानी में मैं पंकज आपसे मिलूंगा और अभी के लिए अरुणिमा शो के बचे हुए गाने सुनिए। फिर सुबह 5 बजे आप हिंदी और अंग्रेजी में न्यूज सुनेंगे और उसके

बाद फिर 5:10 पर मैं पंकज भोर सुहानी में आपके लिए और गाने लेकर आऊंगा, तो आप ऐसे गाने सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, गानों का मजा लेते रहिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधि लगातार सक्रिय हैं। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक रहने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11

0: 3.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73.45 अरब अमरीकी डॉलर रहने का आकलन है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में वैश्विक शांति सुरक्षा और समता मूलक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत का शांति दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अब तक संयुक्त राष्ट्र के लगभग 50 शांति मिशनों में करीब 3,00,000 शांति सैनिक भेज चुका है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 10 मिशनों में 4,300 से अधिक भारतीय कर्मी तैनात हैं। उन्होंने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज जल डमरू मध्य से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा कि उसने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका आज से हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरान के जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करेगा। साथ ही ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीका के फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हॉर्मुज जल डमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। ईरान ने यह भी चेतावनी दी है कि अमरीकी सेना को मदद देने वाले किसी भी देश को युद्ध में शामिल माना जाएगा। अमेरिका द्वारा ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर लागू करने की घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। 15 भारतीय पर्यटकों के शव स्वदेश लाए गए हैं। इन भारतीय पर्यटकों की वियतनाम के फूक्वॉक द्वीप पर स्पीड बोट की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन सिटी से मुंबई पहुंचे। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। पश्चिम बंगाल में मछली पकड़ने वाली एक नाव बंगाल की खाड़ी में पलट गई। इसमें 9 मछुआरों की मौत हो गई है और 6 अन्य अभी भी लापता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। द मॉर्टल रिमेन्स ऑफ द 15 इंडियन टूरिस्ट्स हु वर किल्ड इन अ स्पीडबोट एक्सीडेंट ऑफ वियतनाम्स Phu Quoc Island have been brought back home. The Embassy of India in Vietnam has said in a social media post that mortal remains departed from Ho Chi Minh City by Vietnam Airlines flight and arrived in Mumbai. A speedboat carrying 32 Indian tourists and 4 local crew members capsized off Phu Quoc Island in Vietnam on Friday, leaving 15 tourists dead. 16 survivors have also returned to India and one tourist remains hospitalized in Vietnam. A fishing trawler that had gone missing off the West Bengal coast earlier this month has been found capsized in the Bay of Bengal, with 9 fishermen confirmed dead and 6 persons still missing. The trawler had 15 fishermen on board. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra

सुबह के 5:10 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और अब शुरू होता है मेरे यानी पंकज के साथ भोर सुहानी शो। दो गाने के बाद आपसे मिलता हूं और रामलखन फिल्म के इस गाने के साथ इस शो की शुरुआत करते हैं।

बीत गया वो एरा जब ऐसे गाने बनते थे, सुनकर ही मतलब मजा आ जाता है। बेटा फिल्म से उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज थी, आनंद मिलिंद का म्यूजिक और समीर के लिरिक्स थे। और बहुत ही हसीन सुबह हो गई है, मतलब उससे भी ज्यादा तो अच्छा मौसम हो गया। थोड़ी सी बारिश हो गई है दिल्ली में और मौसम तो सच में इतना प्यारा हो गया है, मतलब स्टूडियो की खिड़की से देख रहा हूँ वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। 14 जुलाई का आज मंगलवार है और मंदिरों में आज स्पेशली भगवान के दर्शनों की भीड़ होती है और दिल्ली में भी बहुत फेमस टेम्पल्स हैं और ट्यूसडे को भी मतलब काफ़ी भीड़ लगती है मंदिरों में, यानी पूरी रौनक। हमारे देश की राजधानी दिल्ली की जो है वो बात सबसे अलग है, यानी फुल ऑफ लाइफ। अब ये शहर है ही ऐसा। वैसे हाँ, बारिश हो चुकी है थोड़ी सी और बारिश का मौसम है और बाकी बहुत अच्छा मौसम है और आज मंगलवार है। बहुत सारे लोगों को अपने ऑफिस के लिए, दुकान के लिए निकलना होगा, तो आप बाहर निकलें तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके पास जरूर हो, ताकि अगर बीच में बारिश आ जाए तो आप भीगे नहीं। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर मैं पंकज हूं आपके साथ। शो का नाम है भोर सुहानी। सुबह के 5:23 इन 2 गाने के बाद आपसे फिर मिलता हूं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।